ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की तिथि 11, तदनुसार 3 अक्टूबर सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 50 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है। हम सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत एक विश्वसनीय कड़ी के रूप में डिजाइन से लेकर तैयार माल तक विनिर्माण मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर रहा है। श्री गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जिसकी घरेलू मांग पर आधारित अर्थव्यवस्था 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करती है। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विनिर्माण क्षमता घरेलू और वैश्विक मांग की पूर्ति कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड के कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की। बैठक में दोनों देशों के बीच कृषि के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा के साथ ही आपसी सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करके कृषि के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती प्रदान करने पर बल दिया गया। दोनों पक्षों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के आपसी संकल्प को दोहराया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोबोटिक्स चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में जांच, उपचार और चिकित्सा देखभाल का महत्वपूर्ण साधन बनने जा रहा है। डॉक्टर सिंह ने सोसाइटी ऑफ रोबोटिक सर्जरी SRS के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि रोबोटिक्स AI और नैनो विज्ञान से सटीक और व्यक्ति की जरूरतों के अनुरूप स्वास्थ्य सेवाओं को नया तंत्र विकसित में होगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में रोबोटिक्स चिकित्सा, रोबोटिक एंड्रोक्रोनोलॉजी और रोबोटिक कार्डियोलॉजी जैसे क्षेत्र उभर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए बेहतर पानी, आधुनिक तकनीक और अच्छी सुविधाओं की जरूरत बताई। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्र सरकार को बाल देखभाल अवकाश संबंधी सिफारिशें सौंप दी हैं। इनमें बाल देखभाल अवकाश को निजी क्षेत्र में लिंग भेद रहित बनाना, अनिवार्य सवैतनिक पितृत्व अवकाश और वर्ष 2030 तक 5,00,000 शिशु देखभाल केंद्रों की स्थापना करना शामिल है। आयोग ने ये सिफारिशें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को सौंपी हैं। आयोग ने अनौपचारिक गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी मातृत्व और बाल देखभाल लाभ प्रदान करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों की ई नीलामी का 8वां चरण 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि इस चरण में दिल्ली के विभिन्न पहलुओं को दिखाने वाली 30 यादगार स्मृति चिन्ह शामिल हैं। इन 30 स्मृति चिन्हों में 9 फोटो फ्रेम, 9 यादगार वस्तुएं और 6 मूर्तियां तथा प्रतिमाएं शामिल हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन सहित पूरे देश में विशेष छूट अभियान शुरू किया गया है। ये छूट 16 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी। इस दौरान खादी उत्पादों पर 20% और ग्रामोद्योग उत्पादों पर 10% की छूट मिलेगी। जापान में एशियाई खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण के साथ मुक्केबाजी में 3 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद

0: स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 16 स्वर्ण 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 76 पदक के साथ पांचवें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदनवार विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

आज का चिंतन। महात्मा गांधी ने कहा है, भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम वर्तमान में क्या करते हैं। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

गीत सरिता कार्यक्रम 7 बजे सुनना ना भूलिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। ये कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 7:30 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार प्रभात आप सुनेंगे 8 बजे। 8:15 ये समय रहेगा कार्यक्रम त्रिवेणी का। 8:30 पर आप सुन सकते हैं चित्रलोक। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से करवाएंगे आपको अपडेट आज का अखबार कार्यक्रम में 9:30 पर। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 10 बजे। 10:05 ये समय होगा फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सफर सुरीला सा का। हंसी के ठहाके लगाने के लिए रहिए तैयार 10:30 पर कार्यक्रम पॉप टाइम में।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। झलोखा के अंतर्गत आपको बता दें कि आज कौन कौन से कार्यक्रम आप किस समय पर सुन सकते हैं। छह बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे संगीत।

0: आपकी फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टा फेस कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 11 बजे 12 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 12:05 पर सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम यादों की महफिल प्रादेशिक हिंदी समाचार हमारे केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे 1:05 पर और 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से प्रादेशिक पंजाबी समाचार प्रस्तुत होंगे फिल्म संगीत का आनंद आप उठाएंगे 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर एक बार फिर त्रिवेणी कार्यक्रम का आनंद आप उठाएंगे 2:00 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रस्तुत होंगे सदाबहार नगमे गोल्डन हिट्स 1955 से 65 तक के गीत इसमें लेकर हाजिर होंगे 2:30 पर मनचाहे गीत ये कार्यक्रम सुनेंगे आप 3:00 और 3:30 पर नाट्य तरंग चार बजे पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार पुनः 5:30 आपके लिए लेकर हाजिर होंगे 5:05 पर फिल्म संगीत का आनंद उठाएंगे आप और 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे लेकर हाजिर होंगे 5:30 ये समय रहेगा सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का जिसमें एक्टर डायरेक्टर और राइटर शहबाज बाजवा से रमेश कपूर की बातचीत आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार 6:10 पर और 6:20 पर प्रादेशिक पंजाबी समाचार आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का आनंद उठाएंगे 6:30 पर आप विशेष जयमाला कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 7:00 7:45 समय होगा प्रादेशिक मुख्य समाचारों का पंजाबी गीत पुनः आप सुनेंगे 7:47 पर हवा महल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 8:00 और 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक समाचार संध्या में हिंदी में समाचार 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किए जाएंगे आपके लिए कार्यक्रम सुन सकते हैं 9:00 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम सुनेंगे आप छाया गीत कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे 10:00 और 10:32 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरसांझ तो ये हैं आज के मुख्य कार्यक्रम जो आप सुन सकते हैं आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर और अब आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ विविध भारती के मुंबई केंद्र से
1: ये विविध भारती है आइए सुने श्री रामचरितमानस का भाग 330

कुंभकर्ण वध के बाद युद्ध भूमि में अब रावण का ज्येष्ठ पुत्र मेघनाद आ उतरा है। अनेक प्रकार के वाण कृपाण तथा अन्य आयुध चारों दिशाओं में छा गए हैं। इधर वानर और रीच योद्धा पर्वत खंडों और वृक्षों से उस पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु इनका उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। मेघनाद ने हनुमान, अंगद, नल, नील, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि महारथियों के शरीर अपने अस्त्रों से छलनी कर दिए। मेघनाद के कुछ वाण सर्पों का रूप धारण कर वानर सेना के महारथियों को बांधते जा रहे हैं। तब श्री राम ने अपनी एक और लीला दिखाने के लिए अपने को भी नागपाश में बंधवा लिया। ये देख देवतागण चिंतातुर हो गए। मेघनाद ने तब त्रिशूल से वयोवृद्ध जांबवान पर आक्रमण किया, लेकिन जांबवान ने वही त्रिशूल अपने हाथों से ग्रहण कर मेघनाद पर प्रहार किया, जिसके आघात से वो मूर्छित होकर गिर पड़ा।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार हैं गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में और आज हम तीसरी कड़ी के साथ उपस्थित हैं। शेखर दादा, दूसरी कड़ी में हमने वंदे मातरम के बारे में श्रोताओं तक जानकारी पहुंचाई और मेरे जहन में एक बात आ रही है कि बहुत सारी फिल्मी भक्ति रचनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे गायक हैं जिन्होंने बहुत कम गाया और कम उम्र में सीखना शुरू किया और कम उम्र में ही इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो ऐसे गायकों की आज चर्चा करेंगे, उन रचनाओं की चर्चा करेंगे।
2: जी हाँ, मैं दरअसल सबसे पहले तो आपको सुनाना चाहता हूँ जो पहली भारतीय फिल्म थी,
1: बोलती फिल्म
2: जी। क्योंकि उसके पहले तक हमारे यहाँ मूक फिल्में होती थी
1: जी।
2: संवाद नहीं होते थे, म्यूजिक नहीं होता था
1: जी। आलम आरा,
2: तो सबसे पहली हमारी फिल्म थी आलम आरा जो बनना शुरू हुई थी 1931 में, 1931 में, और 32 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। और इस फिल्म में एक गाना था छोटा सा, एक जो फकीर है वो गा रहा है और बस उतना सा ही एक हिस्सा था, लेकिन वो उसके शब्द बहुत सुंदर हैं कि दे दे खुदा के नाम पे प्यारे
1: जी।
2: ताकत हो गर देने की, कुछ चाहे अगर तो मांग ले उससे, हिम्मत हो गर लेने की।
1: क्या बात है।
2: तो आप ये सोचिए कि केवल दो लाइनें हैं इस पूरे प्रसंग में। दुर्भाग्य से वो फिल्म जो है वो जल गई थी, तो वो फिल्म का प्रिंट अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है, पर उसका संगीत जो है वो किसी बहाने वो बच गया और उसको कुछ लोगों ने फिर रिकॉर्ड भी किया, तो वो आज हमको सुनने के लिए मिल सकता है। और उस समय के एक बहुत विद्वान गायक थे शास्त्रीय संगीत के, उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब
1: जी। जी,
2: तो वजीर मोहम्मद खान साहब ने ये छोटा सा हिस्सा गाया था। मैं आपको ये भी याद दिलाना चाह रहा हूँ कि जब फिल्में शुरू हुई तो शास्त्रीय संगीत के बहुत सारे कलाकार, अभिनेता, नर्तक, ये सब लोग आके जुड़ते गए और उन्होंने हमारी भारतीय फिल्म की जो परंपरा है उसको एकदम शुरुआत से ही बहुत समृद्ध किया
1: जी। जी,
2: तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ उस्ताद वजीर मोहम्मद खान साहब का स्वरबद्ध किया हुआ, ये केवल दो पंक्तियों का गीत उपलब्ध है
1: जी।
2: कहीं पर आपको भी खजाने से ढूंढ कर निकालना होगा
1: जी,
2: पर
1: जी।
2: मैं चाहता हूँ कि आप जरूर अपने श्रोताओं को वजीर मोहम्मद खान साहब का ये भजन या उसको गीत कहें, सूफियाना अंदाजे का कलाम है, सब लोग उसका आनंद लें।
1: दे दे खुदा के नाम।

0: दे, कुछ चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, चाहे अगर तो मांग ले मुझसे, हिम्मत है अगर लेने की ले ले।
1: आलमारा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। और बताते चलें कि 1931 की पहली बोलती फिल्म थी जो दादा ने बताया। शेखर दादा ने भी जानकारी दी कि ये रिलीज़ हुई थी 1932 में। अब शेखर दादा एक और ऐसे गायक हैं जिन्हें 8 साल की उम्र में ही गायक सम्राट का दर्जा मिल गया था,
2: जी,
1: तो उन गायक का नाम
2: दरअसल
1: बताइए।
2: ये 1930 के दशक में
1: जी
2: ये बच्चा था, छोटा सा।
1: जी
2: और चूंकि हम लोग अंग्रेज़ों के अधीन थे, तो
1: जी
2: अगर कोई छोटा बच्चा गाता था तो हम उसको मास्टर कहते थे, और कोई छोटी बच्ची गाती थी तो नाम बेबी जोड़ जाता था
1: जी
2: उसको।
1: जी
2: तो इस गायक का नाम था मास्टर मदन।
1: जी
2: 1927 में उनका जन्म हुआ और 1942 में उनका निधन हुआ। मतलब पूरा उनका जीवन कालखंड जो है वो सिर्फ 15 साल का था।
1: जी जी
2: लेकिन इस 15 साल में उन्होंने बहुत सारे ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स को रिकॉर्ड किया, और उस समय लोग पागल हो गए थे। मास्टर मदन एक ऐसा नाम था कि लोग सुन

0: थे कि मैंने कहीं अगर अनाउंस हो जाता था कि यहाँ मास्टर मदन आने वाले हैं या बच्चा आने वाला है, तो लोग पागलों की तरह वहाँ भीड़ जमा हो जाती थी।
1: जी
0: ये जादू मास्टर मदन के बाद फिर कुछ वर्षों के बाद दिखाई दिया था, जब कुमार गंधर्व जी बच्चे थे।
1: जी जी
0: तो कुमार गंधर्व जी के भी लिए लोगों का वैसा ही क्रेज़ था, और मैं चाहता हूँ कि मास्टर मदन का ये एक गीत आप सुनाएं। ये राग खमाज में है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्धि से जल करके कुछ दुष्ट लोगों ने उनको दूध में जहर मिला करके पिला दिया था, और जिसकी
1: जी
0: वजह से धीरे धीरे वो मृत्यु का ग्रास बन गए। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर एक दाना भी मिल जाए तो आपको मालूम पड़ता है कि वो दाना कितना पका हुआ है और कितनी सुगंधी। वैसा ही ये गीत है, पर मैं चाहूँगा पहले हम लोग राग खमाज का मैं थोड़ा सा
1: जी
0: परिचय दे
1: झलक
0: दूँ।
1: सुनाए।

0: ये राग चाड़ो संपूर्ण राग है, जाते समय छह और आते समय पूर्ण संपूर्ण होता है, पर रे जो है वो मींड में लगता है, सीधे रे नहीं लगाया जाता। पर ये राग इतना प्रसिद्ध राग है
1: जी
0: कि
1: जी
0: मुझे लगता है कि सुगम संगीत की आधी रचनाएं
1: राग खमाज में
0: राग
1: है
0: खमाज में या
1: जी
0: मिश्र खमाज में या मांझ खमाज में आपको मिल जाएंगी।
1: जी
0: तो मैं चाहूँगा कि हम राग खमाज में मास्टर मदन की ये रचना सुने,
1: जी
0: मोरी बिनती मानो कान्हा रे।

0: शेखर दादा, हम चाहते हैं कि राग खमाज में ही आप एक रचना खुद सुनाएं, क्योंकि आपके स्वर के लिए भी लालायित है हमारे श्रोता।
1: मैं एक पारंपरिक रचना सुनाता हूं, क्योंकि हमारे पास दरअसल जो खजाना है
0: जी
1: वो पारंपरिक इतना बड़ा खजाना है,
0: जी
1: तो एक कलाकार के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, और श्रोताओं के नाते आप सभी संगीत सरिता के श्रोताओं की भी ये जिम्मेदारी है
0: जी
1: कि हमारी जितनी भी पारंपरिक रचनाएं हैं
0: जी
1: उनको गाएं और उनको आगे अपनी अगली पीढ़ी को सिखाएं।

0: वाह दादा, आपने अद्भुत गाया। अब तो लग रहा है कि बस इस कड़ी को समाप्त न करें और आपसे अनुरोध करते रहें कि आप गाते रहिए।
1: नहीं, अब इसके लिए हम लोग कल मिलेंगे अपनी चौथी कड़ी में।
0: जी
1: आप सभी श्रोताओं को एक बार फिर से पुनः प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: संगीत सरिता में आप सुन रहे थे श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
1: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
0: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
2: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
0: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ।

0: पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian. नियम और शर्तें लागू।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती,
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: खास दिन की आप सभी को विविध भारती परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं।

0: मोहम्मद रफी और आशा भोसले के युगल स्वरों में जिद्दी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। सचिन देवबर्मन की तर्ज थी, हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा था।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
4: बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।

0: जी एस नेपाली का लिखा दो गाना आपने सुना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में फिल्म नवरात्रि से। तर्ज थी चित्रगुप्त की।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के चंद और नगमे आपको सुनवाएंगे, बस एक छोटे से अंतराल के बाद थोड़ा सा इंतजार।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।

0: आजाद फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण का लिखा यह नगमा था, संगीत था सी रामचंद्र का।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
0: आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

0: बॉबी नैयर के संगीत निर्देशन में इसे गाया शमशाद बेगम ने। 12 o'clock फिल्म का गीत आपने सुना, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की यही थी आखिरी पेशकश। श्रोताओ,
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: संगीत की मीठी मीठी तान लिए गीत फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन

0: तारों को छेड़ता मस्ताना फिल्म का ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वरों में आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: प्यार से दिल भर दे,
2: नहीं नहीं
1: हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: प्यार से दिल भर दे, हम पे करम कर दे,
2: कभी नहीं
1: वरना हम मर जाएंगे ओ जालिम, नाम तेरा ले ले।

0: हम पे करम कर दे।
1: कब क्यों और कहाँ इस फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें। इंदिवर के बोल थे कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी।
2: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
3: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
2: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
4: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
2: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप।

0: होगा क्योंकि आज है 3 अक्टूबर और आज बहुत सारे विशेष कार्यक्रम हैं हमारे रेडियो सेट पर, हमारे विविध भारती में, जिसके बारे में हम आपको बताते चल रहे हैं साथ साथ। सावन भादो फिल्म का फिलहाल ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाज़ों में, वर्मा मलिक के बोल थे, सोनिक ओमी की तर्ज थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
2: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।

0: लीटर दूध प्रसंस्करण की क्षमता। और जापान एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरत को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विकासशील देशों को विकास और खाद्य सुरक्षा के लिए जरूरी नीतिगत गुंजाइश देने तथा सर्वसम्मति से फैसले लेने की व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया। इस बीच श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। आरजू के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीदरलैंड की कृषि मंत्री सिल्वियो एरकेंस के साथ दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग पर चर्चा की है। दोनों देशों ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, नवाचार और उत्पादकता बढ़ाने का आपसी संकल्प दोहराया। कृषि मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने कृषि और बागवानी क्षेत्रों में 25 उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की प्रगति पर चर्चा की। दोनों देश एक प्रभावी और स्पष्ट रूपरेखा तैयार करने और इसके कार्यान्वयन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करने वाली कार्ययोजना के माध्यम से बीज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर सहमत हुए हैं। कृषि नवाचार के क्षेत्र में दोनों देश महत्वपूर्ण प्रगति और विकास को मान्यता देते हुए सहयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमयाज जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। यहां आम, केला, टमाटर और अनार जैसी फसलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाएगा। इसमें करीब 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैलर कच्चा तेल और डीजल जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि चुनाव के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार पर दबाव बढ़ गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे।
2: Earlier, I spoke with members of the G7 nations, and I'm pleased to report that we have reached an agreement for Europe to release massive amounts of diesel fuel from their heavily stocked reserves, and that's starting immediately.
0: ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। फ्रांस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया का समन्वय करेगी और ईरान से जुड़े 8 महीने से चल रहे युद्ध के बीच अमेरिका और दूसरे देशों में ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता

0: का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह पशुपालन के क्षेत्र में अच्छा काम करने वाली गोपालक दीदियों को सम्मानित करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े सदस्य शामिल होंगे। भोपाल के अलावा सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा समेत कई जिलों से गोपालक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ से जुड़े दूध उत्पादकों को बोनस राशि भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट और भोपाल में मिल्क प्रोडक्ट से जुड़ी सुविधा समेत कई परियोजनाओं की शुरुआत भी होगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधा संवाद करते हैं। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग हिस्सों की उपलब्धियों और सामाजिक बदलाव की कहानियों को सामने लाता है। मन की बात ने कई सामाजिक मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने और उन्हें जन भागीदारी से जोड़ने में भी भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लिए अनवरत कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बताएंगे कि कैसे ग्रामीण भारत की महिलाएं अब खेती के पारंपरिक काम तक सीमित नहीं हैं, वे आधुनिक कृषि तकनीक के संचालन और सेवाएं देने के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इस बदलाव में नमो ड्रोन दीदी योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस बारे में सुनते हैं रिपोर्ट।
4: महिलाओं को कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से जोड़ने के उद्देश्य से इस योजना को नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दी गई। योजना के लिए वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 1,261 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत चयनित महिलाओं को कुल 15,000 कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में आजीविका के नए अवसर देना है। ये महिलाएं किसानों को ड्रोन के माध्यम से तरल उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव की सेवाएं किराए पर उपलब्ध करा रही है। इससे खेती किसानी के कामों में दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में सहायता मिल रही है। योजना के तहत चयनित महिलाओं को ड्रोन और उपकरणों की लागत का 80% तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। शेष राशि के लिए ऋण सुविधा का भी प्रावधान है। ड्रोन पैकेज में प्रशिक्षण भी शामिल है। उर्वरक कंपनियों ने वर्ष 2023-24 में अपने संसाधनों से महिलाओं को 1,094 ड्रोन वितरित किए। इनमें से 500 ड्रोन नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उपलब्ध कराए गए। राजस्थान में 50 महिलाओं को ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं। सवाईमाधोपुर जिले की नमो ड्रोन दीदी पूजा ने बताया कि इस ट्रेनिंग से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
5: मेरा नाम पूजा जागम है, ग्राम पंचायत शामपुरा, डिस्ट्रिक्ट सवाईमाधोपुर, राजस्थान से नमो ड्रोन दीदी बात कर रही हूँ। मेरे को ड्रोन मार्च 2024 में अप्रूव हो गया था, जब से मैं ड्रोन उड़ा रही हूँ। और मैंने गुड़गांव में 15 दिन की ट्रेनिंग लेके वहाँ से मैंने ड्रोन चलाना सीख कर

0: अपने गांव में मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ड्रोन मिला हुआ है, उससे मैंने गेहूं में, चावल में, इनमें सब में कीटनाशक छिड़काव किया है और उससे मैंने लगभग 40-45 हजार रुपए तक की इनकम कर ली।
1: कुल मिलाकर नमो ड्रोन दीदी योजना खेतों में तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को नए कौशल, नई जिम्मेदारी और आय के नए अवसर उपलब्ध करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: और अब एशियाई खेलों की खबरों के साथ हैं चंद्रशेखर शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में आज भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से होगा। कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन को हराकर एशियाई खेलों में 44 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद मुकेश। फ्लाई दुबई विमान के कैप्टन स्मिथ मच्छार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी से बोले स्मिथ, मैंने ठान लिया था कि इस विमान में किसी को मरने नहीं दूंगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दर्द में हनुमान चालीसा पढ़ते रहे कैप्टन स्मिथ, गिरते विमान के बीच लगाया आखिरी जोर। अमर उजाला का शीर्षक है, अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था, दूसरों को मरने नहीं दे रहा था। पत्र के अनुसार पीएम से स्मिथ बोले, आप मेरे आदर्श हैं। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, छोटे मतदाता भी शामिल होंगे, राज्यों में विशेष अभियान चलेगा, बीएलओ घर घर जाकर करेंगे सत्यापन। हिंदुस्तान का शीर्षक, यूक्रेन युद्ध खत्म करने को भारत के पास सही समझ, व्लादिमीर पुतिन बोले, हर बार युद्ध खत्म करने का मुद्दा उठाते हैं मोदी। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ट्रेड डील पर मोदी ट्रंप फिर करेंगे बात, अमरीकी प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर बोले, डील के मुद्दे पहचाने, समाधान पर काम जारी। जनसत्ता के अनुसार यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबेहा ने कहा कि युद्ध खत्म करने को भारत का प्रस्ताव सबसे बढ़िया। दैनिक भास्कर ने एक्सक्लूसिव खबर में दिया है, अफगान बॉर्डर पर 30 पोस्ट से भागी पाकिस्तान की सेना, अब वहां तालिबानी राज। खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अफगान में हमले में और तेज। पत्र के अनुसार पाकिस्तान सैनिक खौफ के कारण अफगान बॉर्डर पोस्टिंग से बच रखे हैं। राजस्थान पत्रिका के अनुसार एनसीईआरटी पढ़ाएगी सत्यमेव जयते और सेंगोल का इतिहास, सामाजिक विज्ञान पुस्तक का दूसरा भाग जारी, महात्मा गांधी के रामराज का जिक्र। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एशियाई खेलों में गोल्डन सिक्स के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंचा भारत, स्वर्णिम शुक्रवार, हरियाणवी खिलाड़ी फिर दमदार।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की। अमेरिका में तेल की कीमत में रिकॉर्ड बढ़त के बाद G7 देशों का 10 करोड़ बैरल डीजल और कच्चा तेल जारी करने का फैसला। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के हरित ऊर्जा गलियारे के तीसरे चरण का स्वागत किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। और जापानी एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम मोहोद ने महिला रिकर्व तीरंदाजी का स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में आज भारत का सामना मलेशिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी विविध भारती के मुंबई केंद्र से।
6: आइए सुने त्रिवेणी।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ

यह सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित यह अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मनचाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।

जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज DTH, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन AIR और वेव OTT के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं, जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध भारती।

विविध भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं। मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

0: ये थी विविध भारती की सालगिरह पर विशेष त्रिवेणी। तो अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।

0: इंजेक्शन शेयर करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: मैदा टीका ला लिया और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। सुरबहार की तान सी है विविध भारती की परवाज।

नहरे पंखों की परवाज आपके घर आंगन में, ये आवाज है विविध भारती की। हम सबके दिल का साज है विविध भारती, समय की घड़ी बनकर वक्त की अहमियत भी बताती है। भला कौन है जिसका बचपन इसके आंगन में न गुजरा हो, इसके दुलार में एक उम्र परवान न चढ़ी हो। कुछ खट्टी मीठी यादों के साए थे जो रेडियो विविध भारती में समाये थे। और आज है विविध भारती की सालगिरह। आप सभी को विविध भारती परिवार की तरफ से विविध भारती की सालगिरह पर ढेरों बधाइयां।

बाजीराव मस्तानी। इस फिल्म का ये पारंपरिक गीत आप सुन रहे थे शशि सुमन, कनिका जोशी, कुणाल पंडित, ऋषि राग, पृथ्वी और साथियों की आवाजों में आदित्य देव की तरह थी। श्रोताओ, विविध भारती का स्थापना दिवस है आज। विविध भारती देश में रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 को हुई। आरंभ में ये प्रसारण केवल 2 केंद्रों बम्बई और मद्रास से होता था, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती लोकप्रियता के कारण आकाशवाणी के कई और केंद्रों से भी प्रसारण शुरू किया गया। हिंदी भाषियों का लोकप्रिय चैनल होने के साथ साथ कुछ अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रादेशिक भाषाओं में भी प्रसारण की सुविधा है। विविध भारती का प्रसारण पूरे भारतवर्ष में सुना जा सकता है और भारत के बाहर भी सुना जा सकता है। वैसे भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई। 2 निजी ट्रांसमीटरों से इसकी शुरुआत हुई। 1930 में इसे इंडियन

ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का नाम दिया गया और 1957 में आकाशवाणी का इसे नाम दिया गया। आकाशवाणी के तत्कालीन महानिदेशक गिरिजा कुमार माथुर ने पंडित नरेंद्र शर्मा, गोपाल दास, केशव पंडित और अन्य सहयोगियों के साथ एक अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा की परिकल्पना की ओर ये नाम दिया कि विविध भारती यानी विविध भारती सेवा आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम। इसमें पांचों ललित कलाओं का समावेश और तमाम तैयारियों के साथ 3 अक्टूबर 1957 को विविध भारती सेवा मुंबई में शुरू की गई। विविध भारती पर बजा पहला गीत पंडित नरेंद्र शर्मा ने लिखा था और मशहूर संगीतकार अनिल बिस्वास ने इसे सर्वबद्ध किया था। इसे प्रसार गीत का नाम दिया गया। इसके मधुर बोल थे नाच मयूरा नाच, जिसे मशहूर गायक मन्ना डे ने स्वर दिया था। कुछ और भी विविध भारती की दिलचस्प बातें आपसे साझा करेंगे। पहले सुनवाते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, शुभ दिन का इंतज़ार था और शुभ दिन 3 अक्टूबर को आज आ गया। आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। बहुत सारे कार्यक्रम श्रोताओं विविध भारती ने सजाए हैं खास अपने श्रोताओं के लिए, तो बने रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग। वैसे आप सुन रहे थे परमाणु द स्टोरी ऑफ पोखरण, स्वयं का गीत ज्योतिका तांगड़ी, कीर्ति सरगथिया की आवाज़ों में वायु के बोल थे सचिन जिगर की तर्ज थी।
1: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आमी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।

0: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

करसन सरगथिया और श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे मीर अली हुसैन की ये रचना। सलीम सुलेमान का संगीत था। डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और विविध भारती के स्टूडियो से आपके घर आंगन तक ये डोर आज है आपके साथ साथ हमेशा की तरह। श्रोताओ, आपको साथ साथ बताते चलें, अखिल भारतीय मनोरंजन सेवा विविध भारती की पहली उद्घोषणा शील कुमार ने की थी। आगे चलकर कई अविस्मरणीय उद्घोषकों और कलाकारों ने इसे सजाया और देशवासियों को मनोरंजन का एक स्वस्थ खजाना दिया। इनके अलावा भारतीय फिल्म उद्योग के तमाम नामचीन निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेता अभिनेत्रियों और मंच के अन्य कलाकारों ने इसकी लोकप्रियता में चार चांद लगाए। जयमाला और हवा महल ये दो कार्यक्रम इसके शुरुआती कार्यक्रम रहे जो आज भी बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी संकेत ध्वनि भी काफी लोकप्रिय।

है। अभिनेत्री नरगिस ने विविध भारती का पहला जयमाला कार्यक्रम पेश किया था। इसके बाद लगभग सभी टॉप अभिनेता अभिनेत्रियों ने इसमें शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम पिटारा, मंथन और संगीत सरिता के साथ साथ भूले बिसरे गीत इत्यादि कार्यक्रमों ने श्रोताओं का खूब मनोरंजन किया है।

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। पंडित बिरजू महाराज, श्रेया घोषाल की आवाजों में सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे। शैल प्रदेश का संगीत था।

0: आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा की आवाजों में रंजना। फिल्म का गीत अरशाद कामिल के बोल थे, ए आर रहमान की तर्ज थी। श्रोताओ, आज विविध भारती का स्थापना दिवस है। विविध भारती की कुछ और प्यारी प्यारी सी बातों के साथ आगे बढ़ेंगे चित्रलोक कार्यक्रम में। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
4: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: पद्मावत फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल, स्वरूप खान की आवाजों में एम टूरिस्ट के बोल थे संजय लीला भंसाली की तर्ज थी।
1: 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विविध भारती के लाइव ट्रांसमिशन में आ रहे हैं जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक।
2: किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना।
1: दिन में 12 बजे से 2 बजे के बीच
3: अगर तुम मिल जाओ।
1: अन्नू मलिक की बातें, गाने और कुछ दिलचस्प कहानियां। 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह का जश्न।
0: श्रोताओं, सुरबहार की तान सी है विविध भारती की परवाज।

और आज 3 अक्टूबर है, विविध भारती की सालगिरह का जश्न हम मना रहे हैं। दिन भर है कार्यक्रम, तो रहिए विविध भारती के संग और सुनते रहिए हमारे विशेष कार्यक्रम। और आपको बता दें कि बोहेमिया चेकोस्लोवाकिया में अप्रैल 1907 यानी 1907 में जन्मे वॉल्टर कॉफमैन, जो एक संगीत शास्त्री संगीत शिक्षक के साथ साथ एक कंपोजर भी थे, कई देशों में गए और समय बिताया। 1935-1946 के बीच कॉफमैन भारत में रहे। फिल्म उद्योग बम्बई की एक कंपनी में संगीतकार रहे। कुछ समय बॉम्बे चैम्बर म्यूजिक सोसाइटी में बतौर म्यूजिक डायरेक्टर काम किया उन्होंने और 1946 तक ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक बन गए। कॉफमैन ने आकाशवाणी की संकेत ध्वनि यानी धुन बनाई, जिसमें तानपुरा, वायलिन और वायोला है।

0: प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे पलक मुछाल और साथियों की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल थे, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: हम मनाएंगे जश्न 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह पर। जाने माने फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया आएंगे विविध भारती के सजीव प्रसारण स्टूडियो में।
2: विविध भारती एक ऐसा चैनल है जहां हर दौर के गाने और हर तरह के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 3 अक्टूबर विविध भारती चैनल अपने 70 बरस पूरे कर रहा है। मैं फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया अपनी फिल्मी यात्रा के साथ सजीव प्रसारण में आपसे मिलने आऊंगा।
1: कुछ दिलचस्प किस्से, कुछ खुशगवार बातें,
3: आंखें भी होती हैं दिल की जुबान।
1: तो आप सब जुड़िए, सुनिए दिन में 2:30 बजे से 4 बजे तक और शामिल होइए विविध भारती की सालगिरह के जश्न में।
4: विविध भारती की सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंग कर्म की बहुमुखी कलाकार इला आर्मी। तो सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास जश्न हमारे साथ। तारीख याद रखिएगा, 3 अक्टूबर दिन में 11 बजे से 12 बजे तक विविध भारती की सालगिरह पर इला अरुण होंगी लाइव हमारे साथ।
5: सुरमा लगा के अरे कब से खड़ी हूँ दरवाजे पे, ओ रे शंका।
0: तो कुछ खास आवाज और इनके नाजो अंदाज से सजा है आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम जो 3 अक्टूबर विविध भारती की सालगिरह के जश्न के अवसर पर आप तक पहुंचेगा। रहिए विविध भारती के संग। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं श्रोताओं, चित्रलोक कार्यक्रम में फिर हाजिर होते हैं।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। और विविध भारती की अगर बेशकीमती सिग्नेचर ट्यून की बात की जाए, यानी संकेत धुन की बात की जाए श्रोताओं, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि ये ध्वनि ब्रह्मांड के गूंजते ओमकार नाद का स्वर है। वाल्टर कॉफमैन पश्चिमी क्लासिकल संगीत में दक्ष थे। 1957 में कॉफमैन स्थायी रूप से अमेरिका चले गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के संगीत प्रोफेसर बन गए। उन्होंने नई संगीत शैलियों की रचना की। उनकी लिखी पुस्तक रागाज

ऑफ नॉर्थ इंडिया भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक बेशकीमती किताब मानी जाती है। आकाशवाणी के विलक्षण सिग्नेचर ट्यून की दिव्यता अद्भुत है। श्रोताओ, सचमुच कुछ चंपई रंग लिए हुए ये धुन जब सुबह बिखरती है तो नूर बरसाती है।

जोधा अकबर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, ए आर रहमान की तर्ज थी, जावेद अख्तर की ये रचना थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

तेरे बिन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं वजीर फिल्म का ये गीत सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में विधु विनोद चोपड़ा की रचना शांतनु मोइत्रा की तर्ज है।

0: वजीद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, यही है आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आंखों की सिलवटें कहती हैं उम्र की एक दहलीज पार कर आए हैं, लेकिन विविध भारती के आंगन से गीतों की वही झनकार अब भी आती है, तो दिल से यही दुआ निकलती है कि तू शाद रहे, तेरा आंगन शहनाइयों की गूंज और गीतों की मधुरतान से आबाद रहे। श्रोताओं, विविध भारती के प्रसारण को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए शुरू से ही आज तक प्रयास किया जाता रहा है, और इसमें जब आपका साथ होता है तो विविध भारती एक नए मुकाम को छूती है, और आज भी विविध भारती की सालगिरह पर बहुत सारे कार्यक्रम आपके लिए खास पेश किए जाएंगे। तो चित्रलोक कार्यक्रम से संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत, लेकिन रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
4: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
5: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
4: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
5: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
6: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: श्रोताओं, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज का अखबार।
2: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
7: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
8: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।

0: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
1: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
2: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
3: आज का अखबार।

नमस्कार श्रोताओं, आज की दिलकश सुबह में आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज का अखबार। और हमें तो आप पहचानते ही हैं।

जी हाँ, नाम है मोनिका ठाकुर, और जो बात हमने कही ना, वही बात आप भी बड़े गुमान के साथ कह सकते हैं, अगर प्रकृति के करीब आप रहे हैं और उसे सवारना अपनी जिम्मेदारी शौक मानकर आपने निभाया है। सुबह सुबह की अगर बात करें तो खिड़की या दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा आपके चेहरे को छूकर ताजगी का अगर एहसास करा दे, पेड़ की डाल पर बैठी चिड़िया या घर की बैल्कनी से वही चिड़िया अपनी सुरीली आवाज आपको सुना दे, सूरज की किरणें कमरे में दस्तक दे दें, तो समझ लीजिए प्रकृति ने बिना कोई बिल भेजे आपको आज का सबसे खूबसूरत तोहफा दे दिया है।

जी हाँ, एक नई ताजगी भर देती है सूरज की किरणें जैसे ही हमारे शरीर पर पड़ती हैं, हमारी आंखों पे पड़ती हैं। और अब इसी बात के साथ एक सवाल आपसे पूछते हैं, बताइए हमें कि प्रकृति से हम लेते क्या क्या हैं। आप कहेंगे हवा, पानी, अनाज, फल, फूल, दवाइयाँ, सभी कुछ तो प्रकृति की देन है, पर बदले में हम क्या देते हैं? पड़ गए ना सोच में, प्लास्टिक की थैलियाँ, कूड़े के ढेर, प्रदूषण की ऐसी सौगात जो बाद में हमारे ही विनाश का कारण बनेगी। आज हम आपसे इस विषय पर इसलिए भी बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आज है विश्व प्रकृति दिवस। एक ऐसा अवसर जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति हमारे जीवन की कोई सजावटी चीज नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व की आधारशिला है। और हम अक्सर इस मौसम को देखकर तभी तो ये कहते हैं अगर हम इसके करीब रहते हैं और ये हमें अच्छा लगता है।

जी हाँ, लेकिन मौसम सुहाना रहेगा कैसे अगर पेड़ कम होते गए, नदियाँ गंदी होती गईं, ग्लेशियर पिघल गए और हवा में सांस लेने के बजाय हम प्रदूषण को ही अंदर लेते रहे। तो भाई स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, वो भी एक रेस लग जाएगी कि अच्छी हवा हम तक पहुँचेगी भी या नहीं। This is

दूरी, प्रकृति को सिर्फ नेचर कहकर फोटो खींचने तक सीमित मत रखिए, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। अगर हम जल्द इन बातों को नहीं अपनाएंगे तो नील गगन में बादल तो आएंगे लेकिन बिन बरसे भी लौट जाएंगे।

तो इस रेस में हमें पीछे नहीं रहना है, सबसे आगे बढ़ना है और कदम बढ़ाना है प्रकृति को संरक्षित करने की तरफ। प्रकृति हमसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगती, उसे बस हमारी छोटी छोटी जिम्मेदारियां चाहिए। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कूड़ा सही जगह डालें और सबसे

क्या बात है, जब पेड़ सांस लेते हैं तब हमारी सांसें चलती हैं, जब नदियां बहती हैं तब हमारी जिंदगी बहती है, और जब प्रकृति मुस्कुराती है तब धरती सचमुच खूबसूरत लगती है। तो आज प्रकृति दिवस पर एक छोटा सा वादा करें, धरती से सिर्फ लेने वाले नहीं, धरती को लौटाने वाले इंसान बनेंगे, तभी तो धरती पे हम जन्नत के दर्शन कर पाएंगे।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: स्वच्छता ही सेवा है।
2: आप सुन रहे हैं आज का अखबार कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में अब बात करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की।

सबसे पहले बात करते हैं खेल जगत की। एशियन गेम्स का 13वां दिन भारत के लिए बना स्वर्णिम। इस दिन भारत ने 10 मेडल जीते, इनमें 6 गोल्ड। महिला बॉक्सिंग में 12 साल बाद आया गोल्ड और महिला हॉकी टीम ने चीन को 1-0 से हराकर 44 साल बाद जीता गोल्ड। आज टीम इंडिया एक दिन में 2 इंटरनेशनल मैच खेलेगी। पहले मुकाबले में टीम जापान में एशियन गेम्स के फाइनल में पाकिस्तान से सुबह 10:30 पर खेलेगी और 2 बजे से टीम न्यू चंडीगढ़ में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा वनडे खेलेगी। भारतीय लेग स्पिनर यजवेंद्र चहल ने फर्स्ट क्लास यानी रेड बॉल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। अरुणाचल के बाद लद्दाख से चीन को संदेश, गोगरा हॉट स्प्रिंग समेत 28 जगह अब नक्शे में भी दर्ज। बुसान फिल्म फेस्टिवल में जाएंगी 9 भारतीय फिल्में। अब नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अंतरिक्ष से भी लिए जाएंगे नॉमिनेशंस।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मैदा टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
4: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
3: ऐता फिर यार मार वाली गल होगी।
4: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
5: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
6: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।
7: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के

0: करोगे। HIV AIDS जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV AIDS संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
0: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV AIDS से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV AIDS फ्री बनाएं। HIV AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ AIDS कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: आज का अखबार कार्यक्रम में अब बात करते हैं क्षेत्रीय खबरों की। पंजाब में घर के नक्शे का गणित बदला, प्लॉट कितना भी बड़ा हो अब 2.45 मीटर से ज्यादा बाहर नहीं निकाल सकेंगे बालकनी। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर बड़ी चिंता, अभ्यर्थियों को नहीं मिला मैसेज, 4 अक्टूबर को सभी जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र बनाए जाएंगे। हरियाणा में नए विचारों के साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा स्टेट स्टार्टअप पॉलिसी 2022 में नए नियम जोड़ते हुए सप्लीमेंट नोटिफिकेशन की जारी। स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को राज्य सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की जाएगी प्रदान। मीडिया इन्फ्लुएंसर का सहयोग लेगा हरियाणा पर्यटन विभाग। पर्यटन विभाग करेगा प्रमोशन। कुरुक्षेत्र की धार्मिक विरासत के साथ बढ़ेगी महाभारत केंद्र की भी ख्याति। हरियाणा में राजस्व रिकॉर्ड की त्रुटियां अब तहसील स्तर पर सुधरेंगी। इस बार महंगा पड़ेगा सेब उत्पादन में 40% तक कमी। ओलावृष्टि से हिमाचल के इलाकों में 50% तक गिरावट। आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय खबरें।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है तां सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
4: कार्यक्रम में बात करते हैं स्थानीय खबरों की। अगर आपका वोट कटा है तो अब मौका है नाम जुड़वाने का। इसके लिए 10 से 11 अक्टूबर को लगाए जाएंगे स्पेशल कैंप। वोट दूसरी जगह है तो फॉर्म 6 नहीं 8 भरकर कराएं शिफ्ट। 2002 के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। सिटी ब्यूटीफुल में ग्राउंड वाटर रिचार्ज और सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन को मजबूती देने के लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट 2 नई वाटर बॉडीज बनाएगा। ये झीलें टूरिज्म के बजाय पूरी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से जंगलों के भीतर होंगी तैयार। पंजाब यूनिवर्सिटी के UIET ने तैयार की कॉम्पैक्ट मशीन। छोटे कारोबारियों के लिए ऑटोमेशन की एंट्री कॉस्ट घटने की उम्मीद। 8 लाख की जगह 2.5 लाख के प्रोसेसर से चलेगा सिस्टम। CPCC ने जारी की अप्रैल से जून की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट के बगैर नहीं छोड़ा जा रहा वेस्ट वाटर। सभी 8 STP में सीवेज बैक्टीरिया खत्म, लेकिन पटियाला के राव और सुखना जो में बढ़ा पॉल्यूशन। चंडीगढ़ के जंगलों में इकोसिस्टम मजबूत। तेंदुआ, सांभर और ग्रिफॉन गिद्ध तक मौजूद। सुखना लेक से वर्ल्ड पार्क तक 3.5 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के साथ वाइल्ड लाइफ वीक शुरू। सर्वे रिपोर्ट जारी। 22 नवंबर को दौड़ेंगी सिटी ब्यूटीफुल। चंडीगढ़ इंटरनेशनल मैराथन की तैयारियां हुई शुरू। PGI में ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट का नाम बदला, अब डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी।

डीटी में रील्स वीडियो बनाए तो सीटीयू कर्मियों पर होगी कार्रवाई। बस डिपो, वर्कशॉप और ऑफिस में बिना अनुमति पर्सनल शूटिंग भी रहेगी बैन। तो आज का अखबार कार्यक्रम में ये थी क्षेत्रीय स्तर की, स्थानीय स्तर की खबरें।

दिल चुराने का काम हमारे एक और खबर के मेहमान हैं जिन्होंने काम किया है और पूरे देश को इनके ऊपर गर्व है। गुजरात सरकार ने कैप्टन स्मिथ मच्छार को उनकी बहादुरी के लिए राज्य के सर्वोच्च सम्मान विशिष्ट गुजरात गरिमा पुरस्कार से सम्मानित करने का ऐलान किया है। उड़ान के दौरान सह पायलट ने विमान को क्रैश करने की साजिश रची थी, लेकिन चाकू से गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन मच्छार ने सह पायलट को रोका और 174 यात्रियों की जान बचाई। सलाम है ऐसे जज्बे को और ऐसी देशभक्ति को

0: मोनिका ठाकुर को अब आज का अखबार संपन्न करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
0: हिंदी में समाचारों के लिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने व्यापार बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे दूसरे देशों के बाजारों में सामान बहुत कम कीमत पर बेचने के कारण डंपिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए WTO के नियमों के तहत एंटी डंपिंग शुल्क और अन्य जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज उज्जैन में 255 करोड़ रुपए के डेयरी संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इस डेयरी संयंत्र की प्रसंस्करण की क्षमता प्रतिदिन 3 लाख लीटर दूध है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दूध उत्पादन और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आज मध्य प्रदेश में गौ पालक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रॉयलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमैया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा।

0: और इस पर 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 साल पूरे कर लिए हैं। मन की बात का पहला कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 को विजयादशमी के दिन प्रसारित हुआ था। हाल ही में प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के जरिए प्रधानमंत्री देश के लोगों से सीधे संवाद करते हैं। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने भारत में हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण को मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए 1,86,405 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसमें 54,082 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता शामिल है।
1: हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करना और बैटरी स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि इस योजना से भारत अपनी बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा। इससे देश की बढ़ती बिजली जरूरत पूरी करने में मदद मिलेगी। श्री साइमन ने कहा कि मजबूत बिजली नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हरित ऊर्जा गलियारा के तीसरे चरण के अंतर्गत राज्यों के भीतर बिजली पहुंचाने की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: जापान के आईची नायोगया में एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। तीरंदाजी में आज सुबह कुमकुम मोहद ने महिला सिंगल्स रिकर्व में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी को शूट ऑफ में पराजित किया। इस समय स्वर्ण पदक के लिए पुरुष क्रिकेट में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से हो रहा है। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। इसके अलावा आज दोपहर पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक के लिए भारत और मलेशिया आमने सामने होंगे। इससे पहले कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक जीते। इनमें मुक्केबाजी में 3, महिला हॉकी, कुश्ती और तीरंदाजी में 1-1 स्वर्ण पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 17 स्वर्ण, 25 रजत और 35 कांस्य पदक सहित 77 पदक के साथ 5वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन

0: में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला गंदगी को दूर भगाओ भारत को स्वच्छ बनाओ।
1: श्रोताओं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सफर सुरीला साहब। इस कार्यक्रम में आपके साथ है आपकी हमसफर मोनिका ठाकुर। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म हीरो से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम का अगला गीत अब आप सुनेंगे कुमार सानू अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल। गीत लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: जहाँ रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
2: कार्यक्रम का अगला गीत साजन फिल्म से, कुमार सानू, SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो।
2: कार्यक्रम का अंतिम गीत आप सुनेंगे पंकज उदास की आवाज में। गीत लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है बाजीगर।

0: सफर सुरीला सा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अब मोनिका ठाकुर को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: सब रोगों की एक ही दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई।
0: आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, और अब समय हो गया है कार्यक्रम पॉप टाइम का।
2: पॉप टाइम। पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
3: हेलो मेरे सोने पाजी।
2: हेलो पिंके, और सुनाओ क्या हाल चाल है? आज शन्नो जी नहीं आई?
3: पाजी आपको कहीं देख रही हैं? चली शन्नो जी?
2: नहीं पिंके,
3: आई ही नहीं तो दिखेंगी क्या टीडी टी करके?
2: पिंके बड़े खुश हो आज? ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, आज शन्नो जी नहीं आई इसीलिए बड़े खुश हो?
3: पाजी आपसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही टीडी टी करके।
2: नहीं नहीं पिंके, तुम गलत समझ रहे हो।
3: पाजी सब समझता हूँ मैं। हाँ
2: पर
3: पाजी पार नहीं लगे मुझे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं यार टीडी टी करके?
2: ओहो पिंके मुझे माफ करो,
3: पहले अपनी गलती बताओ फिर माफ भी कर देंगे टीडी टी करके।
2: पिंके वही तो पता नहीं कि आज मैंने ऐसी क्या गलती की है जो तुम मुझे इतना सता रहे हो।
3: पाजी आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे आपने बैंक से बड़ा तगड़ा कर्जा ले लिया है और आपसे किस्तें नहीं तारी जा रही टीडी टी करके।
2: पिंके सुधर जाओ सुधर।
3: पाजी अब मुझे बाद में सुधारना, पहले दोस्तों को गाना सुना दो, नहीं तो फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: और सच पाजी एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया।
1: अच्छा तो अब बता दो ना पिंके।
0: पाजी कल रात मैं जैसे ही सोया
1: तुमने एक अजीब सपना देखा।
0: नहीं पाजी बिजली चली गई। मारे गर्मी के मैं इधर से उधर उधर से इधर घूमने लगा, तभी
1: क्या हुआ पिंके
0: बिजली आ गई टी टी टी करके। मैं फिर सो गया, जैसे ही मेरी आंख लगी
1: बिजली चली गई।
0: नहीं पाजी मैंने बड़ा अजीब सपना देखा।
1: अच्छा क्या था वो सपना सुनाओ ना।
0: पाजी सपने में आप ना मेरा ट्रक ड्राइवर थे।
1: क्या ट्रक ड्राइवर
0: ना, और आपको मैं सलमान खान बनाऊं। सपने में टीडी टी करके।
1: पिंके सुधर जाओ।
0: पाजी अब आप ना मुझे बाद में सुधारना, पहले सुनाओ एक गाना, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टीडी टी करके।

0: अच्छा पिंके, गाना भी सुन लिया, अब बताओ ना सपने में आगे क्या हुआ।
1: पाजी, आपने जैसे ही कहीं जाने के लिए अपना ट्रक स्टार्ट किया, ओए होए होए होए, आपको ना सड़क पर बाबे आदम के जमाने का दिया मिला।
0: अच्छा, मैंने उठा लिया होगा वो दिया।
1: हाँ जी बाजी, फ्री की चीजें छोड़ते कहाँ हो आप। पुलिस टैप की आते पै गई है आपको टीड़ी टी करके। पाजी, वैसे कई बार सड़क से ऐसी लवारिस चीजें उठाना बड़ा खतरनाक हो सकता है।
0: हाँ पिंके, बिल्कुल।
1: तो फिर सपने में आपने वो दिया क्यों उठाया? उठाया तो उसे रगड़ा क्यों? तुम देखा, सोचा ठाकुर, दिया बहुत खुश होगा, जिन देगा का। पाजी, आप अलादीन का वो दिया समझ के रगड़ने लगे, दीवा रगड़ रगड़ के आपके अंगूठे की टीड़ी टी हो गई, वड्डा छाला पै गया, जैसे सास के लिए पकौड़े तलते तलते तेल का अंगूठे पे छीटा पड़ गया हो और छाला पड़ गया हो टीड़ी टी करके। पाजी, दिए में से ना
0: क्या निकला?
1: सोंज काम टीड़ी टी करके।
0: सोहन दिए में से निकला?
1: नहीं पाजी, पास वाली झाड़ियों से निकला।
2: ओ बड़े, यह दिया रखा था अपने साले के जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए, कहा चला गया, लगता है चोर उठा के ले गया।

bass is heavy.

0: और सच में छी बाजी इस सोन जकाम के चक्कर में मैं एक बात तो आपको बताना ही भूल गया।
1: क्या पिंके?
2: ओ यार पिंके, तू भी बड़ा पलक्कड़ है।
0: हाँ हाँ, तू तो जैसे बड़ी यादगारी चीज है।
1: पिंके बताओ ना वो बात जो तुम बताने वाले थे।
0: हाँ जी बाजी, कल दोपहर को ना बड़ी गर्मी थी, ओए होए होए होए, आसमान से तो जैसे आग बरस रही थी टीडीटी करके।
2: ओ यार पिके, गर्मी तो रोज ही होती है, आसमान से आग तो रोज ही बरसती है।
0: पर चोर रोज तो नहीं आते।
1: चोर? अब कहाँ आया था चोर?
0: पाजी हमारे मोहल्ले में हमारे पड़ोसियों के बंद घर का ना ताला तोड़ रहा था, इतनी गर्मी में ताला तोड़ तोड़ के हाफ गया। मैंने देखा बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है। पाजी मैं ना एक बोतल पानी की लेकर गया उसके पास और उससे कहा, ए चोर पाजी आप ताला तोड़ तोड़ के थक गए होंगे, गर्मी बड़ी है, ओए होए होए होए, ये लो थोड़ा पानी पी लो।
1: अच्छा,
2: ओ यार पिके, तू चोरों को पानी पिला रहा है?
0: क्यों, चोर बंदे नहीं होते? पाजी मुझे देखते ही चोर डर गया, कहने लगा,
3: मुझे माफ कर दो, गलती हो गई।
0: चोर पाजी आप ना मेरे साथ चलो, मैं आपको नींबू पानी पिलाता हूँ, मैंगो शेक पिलाता हूँ। पाजी चोर ना डर के मारे कांपने लगा।
3: देख मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ, छोड़ दे मुझे, कुछ मजबूरी थी इसीलिए चोरी करने आ गया मैं।
0: ना हमें भी तो बड़ी मजबूरी होती है, हम चोरियां करने जाते हैं, हैं?
3: और देख यार मैं तेरे बड़े भाई जैसा हूँ।
0: बड़ा भाई कह रहे हो, अपने छोटे भरा का ख्याल तो रखते नहीं। हा? देखो कितना बर्तनों का ढेर लगा है आपके इस छोटे भरा के घर में। बस पाजी चोर ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। इतनी गर्मी में चोर की बस हो गई बर्तन मांज मांज के।
2: लगता है 2-3 साल के बर्तन इकट्ठे कर रखे है इसने। ओए होए होए, बस हो गई भाई।
3: लो जी अब बर्तन मांजेंगे, अब मैं जाऊं।
0: ओ चोर भाजी आपने मुझे छोटा भरा कहा है, छोटे भरा का घर देखो ना कितना गंदा हो गया है, आपकी परजाई जी घर में नहीं है, 1 महीना हो गया झाड़ू पोछा किए। आपको अच्छा लगेगा अपने छोटे भरा का ये गंदा मंदा घर। बस पाजी चोर शुरू हो गया, पहले झाड़ू और फिर रगड़ रगड़ के पोछा।

0: मेछी पाजी अब मैं जाऊं, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टीडी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर, मेछी पाजी मैं भी जाऊं। हाँ हाँ सोहन तुम भी जाओ।
0: अच्छा पाजी, चंगा भाई सोहन जकाम के गोल्डन मरीज, ओके बाय।
1: नमस्ते मेछी पाजी, बाय पिंके। बाय सोहन, बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: पॉप टाइम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: हम सब ने मिलकर ठाना है स्वच्छ भारत बनाना है।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपकी फरमाइशी गीत आपको सुनवाते हैं। आप अपने फरमाइशी गीत के लिए जो भी आप सुनना चाहते हैं वो संदेश हमें भेज सकते हैं।

इंस्टाग्राम पर। हमारा इंस्टा हैंडल है आकाशवाणी चंडीगढ़। जी हाँ, इस पर आप जैसे ही अपना नाम और अपनी फरमाइश लिखकर भेजेंगे, हम तक ये पहुंच जाएगा और आपको सुनने को मिलेंगे आपके फरमाइशी गीत। तो चलिए, देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की फिल्म जूली के इस गीत के साथ, जिसे सुनना चाहा है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर ये गीत।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। चलिए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं, ये हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, इनकी फरमाइश का ये गीत। ये गीत हमें भेजा है इन्होंने, यानी अपनी फरमाइश हमें इन्होंने भेजी है नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिल्का से। चलिए आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का ये गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर। बापू का घर घर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना देश।

0: चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी।

0: स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ से। चलिए अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं फिल्म एक दूजे के लिए का ये गीत। फरमाइश भेजी है पवन कनौजिया, वंदना कनौजिया, गरिमा कनौजिया ने श्री आनंदपुर साहिब से।

अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। इस गीत को सुनना चाहा है हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राज का उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में ये गीत।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं,
2: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
3: अगली फरमाइश हमें मिली है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा की। ये हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से। इन्होंने सुनना चाहा है फिल्म राही बदल गए का ये गीत।

अगला गीत आपको सुनवाते हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा की फरमाइश पर। इन्होंने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी की आवाज में एक नारी दो रूप फिल्म का ये गीत।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं फिल्म लैला मजनू का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव ने, और इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है प्लॉट नंबर 7 टिम्बर मार्केट सेक्टर 26 से शहजाद अंसारी, रेशमा अंसारी, हबीब अंसारी, माज अंसारी और हसमुख लाल, इनके साथ फैज अंसारी की।

0: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे। स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है फिल्म स्वामी के इस गीत की। फरमाइश करता है सतीश कुमार, सुनीता कुमारी, कृष्णा शर्मा, शैरी शर्मा, ये हैं सेक्टर 42 बी चंडीगढ़ से।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म अनुरोध से। फरमाइश करता है नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु।

0: इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस, इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। 12 बजने को हैं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से भारत लाने पर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क के नाम से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। श्री शाह ने कहा कि एजेंसियों ने उसकी असली पहचान उजागर करने के लिए हर संभव प्रयास किए और उसे निर्वासित कराया। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर मादक पदार्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने व्यापारिक बाधाओं, डंपिंग और अनुचित मूल्य निर्धारण के समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की मांग की है। अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के समापन पर वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ देशों में सरकार की मदद से आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। श्री गोयल ने कहा कि देश 140 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भरोसेमंद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बन गया है। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों के साथ भारत का व्यापार पारदर्शी, भेदभाव रहित और नियम आधारित व्यवस्था पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का प्रावधान इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण गारंटी है, जिसके अंतर्गत छोटे और बड़े सभी कारोबारियों के लिए समान शर्तें लागू होती हैं। जबरन मजदूरी को समाप्त करने के विषय पर श्री गोयल ने कहा कि जबरन श्रम के उन्मूलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूर्ण और बिना शर्त है। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन WTO को केंद्र में रखते हुए निष्पक्ष, समान, भेदभाव रहित और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री गोयल ने कहा कि चार्टर्ड अकाउंट्स सीमा पार कराधान नियामक अनुपालन और वित्तीय प्रबंधन में व्यवसायों की सहायता करके भारतीय उद्यमों को वैश्विक पूंजी निवेश के लिए तैयार करके भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने शिकागो, मिशिगन और ओहियो शाखाओं के भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के नेतृत्व और सदस्यों के साथ एक वार्ता के दौरान ये बात कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक बागवानी केंद्र से रायलसीमा के किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कल आंध्र प्रदेश के अन्नमया जिले में वैश्विक बागवानी केंद्र और भारतीय कृषि विद्यालय की आधारशिला रखी। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर आंध्र प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय कृषि विद्यालय किसानों को नई तकनीक और खेती के बेहतर तरीकों की जानकारी देगा। वैश्विक बागवानी केंद्र में 10 जिले शामिल होंगे। इस परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया जाएगा और इस पर 1 लाख करोड़ रुपए

0: खर्च होने का अनुमान है। G7 देशों ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए अगले 4 महीने में 10 करोड़ बैरल कच्चा तेल और डीजल बाजार में जारी करने का निर्णय लिया है। अमेरिका में डीजल की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय देश अपने तेल भंडार से बड़ी मात्रा में डीजल और कच्चा तेल जारी करेंगे। ये फैसला डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत के बाद लिया गया। महाराष्ट्र के हिंगोली ज़िले में आज सुबह 9:43 पर 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। हिंगोली ज़िला प्रशासन ने निवासियों से शांत रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। उधर जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। प्रणवी देश के लिए गोल्फ का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 2002 में शिव कपूर ने पुरुष स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में धीरज बोम्मा देवरा को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। कल महिला हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था और क्रिकेट के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 212 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान दूसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 13 रन पर खेल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। विविध भारती के स्टूडियो से लाइव है मेरे साथ अनु मलिक। 70वें वर्ष में विविध भारती प्रवेश कर रही है और इस समय अनु मलिक हैं विविध भारती के स्टूडियो में बिल्कुल लाइव। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस भाई।
0: अनु जी, आपसे बातें करने के पहले जरा एक बार आपका एक प्रोफाइल प्ले कर देते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वो कौन से अनमोल गाने हैं जो आपके इस सफर में आपने हमें दिए हैं और विविध भारती से पिछले कई सालों से बजते रहे हैं। उन्होंने बनाए हैं कुछ बेमिसाल गाने।

0: अनु जी, इतने सारे गाने और ये सारे एक से बढ़ के हिट हैं और विविध भारती जो है वो इस समय विविध भारती का ये कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में सुना जा रहा है। न जाने कितने देश हमें सुन रहे हैं और जिस तरह की हमने पब्लिसिटी की थी कि आप विविध भारती पर आ रहे हैं। विविध भारती देश का सबसे पुराना एंटरटेनमेंट रेडियो चैनल है और 70वें साल में प्रवेश कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे और रेडियो से क्या नाता रहा है आपका?
1: देखिए, ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ
0: जी
1: कि विविध भारती ने मुझे याद किया। विविध भारती एक ऐसा शब्द है जो हमारे नस नस में, रग रग में है
0: जी।
1: अब आप पूछेंगे ये कैसे है? मैं उनका बेटा हूँ जिनका नाम है सरदार मलिक साहब,
0: मशहूर संगीतकार सरदार मलिक,
1: जिन्होंने कमाल कमाल के गाने बनाए। बचपन से ही मुझे उनसे सुनने को मिलता था। और ये कहा उन्होंने कि जब भी विविध भारती ने याद किया है मैं वहां गया हूं, और आगे चलकर तो कितना भी नाम कमा ले, याद रखना कि ये वो जगह है विविध भारती जहां ऐसे ऐसे संगीतकार आके अपनी कहानियां सुना के गए हैं, ऐसा कमाल का काम किया है, उन्हें कभी ना मत कहना।
0: वाह,
1: आज मैं यहां बैठा हूं तो एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, मेरा 100 बार ये दिल से एक आवाज निकल रही है कि आप कितनी भी मेरी तारीफ करो, ये कहो कि आप आए हैं, अनु जी आए हैं, मैं आपको हाथ जोड़कर नमन करता हूं और कहता हूं कि थैंक यू, आपने मुझे यहां बुलाया।
0: क्या बात है,
1: आपके इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को एक अंदाजा होने लगेगा मैंने कितनी मेहनत की है, कितनी जान तोड़। आप जो गाने सुना रहे थे मैं अपनी यादों में चला गया
0: जी बिल्कुल,
1: और वो यादें हैं उन निर्माता की, ज्यादातर निर्देशक का नाम लेते हैं लेकिन निर्माता जो प्रोड्यूसर होता है
0: जी
1: कम लिया जाता है उनका नाम, वो निर्माता सब याद आते हैं। जब आपने रफी साहब का गाना सुनाया अभी, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, मेरी उम्र थी 16 साल, 17 साल जब मैंने ये गाना बनाया था
0: पूनम फिल्म के लिए
1: जी, और ये हरमेश मल्होत्रा साहब ने मुझे मौका दिया था। फिर आपने सभी गाने सुनाए और सभी मेरे निर्देशक निर्माता सब याद आए, मेरे गायक याद आए, मेरे लेखक याद आए जिन्होंने गाने लिखे हैं,
0: हाँ जी,
1: मेरे साजिंदे याद आए।
0: बिल्कुल, क्या बात है, ये कितनी प्यारी बात है कि आप अब म्यूजिशियंस को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मैं इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि संगीत एक संगत का काम होता है यूनुस जी,
0: जी
1: आपको ये सब लोग सही मिल जाएं तो गाने बन जाते हैं।
0: बिल्कुल, आपने पिताजी को याद किया। हम यहां ये दावा कर रहे हैं कि विविध भारती ने 70 बरस का अपना सफर पूरा किया
1: जी,
0: और इन 70 सालों में हमने फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लेजेंड्स को रिकॉर्ड किया। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रेडियो चैनल है जिसके पास यादों का एक बहुत बड़ा खजाना है, और आपके लिए मैं एक तोहफा लेकर आया हूं। ये तोहफा है पिताजी की आवाज। मुझे सौभाग्य रहा है कि मैं पिताजी से मिला हूं, विविध भारती में ही मिला हूं जब वो विविध भारती में आए थे, और आज मैं आपके लिए खास तौर पर पिताजी की याद, उनकी आवाज लेकर आया हूं। बरसों पहले की ये रिकॉर्डिंग, 1 मिनट का टुकड़ा मैं आपको सुनवाता हूं।

ये गाना के जिसने गाया वो भी उतना ही बड़ा आर्टिस्ट था। उन्होंने कहा, मलिक साहब मैंने बहुत अच्छे गाने गाए, लोगों ने पसंद भी बहुत किए, लेकिन हर एक ने कहा कहीं ना कहीं आप फीके पड़ते हैं। मैंने कहा अगर आप मेहनत करें

जी मैं करूंगा। तो आप 10 से लेकर 12 बजे तक मेरे पास रोजाना इस कुटिया में आकर बैठी है। 1 मंथ आप बिलीव करिए कि वो इंसान मेरे पास बैठा, और हर वक्त ये पूछता था क्यों कोई कसर तो बाकी नहीं।

0: जी कैसा लगा पिताजी की आवाज सुन के?
1: मैं एक्चुअली भावुक हो गया हूं, क्योंकि मैं ये गाना, मेरी माँ कहती हैं, अब तो माँ भी नहीं रही, माँ कहती थी कि तू 4 साल का था जब मुकेश जी घर पर आया करते थे, तू डैडी की गोद में बैठता था।
0: अच्छा।
1: और रिहर्सल होती थी सारंग तेरी याद में, तो वो दिन ऐसे अब याद आ रहे हैं।
0: जी जी।
1: और जिस अंदाज से डैडी ने ये गाना बनाया और जो गाया है मुकेश जी ने, और मैं उनका भी तारीफ करना चाहता हूँ जिन्होंने गाना लिखा, भरत व्यास साहब का।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वो अंबुवा का झूलना, वो पीपल सी छाव,
0: घूंघट
1: में जब चांद था मेहनती लगी थी पांव, आज उजड़ के रह गया वो सपनों का गांव। डैडी एक महान इंसान थे, भरत व्यास जी, मुकेश जी, और ये गाना आज ऐसा लगता है कल रिकॉर्ड किया गया है।
0: बिल्कुल।
1: इतनी ताजगी है इसकी तर्ज में कि वो कूट कूट कर मेरे अंदर भरी हुई है। जो को सीखा वहीं से आया है, और मैं अपने फादर को नमन करना चाहता हूँ, और उनकी यादों में ही मैं रहता हूँ और आज भी काम करता हूँ। बल्कि मेरी जंग भी उनकी वजह से हुई
0: जी,
1: जब उनको वो मुकाम नहीं मिला तो मैंने कहा मैं नाम कमाऊंगा डैडी आपके लिए।
0: बिल्कुल। और आपने वो करके दिखाया, और मुझे याद है कि जब मुलाकात मेरी हुई थी तो वो इतनी आपकी तारीफें करा करते थे और एक गर्व से भरे हुए थे कि मेरे बेटे ने वो मकाम हासिल किया जो जिंदगी ने मुझे मौका नहीं दिया हासिल करने का।
1: जी, बिल्कुल।
0: और चूंकि यादों की बात है तो वो गाना जो आपने इसलिए बनाया शायद ताकि जब भी कभी हम पुराने दौर को याद करें तो इस गाने को दोहराएं कि यादें याद रह जाती हैं।

0: अनु जी बिल्कुल जज्बाती मोड पर हम पहुंच गए, पिताजी को याद किया और
1: बिल्कुल
0: ये गाना आया सुभाष घई की फिल्म यादें। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया, इंडस्ट्री के सबसे बड़े हीरोज के गाने आपने बनाए। एक वो दौर था जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, एक वो दौर था जब आपने अमिताभ बच्चन के लिए लगातार गाने बनाए, आगे भी बनाए, तो वो यादें बांटिए, यादें हैं।
1: देखिए ये माँ सरस्वती की कृपा है। मैं बताता हूँ क्यों इम्पोर्टेंट था
0: जी
1: ऐसे महान सुभाष जी के साथ, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करना। उसकी जद्दोजहद बहुत हुई
0: जी,
1: आसान नहीं रहा, क्योंकि हमारे सामने बड़े जबरदस्त

0: करते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब
1: जी,
0: आर डी बर्मन साहब, कल्याण जी आनंद जी साहब, जो कमाल कमाल के गाने बना रहे थे, उनके सामने फिल्म मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था।
1: जी जी,
0: लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर गाने बनाने की एक चाह है।
1: जी,
0: मैं गाना बनाता था, उसे कैसेट्स में रिकॉर्ड करता था, बाजा लेकर चल पड़ता था।
1: यस,
0: सुभाष घई साहब का म्यूजिक बड़ा कमाल रहा है।
1: बिल्कुल,
0: उनकी हर फिल्म का म्यूजिक कमाल रहा है। तब जाके जब मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का, अब ये जो गाना है, नगमे हैं, शिकवे हैं, इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको,
1: जी
0: मैंने ऐसे सुनाया,

0: इसमें आनंद बख्शी साहब बहुत याद आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बख्शी साहब ने कहा कि सुभाष जी सुनाओ ये लड़के ने क्या बनाया। मैंने जब ट्यून सुनाई उनको
1: जी,
0: मैंने ऐसे सुनाया

0: अचानक बख्शी साहब कहते हैं, अनु मुखड़ा यहीं खत्म हो रहा है, मैंने कहा कुछ और आ सकता है। माजी ने भी ये कहा, मैं और क्या लेके आया है कि अचानक मैं समझ गया बख्शी साहब क्या चाहते हैं, वो लिखना और चाहते थे।
1: हाँ, उसके आगे
0: तो मैंने आगे ऐसे ही ऐसे गाया, डा डा डा डा डा डा डा डा डो डो डो डो डो डो डो। और उसके बाद जो तर्ज उनको इतनी पसंद आई, लिखने के बाद गाना वो सुभाष जी की तरफ देखते हैं आनंद।
1: हाँ हाँ,
0: बख्शी साहब बोलते हैं, सुभाष ये तेरा लक्ष्मी है।
1: वाह वाह वाह, क्या स्टेटमेंट है ये।
0: ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कहना

0: मैं एक नेचुरल म्यूजिशियन, मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ नेचुरल म्यूजिशियन। नेचुरल म्यूजिशियन वो होता है जो चीजें आमद होती, सरस्वती माँ की कृपा है।
1: जी जी,
0: मैं बाजे पर बैठा हूं और बाजा बजा रहा हूं और ये नोट साक्षात अंदर आते हैं।
1: क्या बात है।
0: जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, मैंने बहुत इंटरव्यू कहा है, अब आप पूछेंगे अनु जी आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, बात करते करते भी एक दिमाग में, एक सेक्शन ऑफ मेरे दिमाग में ट्यून चल रही है।
1: अच्छा,
2: एक तो मेरे फादर,
1: जी जी,
2: एक तो बड़े संगीतकार,
0: लेकिन मैं दीवाना हूं शंकर जयकिशन का, आर डी बर्मन का। इसलिए दीवाना हूं मैं क्योंकि मैं समझता हूं कि शंकर जयकिशन आर डी बर्मन एक कंप्लीट लोग थे।
1: जी जी,
0: उसके बाद फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, और उसके बाद आप गिनते जाइए, मदन मोहन जी के गाने सुन लीजिए,
1: वाह,
0: सलील दा के सुन लीजिए, सचिन देव बर्मन की सुनिए, नौशाद साहब की सुनिए, क्या काम किया लोगों ने। अभी भी मुझे लगता है मुझे और मेहनत करनी है, और काम करना है। बल्कि आपको मैं न्यूज बताना चाहता हूं कि जब आपकी 70th ईयर है ये
1: जी
0: भारती का,
1: जी
0: जनवरी 11 को 2027 में मैं 50 साल काम, आई विल बी कंप्लीटिंग 50 ईयर्स।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: 14 साल की उम्र में शुरू हुआ था, फिल्म थी हंटर वाली 77।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको याद होगा।
1: बिल्कुल,
0: मैंने काम किया है लता जी के साथ, आशा जी के साथ,
1: रफी साहब के साथ,
0: किशोर दा के साथ और मोहम्मद रफी साहब के साथ, यहां तक मन्ना दा के साथ भी काम किया है, बस मुकेश जी के साथ नहीं किया। एक बेबाक लड़का 14 साल की उम्र में बाजा लेकर पहुंचता था सबके पास, मतलब मेरे पास तर्ज है, सुनोगे? मेरे पास तर्ज है। कुछ लोग हंसते भी थे, कुछ लोग मजाक भी बनाते थे, लेकिन मैं हारा नहीं, और आज भी मुझे लगता है कि मैं फिर से काम शुरू करने को तैयार हूं।
1: क्या बात है। रफी साहब से जुड़ी कोई याद?
0: बहुत सी यादें, खास करके इसी गाने की, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता। हुआ यूं कि मैंने उनको अप्रोच किया, हरमेश मल्होत्रा साहब ने कहा कि अन्नू रफी साहब से गवाते हैं।
1: हाँ सर,
0: मैं जाता हूं उनको मिलने के लिए। तो उनके ब्रदर इन लॉ थे जहीर भाई, उनको फोन किया, मैं रफी साहब से मिलना चाहता हूं। तो रफी साहब से उन्होंने बात की और कहा कि कौन है आप? मैं बोला बस मैंने इतना कहा मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं। तो वो बहुत खुश हो गए कि मलिक का बेटा मुझसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? मैंने एक फिल्म साइन की है, आपसे गाना गवाना चाहता हूं।
1: हाँ,
0: उन्होंने कहा कल सुबह 9 बजे मेरे घर पर आ जाना।
1: क्या बात है।
0: मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरी रात, और सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली कि मुझे रफी साहब को मिलने जाना। तो मैं भूल गया वक्त, इतने बजे बुलाया था, मैं 6 बजे पहुंच गया।
1: अरे बाप।

0: इतने सुबह?
1: 6:15 मैं पहुंच गया और बाहर खड़ा हो गया उनके दरवाजे के, बंगला था उनका ये बैंड्रा में।
0: हाँ,
1: अभी वहां बिल्डिंग बन गई है
0: जी।
1: और रफी साहब, मुझे पता नहीं था कि रफी साहब भी जल्दी उठते थे, वो सुबह अपने गार्डन में बैठते थे
0: जी।
1: और झरोके से जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो दरबार रोक रहा था, तो उन्होंने देख लिया, तो देखकर हैरान हो गए। अरे भाई, मैंने आप बहुत सॉफ्टली बात करते थे।
0: हाँ,
1: कौन हो? मैं बोला अन्नू मलिक हूँ, सरदार मलिक साहब का बेटा। अरे मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था। नाराज होने के बजाय उन्होंने मुझे इशारा किया अंदर आओ, मैं अंदर चला गया।
0: हाँ,
1: 6:30-7 बजे ही मैं जाके लॉन्स में खड़ा हो गया। वो उठे, कुर्ता पहना हुआ था, लुंगी पहनी हुई थी, और अचानक मुझे रूम में बुला लिया। जैसा मैं रूम में गया, मैं क्या देखता हूं कि चारों तरफ अवार्ड्स ही अवार्ड्स हैं, एसी ऑन है, खूबसूरत समा और खुशबूदार रूम था। रफी साहब सामने बैठ गए, बोला गाना लेके आए हो? मैंने हाँ, सुनाइए। और मैंने बाजा खोला और अपना गाना सुना। तो सबसे पहले बोलते आ रहे, तुम बायां से बजाते हो?
0: हाँ।
1: हाँ, मैं लेफ्टी हूँ। अच्छा अच्छा, सुनाओ सुनाओ। अब मैं गाना गा रहा हूँ, मोहब्बत रंग लाएगी जनाब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे रंग लाती है शराब। उनके जो ब्रदर इन लॉ थे वो गाना लिखते जा रहे थे
0: जी।
1: मैंने चीज नोटिस की कि रफी साहब कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे,
0: ओ
1: चुप थे।
0: हाँ हाँ,
1: मैं गा रहा हूँ दु दु दु दु दु दु। अचानक एक चीज मेरे दिमाग में, मैं बोला चलो अंतरा गाते हैं। अब जैसे मैंने अंतरा गाया, अभी कम सिन हो क्या जानो, तो मुझे कहते हैं वापस गाओ। मैंने कहा अभी कम सिन हो क्या जानो, तो वहीं रफी साहब से एक चीज सीखा मैं। बोला ये जो तुम गा रहे हो
0: जी,
1: थोड़ा गलत है।
0: ओ,
1: तो मैं बोला सर क्या गलत है? तुम गा रहे हो अभी कम सिन हो क्या जानो, इसको मिला दो, तुम एक शब्द को दो टुकड़े कर दो। अभी कम सिन हो क्या, और मैं उनके पांव पर गिर गया।
0: वाह वाह।
1: मैं अपने आप को भाग्यशाली क्यों मानता हूं, ऐसे महान लोगों से मुझे सीखने का मौका मिला। फिर जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो दिन अच्छी तरह याद है, मैं जब कंडक्ट कर रहा था, मेरे म्यूजिक प्रोड्यूसर वहां, मतलब जो अरेंजर थे वो वहां थे, तो एक पीस आया और मुझे नोटिस कर रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने बोला फर्स्ट म्यूजिक ऐसा करते हैं, डंग डंग डंग डंग डंग डंग, मैं खुद ही गा रहा था, तो मैं साजिद को समझा रहा था, डंग डंग डंग डंग डंग, मुझे इंटरलूड बनाने का बड़ा शौक है।
0: तारा
1: तीरा तीरा भी कम से, तो बोला अरे क्या अंतरा उठा है, आके मुझसे गले मिले। और मुझे अच्छी तरह याद है, जब गाना जब खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा।
0: क्या बात है।
1: और जो इस यहां उनका हाथ था, लेफ्ट मेरे हाथ पर, कंधे पर, और मुझे ऐसे पकड़ा।
0: वाह।
1: और उसी शाम को उन्होंने डैडी को फोन किया था, मलिक तेरे पास एक संगीत का नग है।
0: वाह।
1: एंड डैडी की आंखों में आंसू थे कि रफी साहब ने मेरी तारीफ की। ये मैं लम्हा कभी नहीं भूल सकता हूं। और वही रिकॉर्डिंग जब खत्म हुई, इतने महान इंसान थे, अनफॉर्चुनेटली प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था।
0: हाँ।
1: तो मुझे आगे कर दिया कि भाई इनसे कुछ रिक्वेस्ट करो। तो बोले मैंने गाना गा दिया, पैसा तो चाहिए मुझे। बोले रफी साहब वो कह रहे हैं कि ही इज गोइंग थ्रू टफ टाइम्स, पैसा है नहीं। तो मुझे मुड़ के देखते हैं और बोलते हैं अन्नू एक काम कर, पैसा तो मैं लेके ही जाऊंगा। अब मैं डर गया।
0: बिल्कुल।
1: मैं बांद्रा से आया हूं।
0: हाँ हाँ,
1: घर वापस जाना है। प्रोड्यूसर को बोलो मुझे 50 रुपए दे दे, पेट्रोल का पैसा तो दे दे। सिर्फ 50 रुपए लेकर उन्होंने वो गाना गाया था, मोहब्बत रंग लगी जनाब आहिस्ता, इसलिए लोग उनको फरिश्ता बोलते थे।
0: क्या बात है। अब एक मोमेंट आएगा, एक ऐसा गाना आएगा जो मैं आपको बताऊंगा नहीं कि वो कौन सा गाना है, और उसके बाद मोहब्बत रंग लाएगी आएगा
1: जी।
0: लेकिन कमाल ये है कि पहले आता है पिताजी का गाना, रफी साहब की आवाज, हसरत जयपुरी।

सरदार मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज और यहां से आता है अनु मलिक का संगीत मोहम्मद रफी की आवाज। फिल्म का नाम पूनम, साल 1980।

0: क्या कमाल, क्या कमाल जी, कहिए।
1: यही जो आप पीस सुना रहे हैं ना
0: जी,
1: दा दा दा दा दा,
0: इसी की बात हो रही थी।
1: इसी की मैं बात कर रहा था कि जब मैं बना रहा था ना ये पीस,
0: हाँ,
1: उस वक्त रफी साहब फेमस था जो
0: जी जी बिल्कुल
1: स्टूडियो में,
0: हाँ,
1: क्यूबिकल के सामने खड़े थे,
0: हाँ,
1: और मुझे सुन रहे थे बनाते हुए।
0: बताइए।
1: तो इतने खुश हो गए थे वो कि तुझे शौक है इंक्लूड बनाने का, मैं जी बहुत शौक है
0: जी जी जी।
1: तो उसके बाद ही उन्होंने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा।
0: बताइए।
1: और फिर डैडी को फोन किया था। मैं ऐसे इंसान को भूल नहीं सकता,
0: बिल्कुल
1: ऐसे इंसान थे, इतने इनकरेजिंग थे मोहम्मद रफी साहब, इतना प्यार करते थे कि चंद शब्दों में उनके बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल होगा।
0: अब मैं एक और गायिका की तरफ आ रहा हूं, लेकिन यहां भी जो बात है ना वो गाने के सिरे को पकड़कर होगी, और वो गाना है ये।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु जी, बातें रफी साहब से चल के और आशा भोसले तक आ गई। शुरुआती दौर था उमेश मेहरा की फिल्म, और ये जो म्यूजिक है ये पूनम से बिल्कुल अलग है। इसमें पूरा एक पंजाबी फ्लेवर है, सोनी महिवाल, और क्या तो गाना। यहाँ सब लोग उस गाने की मस्ती में डूब गए।
1: तो आपने जो अभी बात कही कि ये बिल्कुल अलग है उस गाने से,
0: हाँ जी,
1: तो इसकी इंस्पिरेशन कि मैंने कसम खाई थी कि मैं वो संगीतकार बनना चाहता हूँ जो हर किस्म के गाने बनाए। हाँ। उसके पीछे थे आर डी बर्मन साहब
0: जी।
1: मैं जब छोटा था मैंने एक गाना सुना था, डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग डांग, ये दम मारो दम, ये सुना था।
0: हाँ,
1: उम्र थी 10 साल।
0: हाँ।
1: वो इंसान बनाता है चिंगारी कोई भड़के, अभी वही इंसान। इतना बड़ा कंट्रास्ट, मैंने बोला कि मैं आगे चलकर ऐसा संगीतकार बनना चाहता हूं कि मैं सिचुएशन में अपने आप को ढाल लूंगा। अगर रोमांटिक गाना है तो मैं वो बनाऊंगा, अगर पंजाब पर बेस्ड है सोनी मेवाल लव स्टोरी पर मैं वैसे गाने बनाऊंगा, अगर जुड़वा है जिसमें मस्ती वाले गाने चाहिए जैसे कि ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है मैं वो करता हूं, तो आर डी बर्मन साहब ओ हसीना जुल्फों वाली भी कर देते, आर डी बर्मन साहब चिंगारी कोई भड़के भी बनाते थे, और मैंने अपने आप को कसम दी कि आई कैन कंपोज ऑन एनी सिचुएशन एनी टाइम एनी वेयर एज लॉन्ग एज माई डायरेक्टर इज विद मी।
0: और ये आपने किया है?
1: एक बार नहीं, हजारों बार, और अभी भी कर रहा हूं।
0: बिल्कुल, मैं ये सोच के बड़ा हैरान हूं।

0: एक पूरा 80s का दौर था जहां बहुत अलग तरह का म्यूजिक बन रहा था, और कमाल की बात यह है कि उस पूरी धारा में भी आप 80s के हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो के लिए ये गाना बनाते हैं। और देश के गली गली, शहर शहर, चौराहे चौराहे पर गूंजता है ये गाना।
1: मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, हे मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला, ओ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला।
0: बच्चन साहब के लिए गाने बनाना कोई छोटा काम नहीं था।
2: बहुत मुश्किल था, लेकिन मेरे साथ एक महान निर्माता निर्देशक साहब थे, मनमोहन देसाई, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि अनु मलिक, आप सोचिए, नसीब, गोली, अमर अकबर, एंथनी जैसे एक आउटस्टैंडिंग म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और एक नए लड़के को चांस देना
0: जी,
2: वो भी अमिताभ बच्चन साहब के साथ,
0: इतनी बड़ी फिल्म।
2: तो ही हैड फुल कॉन्फिडेंस। और मैं बताना चाहता हूँ, संगीत बनता है कॉन्फिडेंस से।
0: हाँ हाँ,
2: संगीत अगर आपका निर्देशक आप पर भरोसा करता है कि दिस मैन कैन डिलीवर, तो हजारों चीजें होती है। और मनमोहन देसाई साहब से जब मैं मिला भी था, तो उन्होंने बहुत से मुखड़े सुने मुझसे, बहुत से मुखड़े, लेकिन मुझे मुखड़े लिखने की भी आदत है। मैं मुखड़े की जो फ्रंट पहली जो चार लाइनें होती है मैं लिख देता हूँ। तो मैं बोला, सर कैरेक्टर का नाम क्या है? बोला, एक सोच रहा हूँ मैं, पिक्चर का नाम सोच रहा हूँ, मर्द। तो मुझे टाइटल बड़ा अट्रैक्टिव लगा, मर्द, बोला वेरी गुड टाइटल। तो मैं बोला, सर एक मुखड़ा दिमाग में आ रहा है, कैच करता है यार, वो टांगा चलाता है। तो बोलता हुआ मुखड़ा, ये मर्द टांगे वाला, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला। और वहीं से वो मेरे गले लग गए। और फिर मैंने कुछ 200, 300, 400, 500 कितनी ट्यून सुनाई उनके दना दन। और एक दिन उनने कहा, चल आज सिटिंग करते हैं, और बच्चन साहब के साथ सिटिंग हुई।
0: हाँ,
2: बच्चन साहब ने रिएक्शन तो कुछ दिया नहीं, वो कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, वो बस चुपके सुनते जा रहे थे। लेकिन आधे घंटे के गाने के बाद, 1.5 घंटा गाया मैंने, उन्होंने बोला, फिर अचानक मनमोहन जी ने बोला उनसे, कैसा लगा? और बाहर आके मुझे बोलते हैं, तू अपनी शर्ट तो नहीं फाड़ेगा, यू आर ऑन, यू आर नाउ साइन फॉर मर्द।
0: क्या बात!
2: तो आई वुड थैंक अमिताभ बच्चन साहब फॉर एक्सेप्टिंग मी अ न्यू बॉय। आई वुड थैंक मनमोहन देसाई साहब, अगर बच्चन साहब ने हाँ नहीं बोला होता, मनमोहन जी ने हाँ नहीं बोला था, अनु मलिक आपके सामने बैठे ये बातें नहीं कर रहा होता।
0: बहुत सही बात है।
2: उमेश मेहरा साहब ने मुझे सोनी मेवाल दी
0: जी,
2: राजीव मेहरा साहब ने मुझे एक जान हम दी
0: जी,
2: FC मेहरा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरी जिंदगी में, जैसे हरमेश बल्होत्रा, उससे पहले सलीम अख्तर साहब,
0: बिल्कुल,
2: ये सब लोग बड़े।
0: एक चीज मुझे याद आ गई, मर्द में कुछ बड़े म्यूजिक, बड़े लिरिसिस्ट थे, जैसे राजेंद्र कृष्ण।
2: बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया। वो थे ज्यादातर, एक्चुअली वो तूफान में थे, अल्लाह रखा तूफान में।
0: हाँ,
2: लेकिन इसमें
0: प्रयागराज जी,
2: प्रयागराज जी थे, के शुक्ला साहब थे, मिलजुल कर मैं जब ट्यून सुना रहा था, सब अपने कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे कि अन्नू की ट्यून इतनी अच्छी है, हम कैची वर्ड लिखेंगे।
0: हाँ,
2: मनमोहन देसाई वॉज अ फैबुलस डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर दुनिया में नहीं आएगा।
0: मतलब, कभी कोई खींचतान हुई किसी ट्यून को लेके, किसी
2: बहुत बहुत बहुत, मैंने तो बैकग्राउंड भी किया था इस फिल्म का। खींचतान इसलिए हुई क्योंकि मेरे अंदर तो ये था ना,
0: हाँ,
2: कि मैं जिस बैनर पे काम कर रहा हूँ वह MKD फिल्म्स है।
0: हाँ,
2: और जिसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, हमारे गुरु। और अगर अच्छा संगीत होता तो अलग बात होती, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने तो लाजवाब संगीत दिया था, लाजवाब। अमर अकबर एंथनी देख लो, नसीब देख लो, कूली देख लो, कोई भी फिल्म उठा लो उनकी।
0: हाँ,
2: मतलब सुपर ड्यूपर हिट गाने। अब मनमोहन देसाई साहब अनु मलिक को ले रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो बहुत
0: हाई हो गया था। यस,
2: अब मैं गाने क्या बनाऊं? तो मैंने बड़ा अतरंगी उल्टे स्टाइल के गाने बनाए।
0: हाँ,
2: अगर आप मर्द के गाने सुनोगे, मैं बोला हट के बनाना पड़ेगा।
0: और वो
2: दिमाग में ये बात थी कि व्हेन यू आर जस्ट 21, 22, 23 इयर्स ओल्ड, सामने मनमोहन देसाई बैठा है, इट इज नॉट इजी।

0: क्योंकि मनमोहन जी के कानों में कल्याण जी आनंद जी के सुर थे,
1: बिल्कुल
0: मनमोहन जी के कानों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सुर थे, मनमोहन जी के कानों में रफी साहब की आवाज थी। अनफॉर्चुनेटली रफी साहब चले गए थे उस वक्त
1: जी,
0: हमारे पास वो सिंगर नहीं था जो, और उन्हें रफी साहब की आवाज से ज्यादा किसी की आवाज पसंद नहीं थी
1: बाकायदा।
0: तो उस वक्त मैं मुखड़े सुनाता था जो मैंने अपने मुखड़े लिखे हुए थे, कैची मुखड़े, लाइक सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करे, मैं तेरी टांगे वाली। मन मुझे उछल गए, बोला तू मेरी, तू गाना नहीं बना रहा है सिर्फ,
1: हाँ।
0: तू मेरे सीन लिख रहा है। दैट वॉज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम मनमोहन देसाई कि मेरा सीन है कि टांगा वाला कौन है,
1: हाँ।
0: अमिताभ बच्चन,
1: हाँ।
0: इश्क करता है इस लड़की से, तो उसका आपने ये नहीं कहता कि तू मेरी जान है या मेरी जानम है,
1: हाँ।
0: तूने कहा सुन रूबिया, लड़की का नाम रूबिया, तुमसे हाँ। प्यार हो गया, डायरेक्ट है,
1: हाँ।
0: प्यार हो गया क्या करें, सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से शादी करें, या छोड़ दिया,
1: हाँ।
0: तो मन में सोचता आगे क्या आएगा,
1: हाँ।
0: सर ये लाइन डालता हूं, मैं तेरा टांगे तू मेरी टांगे वाली, मैं तेरा टांगे वाला, मतलब टांगे वाले की शादी टांगे वाले से हो रही है,
1: हाँ।
0: मैं टांगा चलाता हूं तो मुझे इश्क करती है, एंड वो उछल गए। या फिर वो गाना था, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। उस जमाने में टू गेट अ न्यू इंग्लिश वर्ड अभी ट्रेंड हो गया है,
1: हाँ।
0: उस जमाने में बड़ी नई बात थी,
1: बिल्कुल
0: सर क्या मुझसे शादी करो, मैंने नहीं सर ऐसा मत करेंगे सर, कहने की तो बात नहीं है फिर भी रहा न जाए, विल यू मैरी मी। और लड़की कहती है नो नो सॉरी जी। So every song became a chart buster because of its freshness, of its newness. और बच्चन साहब then carried it to a different level. अमृता जी थी उसके अंदर,
1: yes.
0: उसमें दारा सिंह साहब थे, उसमें क्या क्या गाने पिक्चराइज किए गए,
1: yes.
0: माहौल क्या था वो,
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है बातचीत को फिर से बदलते हैं, और अब मैं एक ऐसे गाने के साथ बात को आगे बढ़ा रहा हूं जिस गाने में एक नशा है, इस गाने में एक तरंग है, फिल्म में अलग गायक की आवाज में आता है, रिकॉर्ड पर अलग, लेकिन इस फिल्म के तमाम गानों के बीच इस गाने ने अपना जादू बनाया है। अस्सी के दशक से नब्बे के दशक में आ गए विविध भारती लाइव, सत्तरवें वर्ष में प्रवेश और प्यार का इजहार।

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न, जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनुजी, बाजीगर फिल्म का ये गाना, मैंने बाकी तमाम गानों को छोड़कर इस गाने की बात की है, कोई तो बात होगी।
1: मैं समझता हूँ इसलिए बात होगी, मैं देखिए ये जो फिल्म का गाना आपने बजाया है
0: जी,
1: पंकज उदास जी की आवाज में बजाया है आपने, और इसको बाद में गाया था विनोद राठौड़ ने।
0: हाँ,
1: सो क्या हुआ, महान रतन जैन, मैं उनको महान रतन जैन बोलता हूं, वीनस के जो मालिक हैं
0: जी जी जी,
1: और महान गणेश जैन, दो भाई, इनकी वीनस टेप्स एंड रिकॉर्ड्स

0: जी
1: सात भाई, उनमें से अनफॉर्चुनेटली एक चले गए, हमारे प्यारे चंपक जी,
0: जी जी
1: भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस वक्त जब मैं 80s में से निकलकर 90s की तरफ जा रहा था, 80s का दौर बदलता जा रहा था, आप समझ गए, नए नए संगीतकार फिर अपना अपने कदम जमा रहे थे
0: जी।
1: उस वक्त धीरे धीरे मेरा काम जाने लगा
0: जी,
1: एंड मेरी जिंदगी में इस गाने से पहले एक इंसान आए जिनके बारे में हम जरूर बात करेंगे, जिनका नाम है महेश भट्ट साहब
0: जी। जी जी,
1: उसके बाद ये पिक्चर आई, मैंने एक एल्बम किया रतन जैन साहब के लिए
0: जी जी,
1: उसमें ये गाना था
0: जी।
1: तो एक दिन रतन जी कहते हैं, यार मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूं,
0: हाँ
1: फिल्म का नाम है बाजीगर,
0: वाह,
1: इसमें एक नया लड़का है शाहरुख खान,
0: हाँ
1: नई हीरोइन है काजोल, और डायरेक्टर भी वर्चुअली न्यू है, एक फिल्म इनकी हिट हो चुकी है, तुम आओगे? मैं बस सर डूबते हो गए तिनका का सहारा वाली बात है, मेरे पास तो काम ही नहीं है, नई नई शादी हो चुकी थी मेरी। उन्होंने कहा काम करते हैं। मैंने जब ये मुखड़ा सुनाया वो इतने खुश हुए। फिर हमने ये गाना विनोद राठौड़ से गवाया था
0: जी।
1: जिस दिन ये गाना रिकॉर्ड हुआ है, महबूब स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तालियां बज रही थी।
0: क्या बात है,
1: क्योंकि 90s की एंट्री,
0: हाँ
1: का ब्यूगल बज चुका था, सिर्फ अनु मलिक का नहीं,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: जितने भी संगीतकार 90s में थे
0: जी,
1: वो अपना नया रंग लेके आ रहे थे
0: जी जी जी,
1: और उनमें से एक था अनु मलिक।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: सभी ने बहुत अच्छा काम किया, जितने भी, अगर 90s का म्यूजिक सुनोगे तो लोग कहते हैं दैट्स द रेनेसांस ऑफ, जैसे 60s का म्यूजिक था,
0: हाँ।
1: 90s के म्यूजिक के बारे में बात करते हैं,
0: हाँ।
1: उसके बाद ऐसा म्यूजिक बना ही नहीं है
0: जी, जी।
1: एवरी कंपोजर, एवरी लिरिसिस्ट, एवरी प्रोड्यूसर, एवरी डायरेक्टर
0: जी,
1: एवरी म्यूजिशियन, एवरीबॉडी, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, संगीतकार हो, म्यूजिशियंस अपने उस जमाने के क्या थे, लाइव म्यूजिक चल रहा था
0: जी जी,
1: एंड उसका नतीजा है 90s का म्यूजिक। जब ये बाजीगर के गाने बने थे तो लोग दीवाने हो गए थे, बोलते कैसेट्स में फ्लाइंग लाइक हॉट केक्स,
0: हाँ।
1: मुझे लोग आके बोलते हैं कैसेट्स बिकते थे, हर दुकान के कैसेट बिक रहे थे, मतलब अगर बगल में चार कैसेट बेचने वाले बाजीगर के हो तो चारों दुकान से बिक रहे थे, ये देखिए एक दुकान में।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो उसका नतीजा ये निकला कि आज टुडे जब ये गाने लोग सुनते हैं तो मुझे मैसेजेस लाके देते हैं, कहते हैं अनु जी ये गाने ऐसे लगता कल रिकॉर्ड किया आपने,
0: हाँ
1: इतनी फ्रेशनेस कैसे है। सो आई वुड से उस वक्त ऐसा एक सर पे एक जुनून सवार था कि कुछ अच्छा करना है।
0: बासीगर में तो आपने वो रैप भी किया था,
1: वो काली काली आंखें में, उसकी भी स्टोरी है, अब गाना बजाए तो बताऊंगा।
0: अच्छा, गाना बजाना पड़ेगा, ठीक है, गाना बिल्कुल बजाएंगे, और बाजीगर का वो गाना भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ अनु जी कि हम इसके बाद वो बात करेंगे बॉर्डर की, लेकिन बाजीगर का गाना अभी आ रहा है।

हम अपने सुनने वालों को बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम विविध भारती के स्टूडियो से फेसबुक पर लाइव देखा जा सकता है। और हाँ,

0: विविध भारती की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग।
1: ये सुनो जी, ये काली काली आंखें,
2: ये जो काली काली आंखें का गाना है, इसमें जो आज इतना ट्रेंडिंग हो गया रैप
1: जी,
2: उस वक्त ये सब नहीं था
1: जी।
2: हुआ यूं कि गाना रिकॉर्ड हो रहा था, मुखड़ा बन चुका था, सेट पर सब थे, अचानक 16 बार का एक फर्स्ट म्यूजिक में टेम्पो बज रहा था, टक टक टक चिक टक टक चिक टक टक टक चिक टक टक टक टक टक टक। बहुत कुछ ट्राई किया, उसमें कुछ हो रहा नहीं था। मैं बोले ये खाली जा रहा है, ये खाली जा रहा है पूरा जगह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो मैंने एक दिमाग में आइडिया आया, मैं चला गया सेट के ऊपर, मैं बोला यार एक काम करते हैं, माइक पर जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, ये खाली जगह को मैं कवर करना है। अभी मुखड़ा खत्म हो चुका है, अंतरा आने वाला है, अंतरा आने से पहले की म्यूजिक पीस है, लेकिन ये 16 बार मैं करूँ तो क्या करूँ, बहुत सोच रहा था। अचानक मुझे ऐसा लगा मैं ये वर्ड डालता हूँ
1: जी,
2: मैं मिला तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली मैं मिला, दुनिया चले तो जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे राम पाम पाम बारा बा पाम। अब पूरा ब्रास आता है वहां से,
1: हाँ।
2: तो पूरा मैंने टाइमिंग कवर किया उसके अंदर,
1: हाँ।
2: एंड वहां अब्बास मस्तान, रतन जैन ऑल जंप्ड अप, ये बहुत अलग चीज की तूने, और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, उन्होंने कहा मुझे लगता है बहुत अलग चीज हो गया, मैं मिला, और जो तेरा अंदाज है ना तू मिली, तो वहां देव कोहली साहब भी थे लिरिक राइटर। मैं बोला देव जी एक पहला हाफ तो मैंने लिख लिया है, दूसरा हाफ को लिखे देते, सेकंड अंतर में भी डालते हैं, मैं तो कर झटपट, मैं तो कर खटपट, मेरे आचा तो निकट। वो देव जी ने वही लिख दिया, वो भी कमाल के इंसान थे देव कोहली साहब,
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: महान राइटर थे वो,
1: महान राइटर।
2: तो वो उन्होंने, मैंने बोला सर ये जो मैंने तैतू लिखा है फर्स्ट, मैं मिला तुम्हें, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? बोला अनु जी गो हैड एंड रिकॉर्ड इट, बहुत अच्छा लग रहा है। देव जी की परमिशन मिली मुझे और मैंने कर दिया, बट जो नेक्स्ट उन्होंने लिखा वो भी मैंने बोल दिया, ना तू कर खटपट, तू आजा तो निकट, अरे प्यार झटपट, न तो जुल्फ झटक, न तू पैर पटक, ये सब किया था मैंने। आज वो गाना लोग बोलते हैं वॉज अ ट्रेंड सेटिंग सॉन्ग, वन फॉर इट्स साउंड,
1: बिल्कुल
2: द म्यूजिक प्रोडक्शन वॉज वेरी न्यू,
1: यस यस,
2: डेढ़ महीना लगा था उस गाने को बनाने के लिए, डेढ़ महीना टू गेट द म्यूजिक राइट, पाम पाम पारा पाम पाम पाम। तो करते करते बहुत टाइम लगा, आई वांटेड टू सेट अ ट्रेंड, और आज लगता है लोग मुझे बोलते हैं कि यार इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, एआई आ चुका है, लेकिन लगता है ये गाना कल रिकॉर्ड हुआ है। मैं 3 बार ये लव्स यूज कर चुका हूँ, बिकॉज आई बिलीव अ सॉन्ग शुड साउंड एज फ्रेश एज इट वॉज रिकॉर्डेड यस्टरडे इवन टुडे।
1: बाजीगर के टाइटल सॉन्ग में आपने वायलिंस बड़े प्यारे इस्तेमाल किए हैं, वो क्या था मामला?
2: कहानियां बहुत है इसके, उसके बारे में लोग बोलते हैं अनु जी आप ये बताइए कि ये गाना बना कैसे। बाजीगर इज अ वेरी टफ वर्ड, बाजीगर, अगर इस पर आपको बोला जाए गाना बनाओ, हाउ डू यू मेक अ सॉन्ग?
1: जी जी।
2: तो मेरे दिमाग में एक दिन मैंने रतन जी को फोन किया, सर एक मुखड़ा है दिमाग में, बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर।

0: ¿Tú me la suena? ¿Tú me la decís una? Bazzy girl, oh, bazzy girl, tu hebra ya tu girl. Ese sonaron. Hola. ¿Qué hacemos con la turuntatura? Pruebo que ya. Let's record the song.
1: Sí.
0: Mira, abhi ye jo line aati hai, ye sunne wale bas set par hum pahunche. Singers are on the mic.
1: हाँ
0: हाँ ना तो सिंगर्स आर ऑन द माइक अब्बास बस्तान खड़े हुए पूरा लाइव ऑर्केस्ट्रा 60 वॉयलेंस वियोला चैलोस एवरी वन रिदम फॉर्मेशंस एवरीथिंग इज रेडी. अब सब बोल रहे कि अनु मलिक इज रिकॉर्डिंग फॉर अ न्यू हीरो अ न्यू हीरोइन. सबके फैमिलीज आए हुए हैं
1: जी,
0: सब सुन रहे हैं और मैं सेट पर हूं. अचानक जब गाना रिकॉर्ड करो, जो आपने पूछा कि वॉयलेंस आए कैसे,
1: हाँ
0: ये मैं बोले यार 1, 2, 3, 4 गाना शुरू होता है. बाजीगर ओ बाजीगर तू है बड़ा जादूगर तरन टन टन टडन. सीधा फर्स्ट म्यूजिक आ रहा था टडम पम पम बम बम तरम पम तम ददम ददम दरर. मैं बोला कुछ कमी है यार गाने में, दम नहीं है. लोग हैरान हो गए, बोला सेट पर हो आप, गाना हमने अप्रूव कर लिया है. अब्बास बस्तान कह रहे हैं सर ये गाना उठ रहा नहीं है,
1: कुछ करना पड़ेगा.
0: मैंने बोला एक इंट्रोडक्शन बनाते हैं.
1: हाँ.
0: वही सेट पर इंट्रोडक्शन बनाया तो मैं चाह रहा था ब्रास शुड बी कमिंग डाउन ये सुन रहा है, सब वॉल्यूम चल रहे हैं. अभी भी कुछ कमी है, मुखड़ा क्यों नहीं उठ रहा है. तो वहां मेरे एक सोलोइस्ट थे हमारे, उनको मैंने बोला यार एक काम करते हैं हम लोग स्ट्रिंग्स लेके आएंगे या रोक देंगे.
1: ओ वाह भाई.
0: और वहीं मेरा मुखड़ा बजाओ.
1: ओके.
0: मेरा ही मुखड़ा बजाओ. तारी रारी रारी रम ता. तो ऑलवेज लुकिंग एट मी ये क्यों किया. फिर बोला इसके बाद मुखड़ा नहीं उठ रहा है.
1: हाँ
0: हाँ. सडनली आई गॉट एन आइडिया. मैंने गाना यहां से शुरू करते हैं, वहीं लिखा गया है.
1: अच्छा.
0: मेरा दिल था अकेला तूने खेल ऐसा खेला तेरी याद में जागू रात भर डाराडाम. ब्रेक. बाजीगर ओ बाजीगर. तो गाने किस तरह बनते हैं, गाने का चेहरा बदल जाता है सेट के ऊपर.
1: क्या बात.
0: एंड आई बिलीव इन इंस्टिंक्टिव क्रिएशन. उस वक्त अब्बास मस्तान रतन जैन मेरे पास आए, बोला तुमने चेहरा बदल दिया गाने का, मुखड़ा उड़ गया. एंड बाजीगर वॉज बॉर्न विद दैट सोलो वॉयलेंट पीस एंड द सिंगिंग एंड द राइटिंग. क्या मतलब उसका अंतरा भी क्या बना था. धक धक धड़कता है ये दिल बोलो ना क्या कह रहा है. मेलोडी थी. तो सिंगर सैंग विद अ लॉट ऑफ लव. सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड विद अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड द रिजल्ट कि आज भी गाना बजता है.
1: हाँ हाँ हाँ.
0: और पिक्चराई भी शाहरुख पर और काजल पर इतना ब्यूटीफुल किया था सरोज जी ने कि लोग याद करते हैं उस पिक्चराइजेशन. और क्या शाहरुख लगा और काजल लगी उस गाने के अंदर, लाजवाब पिक्चराइजेशन.
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. आपने कहा और मुझे लगता है कि दिस इज द राइट प्लेस टू प्ले दिस इंट्रोडक्शन म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी आपने सुनाई है. विविध भारती पर फेसबुक लाइव भी है ये कार्यक्रम. और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसमें से कुछ चुनिंदा सवाल हम अनु मलिक से पूछेंगे. यह है वो म्यूजिक जिसके बनने की कहानी अभी सुनाई अनु मलिक ने.

लीजिए, अब पेश है हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 1:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद प्रादेशिक समाचार पंजाबी में प्रसारित किए जाएंगे 1:10 पर आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से। 1:15 पर फिल्म संगीत कार्यक्रम सुनवाएंगे। आज 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविध भारती की सालगिरह का जश्न। चार बजे पिटारा में आज बॉम्बे टॉकीज, इसमें गायिका पूर्णिमा से बातचीत का तीसरा भाग सुनिएगा। पांच बजकर 20 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, इसमें लेखक अभिनेता एवं निर्देशक शाहबाज बाजवा से रमेश कपूर की बातचीत सुनवाई जाएगी। कुछ पंजाबी गीत सुनिएगा शाम 6:30 पर। विशेष जयमाला ये कार्यक्रम प्रसारित करेंगे शाम 7:00। आज का ये कार्यक्रम संगीतकार SD बर्मन द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। हवा महल ये प्रोग्राम होगा रात 8:00। इसमें सुनो कहानी में सुनिएगा कहानी कंचन का पहला भाग। कहानीकार हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:30 पर। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार JP दत्ता पर।

एक बार फिर से आपको बता दें, रात 8 बजे होगा कार्यक्रम हवा महल। इसमें सुनो कहानी में सुनिएगा कहानी कंचन का पहला भाग।

ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 1:05 होने को हैं, अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। उसके बाद प्रादेशिक समाचार पंजाबी में प्रसारित किए जाएंगे 1:10 पर। ये हमारे आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को भेंट किए गए उपहारों की 8वीं ई नीलामी की अवधि इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। इस बार की ई नीलामी में दिल्ली की विविधता और विरासत को दर्शाने वाले 30 अलग अलग स्मृति चिन्ह शामिल किए गए हैं। इनमें 9 फोटो फ्रेम, 9 स्मृति चिन्ह तथा 6 मूर्तियां, प्रतिमाएं और बुत शामिल हैं। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो के 2 मॉडल, खेल से जुड़ी एक स्मृति वस्तु, धार्मिक वस्तुएं, एक पेंटिंग, कलाकृतियां और हस्तशिल्प से जुड़े सामान की नीलामी का हिस्सा भी है। नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे परियोजना में दी जाएगी। पूरी जानकारी आधिकारिक पोर्टल pmmementos.gov.in से प्राप्त की जा सकती है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज पलवल खंड में जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग द्वारा वीर गाथा अभियान एवं सैनिक सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कल्याण व्यवस्थापक इंद्रजीत ने बताया कि इन कार्यक्रमों के दौरान देश की रक्षा में अपना योगदान देने वाले वीर सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की गौरव गाथाओं को याद किया गया।
1: आज सेवा संकल्प के कार्यक्रम के तहत सैनिक सम्मान व वीर गाथा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें वीर नारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है और भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मान दिया गया है। इससे समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो शहीद सैनिक हैं, उनको कभी भुलाया ना जाए, उनको समय समय पर सम्मान दिया जाए और युवा फौज की नौकरी के लिए उत्साहित हों।
0: एशियाई खेलों में भारत की कुमकुम महोद ने रिकर्व आर्चरी के व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में उन्होंने साउथ कोरिया की योजनाओ को 5-5 से मुकाबला टाई रहने के बाद शूट ऑफ में 6-5 से मात दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एशियाई खेलों में रिकर्व आर्चरी में स्वर्ण पदक जीतने पर कुमकुम महोद को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में कहा कि वह इस खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। साथ ही उन्होंने लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक के लिए भारत का स्थान सुनिश्चित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेलों में महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली कुमकुम अनिल मोहोड़ को बधाई दी है। वे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय हैं। सोशल मीडिया संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि उनका प्रदर्शन और उपलब्धियां अनगिनत युवाओं, विशेष रूप से लड़कियों को अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल देर शाम गांव कलाल माजरा पहुंचकर पिंडारसी हादसे में जान गंवाने वाले निवासियों के परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि इस कठिन समय में हरियाणा सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे में मृत प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के खातों में 5-5 लाख रूपये की सहायता राशि भेज दी गई है। घायलों के उपचार के लिए भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री लाडवा के गांव छपरा निवासी स्वर्गीय जसवंत सिंह के निवास पर पहुंचे और उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल नारायणगढ़ अनाज मंडी का दौरा कर धान खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में किसानों के लिए किए गए प्रबंधों, धान खरीद सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा खरीद प्रक्रिया सुचारू एवं पारदर्शी ढंग से संचालित रहे। कृषि मंत्री ने किसानों एवं आढ़तियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है। फरीदाबाद में कल मिशन जागृति

की 9वीं विशाल चित्रकला प्रतियोगिता में करीब 8500 बच्चों ने भाग लेकर नशा मुक्त हरियाणा का भी संदेश दिया। उन्होंने चित्रों के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्त समाज की आवश्यकता को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मिशन जागृति स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी मंच की बी श्रेणी की रैंकिंग में हरियाणा ने 60.72 अंकों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी जगजीवन सिंह तों प्रादेशिक खबरां सुणो। इनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी चंडीगढ़ ने कल चंडीगढ़ मोहाली अते पंचकूला च हरियाणा सरकार दे फंडां दे 645 करोड़ रुपए दे कथित गबन नाल संबंधित मनी लॉन्डरिंग जांच दे हिस्से वजों 14 थावां दी तलाशी लई है। कथित विचोले गौरव कांसल समेत कई सुनियारियां अते उन्हां दे सहयोगियां नाल जुड़ियां थावां दी तलाशी ली गई है। एजेंसी ने 24.30 करोड़ रुपए नकद जब्त किए ने अते बैंक खाते विच लगभग 22 करोड़ रुपए जब्त किए, दस्तावेज अते डिजिटल सबूत की बरामद किए गए ने। यह जांच फरवरी 2026 हरियाणा पुलिस वालों सूबे के विकास अते पंचायत विभाग के बैंक खात्यां विच अंतर नूं लैके दर्ज किए गए मनी लॉन्डरिंग के एक मामले तो बाद शुरू की गई जांच का हिस्सा है। बैंक खाते IDFC फर्स्ट बैंक अते AU स्माल फाइनैंस बैंक नाल रखे गए सन। इस धोखाधड़ी विच कई IAS अधिकारी अते होर सरकारी कर्मचारी भी कथित तौर ते शामिल ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार नूं झोने की आमद शुरू होने तो पहला सूबे विचों अनाज का स्टॉक खाली करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सुचजी खरीद नूं यकीनी बनाउण अते मंडियां विच किसानां नूं किसी भी तरह की परेशानी तो बचाउण लई भंडारण लई ढुकवीं जगह यकीनी बनाउणी लाजमी है। केंद्रीय खपतकार मामले खुराक अते जनतक वंड मंत्री प्रहलाद जोशी नूं लिखे पत्र विच मुख्यमंत्री मान ने 10 अक्तूबर तक 6 लाख टन चौल अते अक्तूबर महीने दौरान 15 लाख टन कणक की लिफ्टिंग की मांग की है। उन्होंने ध्यान दवाया कि लगभग 40 लाख टन कणक का स्टॉक राइस मिलों अते मंडियां दे फड़ां यार्ड विच थां घेरी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बीते दिन अमृतसर, तरन तारण अते फाजिलका सरहदी जिलों समेत गुरदासपुर अते कपूरथला दीआं जेलां अते OOAT क्लीनिक सेंटरां विच डॉक्टरी इलाज के नाल नाल नशेड़ियां दी मनोसमाजिक देखभाल नूं होर मजबूत करन लई एक पायलट प्रोजैक्ट शुरू की अधिस्थानक प्रबंध दित्ती है। यह फैसला मुख्यमंत्री अते आर्ट आफ लिविंग फाउंडेशन दे वफद विचकार हुई मीटिंग दौरान लिया गया। मुख्यमंत्री मान ने कहा इस पहलकदमी तहत आर्ट आफ लिविंग ते आधार ते एक अध्यात्मिक रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसका मुख्य उद्देश्य नशे के इलाज अते लंबे समय के मनोसमाजिक मुड़ वसेबे विचकार पाड़े नूं पूरा करना है। साबका भारतीय हाकी कप्तान अते ओलंपियन प्रगट सिंह नूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नवा प्रधान नियुक्त किया गया है। वह लुधियाणा के संसद मैंबर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की थां लैणगे जिन्होंने शुक्रवार को अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। यह नियुक्ति 2027 दीआं विधानसभा चोणां तो पहला की गई है। पद्म श्री अते अर्जुन पुरस्कार जेतू प्रगट सिंह जलंधर छावनी तो 3 वार विधायक रह चुके ने अते पंजाब दे साबका सिक्ख्या अते खेड मंत्री ने। पंजाब दे खुराक सिविल सप्लाई अते खपतकार मामले मंत्री लाल चंद कटारू चक ने जापान दे आईची नागोया विखे हो रही एशियन खेडां 2026 विच सोन तगमा जित के इतिहास रचण ते भारतीय महिला हाकी टीम नूं वधाई दित्ती है। भारतीय महिला टीम ने दूजी वार एशियन खेडां विच सोन तगमा जितया है। अपने वधाई संदेश विच मंत्री लाल चंद कटारू चक ने कहा कि इस इतिहासक प्राप्ति ते पूरे देश नूं माण है। उन्होंने कहा कि यह सोन तगमा टीम की सख्त मेहनत, अनुशासन, दृढ़ इरादे अते टीम भावना का नतीजा है। केंद्र सरकार के ई रक्तकोश पोर्टल से दर्ज किए साल 2025 के अंकड़े मुताबक पंजाब ने प्रति 10 लाख आबादी पिछे स्वै इच्छा नाल खूनदान करन विच देश भर विचों 3 स्थान हासिल किया है। सूबे का मान वधाया गया है। पंजाब के लोगों स्वै इच्छित खूनदानियां गैर सरकारी संस्थावां अते सेहत संभाल पेशेवरां नूं वधाई दिंदिया पंजाब दे सेहत अते परिवार भलाई अते मैडिकल सिक्ख्या अते खोज मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने इस नेक मनुखतावादी जज्बे नूं पंजाबियां दी निरस्वार्थ भावना अते हमदर्दी दा प्रतीक दस्या। नवी दिल्ली दे लेडी हार्डिंग

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म चालबाज से। आवाजें मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।

0: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ। जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।
1: यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
0: दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो।
2: उनसे मैंने चीज सीखी सीखी रहा हूं, नम्रता, मोहब्बत, अपने काम को कितना प्यार करना चाहिए, कितनी शिद्दत से, लगन से काम करना चाहिए। जितने भी गाने, और मुझे बहुत प्यार करते वो, आज भी मेरा फोन उठा लेते हैं।
3: हाँ।
2: और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गुलजार साहब डायरेक्टली मुझसे बात करते हैं।
3: कितना बड़ा चैलेंज था कि उनके अल्फाज आपके पास आ रहे हैं और ट्यून बनाना है,
2: क्योंकि मेरे दिमाग में तो अचानक मदन मोहन जी याद आ गए,
3: बाबा
2: पंचमदा याद आ गए, और मैंने बोला कि ऐसे लोगों के साथ काम करने वाला इंसान सामने बैठा हुआ है, खुद एक कमाल के डायरेक्टर हैं, स्टोरी स्क्रीन पे उनके आंधी फिल्म की आप फिल्म देखो, म्यूजिक सुनो, तब मुझे पता लगा कि मैं जिसके सामने बैठा हूँ मुझे जान तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मगर मैं बार बार कहता हूँ, उनके बोलों में इतनी ताकत और शिद्दत है।
3: हाँ।
2: कि बोलों में तर्ज छुपी हुई होती है।
3: क्या
2: उन्होंने लिखा कि तू हवा है, फिजा है, जमीन की नहीं तो घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं। अचानक मेरी ट्यून को सुनते सुनते, तू हवा है, फिजा है, जमीन की नहीं तू घटा है तो फिर क्यों बरसती नहीं, उड़ती रहती है तू पंछियों की तरह, आ मेरे आशियाने में आ, टूररूरा
3: बाबा।
2: और गाने बनते गए, रिकॉर्ड होते गए, और आज भी अक्स फिलहाल फिजा जाने मन अशोका जब बजते हैं गाने तो लोग उनको अपने सीने से लगाते हैं। ये जो गाना भी आपने बजाया, चित्रा जी याद आ गई, क्या गाया,
3: बिल्कुल
2: रात का नशा अभी आंख से गया नहीं तू, जो हमने फ्लूट्स यूज किए इसके अंदर।
3: हाँ।
2: तो माय गॉड, आज भी, और क्या गाया, क्या क्या जान लगाई
3: अनु जी ने। अब जो मैं बजाने वाला हूं ना, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, ये सारे लोग झूम उठेंगे,
2: डडांग
3: डडांग।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। अनु जी, एकदम अलग दौर के गानों की बात मैं करने
1: जी सर,
0: ये जो कमाल है ये क्या था? एक तरफ अगर तुम मिल जाओ, दूसरी तरफ भी ये होंठ तेरे।
1: वक्त के साथ इंसान को बदलना पड़ता है
0: जी,
1: वक्त के साथ इंसान को तर्जे बनानी पड़ती है। नए निर्माता आते हैं, नए निर्देशक आते हैं, अपने अपने इमोशंस लेके आते हैं।
0: हाँ।
1: नए हीरोज आते हैं, एक्टर्स आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं।
0: हाँ।
1: वो अपने एक अंदाज लेके आती हैं। जनरल पब्लिक जो है एक चेंज मांगती है। हमारे अंदर एक कहावत है ना, आपको परिवर्तन ही संसार का नियम है
0: जी।
1: और अगर आप अपने आप को उन्हीं यादों में रखोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: आपको हर वक्त बदलना पड़ता है, हर वक्त नई चीज करनी पड़ती है, हर वक्त ऐसे गाने पब्लिक के लिए बनाने पड़ते हैं जो उनको, देखो हर हिंदुस्तानी के अंदर एक चीज मैंने नोटिस की है, बड़ा मेलोडिक होता है। वो गाना गा सके या ना गा सके लेकिन वो गाना समझता बहुत है।
0: बिल्कुल,
1: वो गुनगुना लेता है उसके अंदर। अगर आप ऐसा गाना बना दो जो उनके दिल की बात है तो वो गाने को सीने से लगा लेंगे।
0: एक चीज जो मैंने देखी है कि आपकी पूरी संगीत की यात्रा में जहां मौका मिलता है वहां मेलेडी का दामन पकड़
1: वही वही बिल्कुल गुनगुनाने लायक वाले गाने नहीं होंगे तो गाना में दम ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, फिर बार बार कहूंगा, हर हिंदुस्तानी के अंदर संगीत कूट कूट के भरा हुआ है।
0: yes.
1: किसी भी प्रांत में चले जाओ, महाराष्ट्र में देख लो।
0: हाँ।
1: गुजरात में देखो।
0: हाँ।
1: लोकगीत जो है,
0: बिल्कुल
1: गुजरात में भी क्या टैलेंट है।
0: yes.
1: आप चले जाइए साउथ में।
0: हाँ।
1: आप चले जाइए पंजाब में, आप चले जाइए राजस्थान में, आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, आप कहीं भी चले जाइए, बंगाल चले जाइए, आपने कभी नोटिस किया है कि ऐसे ऐसे कलाकार हैं इस देश में कि जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है। मैं समझता हूं कि लाजवाब सिंगर्स, लाजवाब कंपोजर्स, लाजवाब म्यूजिशियंस, लाजवाब टैलेंट है हमारे देश में। हिंदुस्तान एक ऐसा महान देश है जहां इतना टैलेंट खूट खूट के भरा है, गली गली में है। उनमें से मुझे चुनकर सरस्वती माँ ने अगर अनु मलिक बनाया है तो मैं उनका जितना शुक्र करूंगा कम है।
0: बिल्कुल,
1: मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं सरदार मलिक साहब का बेटा हूं।
0: यस।
1: कान में 2 साल की उम्र से अगर आप सुरी सुर सुन रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
0: लेकिन अनु जी, एक गाना ऐसा जो 7 समंदर पार तक भी गया था, जरा वो गाना बजा देते हैं, बहुत सारी लड़कियां भी इंतजार कर रही हैं।

0: ये सनू जी चाइना गेट बहुत ही अलग तरह की
1: फिल्म। ये गाना एक ही गाना था चाइना गेट में, एक ही गाना चाहिए था। इट वाज अ मेल ओरिएंटेड फिल्म।
0: हाँ,
1: और बड़ा चैलेंज था। राजकुमार संतोषी साहब ने कहा कि यार कोई ऐसा गाना बना दो,
0: हाँ,
1: उनके फाइनेंशियल भरत भाई भी आए थे,
0: जी जी,
1: कि बड़ा एक लोकप्रिय गाना बन जाए।
0: जी
1: तो मैंने ये सोचा कि छम छम ये बना भी कैसे, मतलब छम छम छम छम सब बोलते हैं।
0: हाँ,
1: चूड़िया खनकी, खनखाने वाले आ गए, छम छम बाजरे पाए लिए। लेकिन मैं बोला राजी, मेरे दिमाग में मुखड़ा आ रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ,
1: छम को छम्मा कर, छम्मा छम्मा। लेकिन जब ट्यून बनी ना, तो ट्यून सुन के वो गदगद हो गए।
0: हाँ,
1: दा, दा, दा, दा, और समीर जी ने फिर उस गाने को जो लिखा है,
0: जी जी,
1: समीर अंजान साहब
0: बिल्कुल,
1: और बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है, तो गाना

0: फिर जब बन गया और रिकॉर्ड हुआ, फिर जो पिक्चराइज हुआ, तो मेरा गाना ये, मैंने आपको पता, बड़ा शौक है, आपने समंदर पार बोला, मैडम एक्चुअली बड़ा इसमें मेरा ये अजीब बिटर स्वीट मेमोरी है,
1: बिटर स्वीट,
0: हाँ स्वीट मेमोरी ये कि गाना इतना लोकप्रिय हुआ
1: बाद में हॉलीवुड की फिल्म में।
0: हॉलीवुड में जब गया, वहाँ जब मैं एलए में था, सैन फ्रांसिस्को में, तो मैं एक थिएटर में जाके पिक्चर देखता हूँ, तो देखता हूँ कि मेरा गाना बज रहा है, छम्मा छम्मा बाजे रे तेरी बाजे रे, निकोल किडमैन पर, वहाँ सबका सिंगर का नाम दिया, लिरिक राइटर का नाम दिया, मेरा ही नाम नहीं है।
1: अरे अरे अरे,
0: और मुझे बड़ा रंज हुआ ये, क्योंकि जब हमने इतना मेहनत की मुखड़े पर, अंतरे पर, ट्यून पर,
1: हाँ।
0: कोई बात नहीं, लेकिन हमें हिंदुस्तानियों का प्यार मिल गया, वही काफ़ी हमारे लिए।
1: बिल्कुल,
0: मैं बाहर नहीं देखता हूँ, हमारा हिंदुस्तान इतना महान देश है कि यह एक हर एक हिंदुस्तानी आपको सीने से लगा लेता है, उससे बड़ा, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
1: यस, और अनुजी, अब एक ऐसी फिल्म जिसमें इतनी स्वीटनेस थी इन गानों में, और एक नई गायिका को लेकर आया।

0: अनु जी, जोश फिल्म की बातें हो रही हैं, मंसूर खान की फिल्म, और संजीवनी को आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, और
1: ये फिल्म थी करीब
0: जी, हाँ सॉरी करीब, करीब,
1: हाँ ये जोश की नहीं, ये फिल्म थी करीब, विधु विनोद चोपड़ा साहब की फिल्म थी।
0: हाँ,
1: और वीर चोपड़ा जी जो अभी नहीं रहे याद आते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: तो उन्होंने कहा कि हमारी नई हीरोइन है और एक नई आवाज़ चाहिए फीमेल के लिए, और बहुत ऑडिशनिंग हुई, और संजीवनी जी से मिलाया इन्होंने मुझे, इनकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लगी, बहुत इमोटिव आवाज़ है, बहुत शिद्दत से गाने वाली इंसान है, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने भी गाने हैं ये आज इतने चलते हैं गाने अभी भी, कि अगर मैं शो पर परफॉर्म करूं तो लोग चाहते हैं कि ये गाने सुनाए जाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बाकायदा असल में ये हुआ कि ये दोनों करीब और जोश इसलिए मिक्स हो गई कि मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं जोश और अकेले हम अकेले तुम की भी बातें करूं, और अकेले हम अकेले तुम में
1: बहुत जरूरी है। मैं तो कहता हूँ फिर तेरी कहानी याद आई, जोश और अकेले अकेले तुम की बात कीजिए, मंसूर खान साहब याद आते हैं मुझे फिल्म जोश के, उनकी पहली फिल्म मैंने की थी अकेले हम अकेले तुम, और उसके गाने बट यू लव मी डैडी, तू मेरा दिल तू मेरी जान, ओ आई लव यू डैडी, या फिर राजा को रानी से प्यार हो गया, या फिर दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, हम दिल को कभी, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं, ये गाने सब आज इतने लोकप्रिय हैं। और मंसूर खान ने जो काम निकाला, नासिर साहब के बेटे हैं, सुरीले इंसान हैं, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मजरू अंकल ने भी जो काम किया है उसमें, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने, जिनका आपने नाम अभी तक जिक्र नहीं किया, लेकिन अकेले हम अकेले तुम में जो मजरू साहब ने काम किया मेरे साथ, ओए हो क्या बात है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये गाना सुनते हैं।

0: एक तरफ मजरू साहब का ये गाना और दूसरी तरफ एक ऐसा गाना जो बहुत बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। फिल्म का नाम है डुप्लीकेट।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अन्नू मलिक के संग। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अनू जी के संग हो रहा है और दो गानों की बातें करेंगे और उसके बाद हम साइन ऑफ करेंगे। ये गाना जिसके गाने के बनने की कहानी चाहिए हमको, जिस तरह के तबले आते हैं हिंदुस्तानी फिल्म म्यूजिक के लिए ये नया था। बताइए अनु जी,
1: ये आपने कमाल कमाल के सवाल किए हैं और मेरे जितने भी गाने आपने बजाए हैं उसकी कहानियां सुनी हैं आपने
0: जी,
1: इसका बड़ा कमाल काम है। ये पिक्चर बन रही थी फराह खान की पहली फिल्म
0: जी,
1: और फराह खान कम्स आउट विद एन आइडिया कि यार अनु इस फिल्म में
0: हाँ
1: कवाली करते हैं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, कवाली बनाना इतना आसान नहीं है, और कवाल को मैं जितने भी कवाल से हैं हिंदुस्तान में उनको मैं प्रणाम करता हूँ कि कवाली बनाना बहुत मुश्किल काम होता है
0: जी।
1: तो उससे बोला नहीं मुझे कवाली चाहिए
0: जी।
1: तो मैं बोला अगर कवाली करेंगे तो मेरे स्टाइल में करेंगे।
0: हाँ।
1: तो जावेद साहब सामने बैठे हुए थे
0: जी,
1: बोला व्हाट इज योर स्टाइल, व्हाट डू यू मीन कवाली योर स्टाइल।
0: हाँ।
1: अरे सर लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्सअप।
0: अरे बाप रे
1: विकेड, मैंने ऐसे ही बोला, जावेद साहब भड़क गए, उड़ गए वो। बोला मैं यहां से जा रहा हूँ, ये कवाली नहीं हुई।
0: हाँ।
1: तो फराह खान पकड़ के ले गए।
0: हाँ।
1: तो मैंने एक पीस सुनाया उनको।
0: हाँ।
1: डारे डांडे डारे डांडे डारे डांडे डारे डांडे डांडे डांडे डांडे डांडे डांडे, इतना सुनाया। तो जावेद साहब बोलते हैं ये तो म्यूजिक पीस है ना। मैंने सर नहीं सर, फरा बोलती इस पर भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा बता, बड़ी छोटी जगह स्टकाटो है ये।
0: हाँ।
1: लगाटो भी नहीं, लगाटो दारी रा रा रारी रा, ऐसा नहीं है, तारी नांदी दारी नांदी दारी नांदी दान। तो इतने छोटी जगहों पर उन्होंने जावेद साहब ने जो वर्ड लिखे, देखो बेहारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: एंड वहां पर वो लिखा है तुमसे मिलकर मैंने ट्यूसडे दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा दा, तो उन्होंने लिखा तुमसे मिलके दिल का है जो हाँ, सामने लिखा उन्होंने। अब गाने की जब रिकॉर्डिंग आई तो मैं चाहता था, उस जमाने में बड़े बड़े कव्वाल थे उनके साथ मैं काम करना चाह रहा था
0: जी।
1: नई डायरेक्टर, बजट का प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुश्किल होगा कव्वाल्स को लेके आना। तो कुछ मैंने अपने साजिंदे को बोला कि उन्होंने बोला कि यार माही में कोई है साबरी ब्रदर्स बोलते हैं बहुत गुनी है, तो मैं बोला ये जगह है, देखो प्यारे ये नजारे ये दीवाने ये परवाने। वो आए, उन्होंने बहुत मेहनत की और आकर उन्होंने ये गाना गाया। लेकिन इसके पीछे जो कहानी है कि रिदम क्या होगी।
0: हाँ ये रिदम बिल्कुल,
1: तो रिदम कैसे होगी, तो मैं बोला कव्वाली के अंदर एक ढोलक तबले आते ना टिपिकल ता ता ता ता ता, ये होता है। तबले बुलाते हैं।

0: तबले मतलब 20 तबले,
1: 20 तबले,
0: हाँ मगर सिर्फ उनकी चाटियां बजाएंगे, बयां नहीं बजाएंगे।
1: ओके
0: मैं तो बेस गिटार तनांग चिक दुम तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग तम कचिक दिंग तनांग चिक दिंग। अब ये साउंड जब बजा है, रिकॉर्ड हुआ है, तो तारानंद धारानंद धारानंद धारानंद धाम बाम बाम बाम बाम बाम बाम र दनांग कचिक दिंग तम कचिक दिंग तना। और ये भाई साहब हमारे इतना गुनी इंसान रंजीत जी, उन्होंने बोला अनु जी आपने ये बात जो मुझे बोली है हाँ। इस पर छोड़ दीजिए, मैं लगता हूँ इसके ऊपर
1: जी।
0: और फिर भाई साहब लगे उस पर
1: जी,
0: और हम बैठे हैं, रात से सुबह हो गई
1: जी।
0: ये आइडिया उनको बजाते बजाते उसकी जो साउंड है ना, उसके जो चाटी का साउंड है, उसको मुख ट्यून के सुर में लाना था। कौन से
1: हाँ।
0: कौन सा जो मुखड़ा है,
1: बिल्कुल
0: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल गया। अब ये इसी सुर में द तुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दुरी दारी रारी रा रा राम ये तनांग चिक दिंग ता कचिक दिंग तनांग। तो बेस गिटार लेके, साउंड लाके, स्ट्रिंग्स डाल के, अचानक फिर जो गाना बना, फिर वहां साबरी ब्रदर्स, वहां सोनू जी, वो सब मिलकर जो फिर वो जो फरा नाची है,
1: क्या बात है।
0: हाँ उससे बोले ये क्या गाना मिल गया। और गाना उसके बाद तो कव्वाली का ट्रेंड शुरू हो गया था।
1: वाह
0: तो बहुत मेहनत की मैंने इस गाने पर। आई विल टेल यू समथिंग, उसके अंतरे बनाते बनाते जावेद साहब ने कमाल लिखा, पिक्चराइज मेरे ऊपर हुआ था, और सब पर जो पिक्चराइज किया फरहान ने, इट बिकेम अ मैजिकल सॉन्ग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसका ये ओपनिंग पीस सुनते हैं और उसके बाद एक बहुत ही नशीले गाने की बात।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस, आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

की सालगिरह का जश्न जाने माने संगीतकार अनु मलिक के संग। और अब इस गाने की बात, जिसके बिना ये गाना अधूरा, ये कार्यक्रम अधूरा। ये गाना ये दिखाता है कि अनु मलिक खुद को रीडिस्कवर करते रहते हैं, बदलते वक्त के साथ खुद को साबित करते रहते हैं। 70 के दशक के आखिर से शुरू हुआ ये सफर, 80 के दशक पर परवान चढ़ता है, 90 के दशक में रीडिस्कवर होता है, 2000 के दशक में वो बड़े बड़े छक्के मारते हैं और अपने आप को साबित करते हैं, और उसके बाद मोह मोह के धागे, यानी नई सदी में भी अनु मलिक का जादू कायम।

0: अनु जी, ये गाना तो मैजिक है। नए गीतकार वरुण ग्रोवर, शरद कटारिया की फिल्म, बताइए।
1: सबसे ज्यादा श्रेय जाता है YRF को
0: जी,
1: जिसके हेड हॉन्चो हैं हमारे फेवरेट, हम सबके फेवरेट आदित्य चोपड़ा साहब।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जिनका मुझे बुलावा आया, वो ज्यादा क्रेडिट लेना नहीं चाहते इस बारे में, बोलते मेरे बारे में ज्यादा मत बोला करो, लेकिन फैक्ट तो ये है कि उन्होंने मुझे फोन करके मैसेज देके बुलाया। और शरद कटारे साहब की स्क्रिप्ट सुनकर मैं गदगद हो गया, कमाल की स्क्रिप्ट
0: जी।
1: आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर ने जो काम किया है इसमें
0: जी,
1: मनीष शर्मा प्रोड्यूसर थे इसके, ये दोनों आए मेरे पास और आदित्य साहब ने बोला कि अगर आप इनको कन्विंस कर जाए तो ये पिक्चर आपकी है ना, ये गाना करते हैं। मुझे जब सिचुएशन बताई, मैं समझा, इन्होंने बताया कि हरिद्वार का सेटिंग है ये, मैं समझा

0: पता नहीं मेरे दिमाग में बनारस को चल रहा था और मैं अकेला रूम में बैठा हुआ तरस सोच रहा था। 4 घंटे चले गए, 5 घंटे चले गए, 6 घंटे चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। तब दरवाजा खुलता है और शरद कटारिया साहब आते हैं, मनीष शर्मा आते हैं। मैंने ट्यून सुनाई, पहले तो कुछ बोले नहीं, फिर शरद जी बोले अगर हम कोई नया राइटर लाए इसकेरिंदर तो आपको ठीक चलेगा। हमने पहले सोचा था, मैंने बोला गुलजार साहब होंगे
1: जी,
0: बोले नया राइटर जरूर ले आइए प्लीज, आई एम गेम टू वर्क विद एनीबॉडी। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि ये जो शब्द वरुण ग्रोवर ने मुझे दिए
1: जी,
0: ये मोह मोह के धागे,
1: बाद में तेरा चाव लगा के जैसे घाव लगा, वो भी आपने,
0: वो भी उन्होंने लिखा था
1: जी।
0: मैंने बोला ये लाजवाब राइटर है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे।
1: वाह वाह वाह।
0: और जब तर्ज बनी तो मैंने एक ही रिक्वेस्ट की, मैंने बोला मुझे वो सिंगर्स चाहिए जो मेरे साथ बैठे रिहर्सल करें। और इसका तो एक वीडियो भी बनाता है रिहर्सल का, जो बहुत लोकप्रिय हुआ है
1: जी जी।
0: कितनी मेहनत की हमने इस गाने के ऊपर। गाना जब रिकॉर्ड हुआ और जो पिक्चराइज हुआ, और आज मैं आपको बहुत खुशी से कहना चाहता हूं कि 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले
1: बिल्कुल
0: इस फिल्म को, इस गाने को, द बेस्ट लिरिक्स एंड द बेस्ट सिंगर मिला। ये अलग बात है कि अन्नू मलिक को भूल गए मुझे नहीं मिला उसके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन बेस्ट फिल्म भी मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: यस यस यस।
0: एंड 2016-17 की बात है ये।
1: और उस फिल्म के एक गाने में आपने 90s को रिलीव किया था, एक झलक सुनवाता हूं।
0: तुमसे मिले दिल में हुआ दर्द करारा।

के गाना भी अनुमलिक का विविध भारती के स्टूडियो में ढोल बजने लगा।

0: अनुजी, अब बहुत कम वक्त बचा है। विविध भारती अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। इतने सारे लोग और सभी आपके दीवाने, बताइए चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे अनु मलिक बनने का मौका दिया। मैं अपने देश का बड़ा आभारी हूं, जिस देश में मैंने जन्म लिया है, जहां मुझे ये कला मिली है। हर सुबह उठ के इस मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूं और ऊपर वाले से कहता हूं कि भगवान, अगर दूसरा जन्म है तो इसी देश में हो, हिंदुस्तान में हो, क्योंकि सारी दुनिया में अगर नाम हुआ है तो इसी देश से हुआ है। मैं अपनी जनता का बहुत बड़ा आभारी हूं, जिन्होंने मुझे हर तूफान में हर वक्त संभाला है।
0: अनुजी,
1: मुझे मेरे गानों को प्यार दिया है, मुझे इज्जत दी है। आज जितने भी मैं विविध भारती में आया हूँ, जितने भी मुझे यहाँ लोग मिले हैं,

0: जी,
1: ये सब मेरी बहनें जिनको मैं देख रहा हूँ, इतना प्यार से गाने नाच रहे थे और इतने दिल से रिएक्शन दिया है कि विविध भारती का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे याद किया
0: जी।
1: आपका यूनुस भाई जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और मेरा दिल कहता है कि हमारी जनता को ये प्रोग्राम बड़ा पसंद आया होगा और जरूर सीने से लगाकर इसको एक यादगार प्रोग्राम समझेंगे। 70 years इज नो मीन अचीवमेंट।
0: यस,
1: तो मतलब नेक्स्ट ईयर जनवरी 11 को अनु मलिक 50 साल कंप्लीट कर रहा है इंडस्ट्री में,
0: तब भी बैठेंगे और तब लंबी बातें करेंगे।
1: और 14 साल की उम्र से शुरू हुआ वह आदमी अपने बाजे को लेकर चला था मैं, और एक ही शब्द बोलता हूँ जो आज भी बोलता हूँ, मैं गलियों का राजा, मेरी दौलत ये मेरा दिल है और ये मेरा बाजा।
0: क्या बात है, क्या बात है। एक आवाज पर मेरी आप विविध भारती के स्टूडियो में आ जाते हैं और आप इस सम्मान का शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बात, कभी भी आपको विविध भारती बुलाओ बस एक बार कहना होता है अनु जी।
1: नाम क्या है इसका? विविध भारती
0: जी।
1: भारत जहां होगा, जहां भारत शब्द कहलाया जाएगा, वह अनु मलिक जाके अपना माथा टेकेगा।
0: वाह, शुक्रिया। बिल्कुल समय खत्म हो गया है, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत लेते हैं, आप आए, बहुत शुक्रिया,
1: धन्यवाद।

नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। 3 अक्टूबर का दिन विविध भारती के लिए बहुत मायने रखता है। आज है विविध भारती का स्थापना दिवस। 3 अक्टूबर 1957 से शुरू हुआ ये सफर अब अपने 70वें साल में प्रवेश कर रहा है। विविध भारती ने स्वस्थ मनोरंजन की एक समृद्ध परंपरा कायम की है और कितने तो अलबेले हैं विविध भारती के कार्यक्रमों के नाम, जैसे फौजी भाइयों का कार्यक्रम है जयमाला। पूरी दुनिया में फौजी भाइयों को समर्पित ये अपनी तरह का इकलौता कार्यक्रम है। यही नहीं, जानी मानी हस्तियां विशेष जयमाला कार्यक्रम पेश करती हैं जिसमें वो फौजी भाइयों से अपने जीवन की कहानियां बताती हैं। चिट्ठियों का कार्यक्रम मन चाहे गीत, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार, नाटिकाओं का कार्यक्रम हवा महल। विविध भारती सिर्फ एक रेडियो चैनल नहीं है बल्कि एक संस्कृति है, हमारे जीवन का हिस्सा है।

जाने माने फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने कहा था कि विविध भारती भारत के मध्यवर्गीय जीवन का पार्श्व संगीत है। कितनी सुंदर बात थी ये। अगर आप किसी शहर में हों तो आपको हर घर में विविध भारती गूंजता हुआ सुनाई पड़ सकता है। एक जमाना था जब विविध भारती आपके ट्रांजिस्टर पर गूंजा करता था। आज DTH, इंटरनेट स्ट्रीमिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, न्यूज ऑन AIR और वेव OTT के जरिए विविध भारती पूरी दुनिया में उपलब्ध है। यानी अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, दिन के किसी भी समय विविध भारती आपका साथ निभा सकती है। इसके अलावा चिट्ठियां तो विविध भारती में आती ही हैं। अब विविध भारती ने सोशल मीडिया का हाथ भी पकड़ा है। कुछ कार्यक्रम सोशल मीडिया के सहारे पेश किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे फोन इन कार्यक्रम हैं जिसके जरिए श्रोता हमसे सीधे जुड़ते हैं। यानी समय के साथ कदम ताल करती हुई आगे बढ़ रही है आपकी अपनी विविध भारती।

विविध भारती में गाने ही नहीं बल्कि समसामयिक जानकारियां पेश की जाती हैं। मशहूर हस्तियों से मुलाकातें, विविध भारती में साहित्यिक कार्यक्रम भी होते हैं। एक तरह से विविध भारती अपने समय और समाज का बेमिसाल दस्तावेजीकरण कर रही है। न जाने कितने दशकों से हॉस्टल में रह रहे नौजवानों के लिए विविध भारती उनके परिवार की सदस्य है। न जाने कितने अकेले लोगों का साथ निभाती है विविध भारती। देश विदेश में विविध भारती की आवाज गूंजती है और यूं लगता है जैसे हमारा कोई अपना हमारे साथ है, हमारे परिवार का कोई सदस्य हमारा साथ निभा रहा है। 70 वर्ष का ये गौरवशाली सफर आपके बिना पूरा होना संभव नहीं था, इसीलिए हम विविध भारती नहीं कहते, हम कहते हैं विविध भारती परिवार। तो पूरे विविध भारती परिवार को विविध भारती की सालगिरह बहुत मुबारक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में कहा कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से सर्वाधिक लाभ पाने वालों में पशुपालक भी शामिल होंगे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गौशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता प्राप्त करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए एक समन्वित अभियान चलाया है। वर्ष 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। इस सफलता के लिए सभी एजेंसियों को बधाई देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि सरकार दिसंबर 2029 से पहले हर नशीले पदार्थ

0: अर्थों के गिरोह को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऐसे मुक्त व्यापार संबंधों के लिए आगे बढ़ रहा है जो विश्व की लगभग 75 से 80% अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगा। शिकागो में यूएस इंडियन कम्युनिटी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में अपने व्यापार समझौतों का काफ़ी विस्तार किया है और कई अन्य वार्ताएं जारी हैं। उन्होंने कहा कि ये बढ़ता क्षेत्र भारत से संचालित कंपनियों को एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच प्रदान करेगा। श्री गोयल ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले भारत के लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी था। और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4 साढ़े 4 वर्षों में हमने 38 और देशों के

0: व्यापार समझौते थे।
1: 2014 के पहले हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कई देशों के साथ थे, पर वो सब छोटे छोटे देश थे अभी तक। और कुल मिला के जितने देशों में हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उनकी आज की अगर हम अर्थव्यवस्था देखें या जीडीपी देखें तो 10 ट्रिलियन डॉलर। गत 4-4.5 वर्षों में हमने 38 और देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का निर्णय लिया। 38 डेवलप्ड विकसित देश, और उन सब की अगर जीडीपी का आंकड़ा ले तो वो 60 ट्रिलियन डॉलर हो जाए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR News Hindi और पब्लिक पर @AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मन की बात कार्यक्रम की पहली कड़ी वर्ष 2014 में आज ही की तारीख को विजयदशमी के दिन प्रसारित हुई थी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम की 138वीं कड़ी में देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से इस सोच को किस तरह अमल में लाया गया है इस बात की जानकारी देंगे।
3: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी ABPMJAY सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। इसके तहत पात्र परिवारों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिलता है। योजना के अंतर्गत देश भर के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में सेकेंडरी और टर्शियरी केयर के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल से छुट्टी के बाद के 15 दिन तक के निर्धारित खर्च भी इसमें शामिल है। पहले से मौजूदा बीमारियां भी योजना में पहले दिन से ही कवर होती है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र या लिंग पर कोई सीमा नहीं होती। पात्र लाभार्थी देश के किसी भी राज्य में योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पताल में इसका लाभ ले सकते हैं, यानी लाभार्थियों को इलाज के लिए अपने गृह राज्य तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं। इसके अलावा 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र की सभी वरिष्ठ नागरिक उनकी आय या सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत PMJAY के तहत 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य कवर के पात्र होते हैं। आए सुनते हैं लाभार्थी की ये रिपोर्ट।
4: 1 ईयर पहले मम्मी का कुछ प्रॉब्लम हुआ था गायनी केस, तो हम बाहर भी गया था दिखाने के लिए, यहाँ भी दिखाया था। तो बाहर दिखाने के बाद मेन बीमार पता होने के बाद फिर यहाँ से भी कंसल्ट किया था गायनी सर लोग से, तो सर लोग ने बोला था कि यही में हो जाएगा ऑपरेशन, जो कार्ड भी आपके पास है ना नहीं पूछा था। हम बोला सर हाँ मेरे पास में कार्ड है बोल के, तो उसी में क्लेम करने से वो पैसा को भी आपको गवर्नमेंट से मिल जाएगा बोल के। तो फिर हम अपना ऑफिस में CFS में जाके SSR कागज डॉक्यूमेंट बताया, SSR है, तो वहीं से हमको बेनिफिट जो मिल गया। और ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हमका ये तेजू जनरल हॉस्पिटल से ही हुआ था।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधा कृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आम सहमति, समावेशिता और परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने से लोकतंत्र और विकास साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं तथा सतत विकास की मजबूत नींव तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक मजबूती तभी है जब कोई नागरिक, उद्यम या क्षेत्र पीछे ना छूटे।
5: Faster transformation is taking place in the economical growth of India. Once we were the underdeveloped economy, from there we moved on to the developing economy. From there we are moving towards the developed economy. We can call ourselves as a developed economy if it is an inclusive development of everyone. That is where the real development benefit should reach the nook and corner of the country.
0: रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि मूल्य और वित्तीय स्थिरता को भू राजनीतिक और भू आर्थिक विखंडन, व्यापार

0: व्यापार प्रतिबंधों, आपूर्ति में अचानक आए अवरोधों और तकनीकी व्यवधानों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में गवर्नर ने ये बात कही। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष के समारोह का विषय है भारतीय वायुसेना अचूक, अडिग और सटीक। एक रिपोर्ट।
1: वायुसेना दिवस के अवसर पर इस वर्ष एयरफोर्स डे परेड, भारतीय वायुसेना के विमानों और हथियार प्रणालियों का स्थैतिक प्रदर्शन, टीम शक्ति एयर वॉरियर ड्रिल टीम, एयरफोर्स ड्रमर्स और हेरिटेज फ्लाइट की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। मुख्य परेड एयरफोर्स स्टेशन हिंडन में आयोजित की जाएगी, जहां वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के अलावा सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और पूर्व वायुसेना प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इस वर्ष वायुसेना दिवस के आयोजन के बारे में नई दिल्ली में जानकारी साझा करते हुए स्क्वाड्रन लीडर पल्लवी सांगवान ने कहा कि परेड से पहले MI-17 राष्ट्रीय ध्वज और भारतीय वायुसेना के ध्वज के साथ ध्वज फ्लाई पास्ट करेंगे। परेड के बाद अलंकरण समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली इकाइयों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वायुसेना दिवस से पहले नई दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एसपी सिंह ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के इस दौर में जब हर देश के पास गोला बारूद, विमान, परिचालन प्रणाली और सीमित रसद आपूर्ति भंडार है, आत्मनिर्भरता आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें, expert@AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: ये आकाशवाणी है। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उसने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान का समन्वय किया। संयुक्त अरब अमीरात UAE के अटॉर्नी जनरल काउंसलर डॉक्टर हमाद सैफ अल शमसी ने कहा है कि फ्लाई दुबई की उड़ान FZ1073 की घटना की जांच में पाया गया है कि सह पायलट ने आतंकवादी कृत्य करने का प्रयास किया था। और जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं अब जागृति शर्मा।
3: जापान एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पुरुष क्रिकेट में पाकिस्तान को हराकर दूसरी बार स्वर्ण पदक अपने नाम किया। T20 फाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 19 रन से मात दी। भारत के 212 रन के लक्ष्य के जवाब में पाकिस्तान 196 रन ही बना सका। इससे पहले टॉस जीतकर भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 211 रन बनाए। इससे पहले इन खेलों में महिला क्रिकेट में भी भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आज ही प्रणवी उर्स ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोत ने इस स्पर्धा में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। कुल 81 पदकों में 19 स्वर्ण, 26 रजत और 36 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: धन्यवाद जागृति इस तमाम जानकारी के लिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार पशुपालन पर आधारित तंत्र विकसित कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत के मुक्त व्यापार समझौते विश्व की 75% अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के आज 12 वर्ष पूरे। हुरमुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर मिसाइल हमला, 5 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। और एशियाई खेलों में क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष हॉकी के फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में शुरू होगा हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए।

0: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज लेकर आई हूं एक खास मेहमान। वो है जाने माने लेखक, निर्देशक और एक्टर तिग्मांशु धूलिया जी। तिग्मांशु जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।
2: तिग्मांशु धूलिया एक लेखक, निर्देशक और अभिनेता जिनकी कलम में यथार्थ की कहानियां हैं।
3: 28 बरियर, 7 पानिया गड्ढा पार करके सारा नेशनल चैंपियन माने, कौने ने पूछा? जब 3 स्टेट की पुलिस को चकमा देगी एक किडनैपिंग कर लाई तो पूरा देश से पान सिंह नाम होगा।
2: जिनके कैमरे में जिंदगी की सच्चाई है, अभिनय में किरदार की धड़कन, गैंग्स ऑफ वासीपुर, शाहिद, माझी द माउंटेन मैन और भी बहुत सारी फिल्में।
4: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाए।
2: हासिल से हासिल हुआ कामयाबी का सफर।

0: मानसिंह तोमर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार का स्वर्ण कमल दिलाया। फिर तो साहब बीबी और गैंगस्टर, शागिर्द, बुलेट राजा, राग देश, मिलन टॉकीज जैसी बहुत सारी फिल्में उनके निर्देशन और लेखन से आईं। तो आइए एक बार फिर स्वागत करें दिग्मांशु धूलिया का। दिग्मांशु जी, विविध भारती का ये 70वां स्थापना दिवस है और रेडियो से आपको बड़ा प्यार है, तो बताइए आज इस जश्न के मौके पर हमारे देश भर के श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एक तो मुझको इस अपनी इस वर्षगांठ में बुलाने के लिए विविध भारती में बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आप सबका। ये मेरी पहली बार नहीं है, मैं कई बार, दो तीन बार पहले भी आ चुका हूँ।
0: जी जी,
1: तो पता नहीं क्यों आप लोग मुझे बार बार बुला लेती हैं, इसका पता नहीं क्या कारण है।
0: क्योंकि आपको रेडियो से बहुत प्यार है और हम सबको आपसे।
1: हाँ, तो रेडियो का ये कि बचपन में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ रेडियो ही था, ट्रांजिस्टर, जिसको हम अपने सोते वक्त तकिए बगल में लगा के सो जाते थे, और हवा महल, और फिर बहुत सारे वो बिना का गीत माला, और फिर उसके बाद प्रायोजित कार्यक्रम भी होने लगे, मोदी कॉन्टिनेंटल और ये वो, टायर
0: छाया गीत
1: और तमाम। और तो एक तो भाषा अच्छी होती थी बहुत रेडियो की उस वक्त, उसने बहुत दिया
0: जी।
1: और हमें सिर्फ अपने वक्त के गानों से, अपने वक्त में जो हो रहा है सिर्फ उससे ही नहीं, जो पहले भी हो चुका है, जो जो जो, जो गाने या जो उस तरह के कल्चरल मोमेंट्स जो हैं, जो इतिहास में पहले भी दर्ज हो चुके हैं, उसके बारे में भी पता चलता था। संडे को कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम आते थे जो प्रायोजित होते थे
0: जी।
1: और बहुत बहुत इट इज स्टिल अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन, बहुत कुछ सिखाया है रेडियो ने।
0: जी बिल्कुल। तो रेडियो सुनते सुनते आपने अपने भीतर सपना कैसे बुन लिया एक निर्देशक बनने का, एक्टर बनने का और लेखक बनने का, कैसे आपके भीतर बीज बन पा?
1: वो रेडियो की वजह से नहीं हुआ। रेडियो उस वक्त हम लोग जब छोटे थे तो हम इलाहाबाद में पढ़ा हूँ मैं, तो हमारा एक बैंड भी होता था, तो फिर वो युवाणी में पहले तो जो बच्चों का कार्यक्रम होता था संडे को,
0: बाल संग, नन्ही दुनिया, हाँ, वगैरह,
1: उसमें उस पर छोटे छोटे हम लोग जाते थे वहीं पे आकाशवाणी, तो वहाँ पे भैया, कौन भैया होते,
0: बड़े भैया जी,
1: बड़े भैया जी और दीदी होती थी
0: जी जी,
1: और सारे बच्चे होते थे, कोई कविता सुनाता था, कोई कहानी सुनाता था, कुछ क्विज होता था, वहां से शुरुआत की मैंने। उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो युवाणी में कई बार पार्टिसिपेट किया
0: जी,
1: और उसकी वजह से फिर थिएटर में घुस गया। मैंने एक जरिया बना, पहला जरिया तो रेडियो ही बना कि अपनी अपने अंदर थोड़ी बहुत जो भी कला थी बचपन में जो होती थी उसको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म जो पहली बार मुझको मिला वो ये
0: जी रेडियो ही मिला।
1: बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो ही मिला।
0: और विविध भारती से हम सबको खासा लगाव रहा है, हम सबका बचपन ऐसे ही बीता है कि हम विविध भारती सुन सुन के अपने भीतर सपनों के बीज रोपते रहे हैं। आपने इलाहाबाद

0: का जिक्र किया तो इलाहाबाद की बहुत सारी यादें हैं। हम तो सुनते हैं कि आप इलाहाबाद में ही रहते हैं, मुंबई में शूटिंग करते हैं, मुंबई आते हैं शूट करते हैं और इलाहाबाद चले जाते हैं, तो कोई कोई खास याद इस वक्त हो आपके जहन में तो आप साझा करना चाहेंगे विविध भारती के श्रोताओं से।
1: मैं जो भी हूँ शहर की वजह से हूँ,
0: जी,
1: और
0: क्या बात है।
1: वो शहर जो है, मैं एक सैकड़ों बार ये बात बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं उस शहर में पैदा हुआ, और जिस तरह का माहौल मिला दिया उस शहर ने मुझे, तो वो उसी की वजह से मैं जो भी हूँ। और भी सभी लोग को अपना शहर पसंद आता है, मैं यहाँ, लेकिन इलाहाबाद बहुत खास है। तो जो लोग इलाहाबाद में नहीं भी पैदा हुए वो भी चुप हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ कि मैं इलाहाबाद से, तो समझ
0: जी
1: जाते हैं
0: जी
1: वो लोग बैकफुट में होना चाहिए
0: जी बिल्कुल।
1: उनको।
0: इलाहाबाद संगम, नौका विहार, वहाँ का मन कामेश्वर मंदिर के किनारे
1: मैं तो
0: सीढ़ियों
1: अभी
0: पर
1: परसों
0: बैठ।
1: ही लौट रहा इलाहाबाद से
0: जी,
1: डुबकी लगा के। हाँ,
0: अच्छा, तो अभी भी जाते हैं तो संगम तीरे जाते हैं और
1: पितृपक्ष शुरू हो गए थे इसलिए गया था।
0: जी। इलाहाबाद की एक बड़ी मशहूर शूटिंग है, बहुत ही मशहूर फिल्म है जिसने आपको बहुत कुछ हासिल कराया,
1: जी
0: और आप फिर कहेंगे कि हमने बहुत कुछ बोला है, लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो आपकी ये बातें नहीं जानते हैं, उनके लिए बताइए कि फिल्म हासिल, जो आपकी कामयाब पहली फिल्म थी, उसके पहले तो आपने शुरुआत कर दी थी
1: नहीं, हासिल
0: इस
1: मेरी पहली फीचर फिल्म हासिल ही थी।
0: हासिल ही थी। अच्छा, तो हासिल से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, शूटिंग से जुड़ी हुई। हमने सुना है कि फिल्म हासिल ने आपको कामयाबी दी और साथ में उसने आपको रुलाया भी था, वो रोने वाली कौन सी घटना है, जरा वो घटना बताइए हमें।
1: अब जैसा मैंने कहा, इलाहाबाद टेस्ट करता है वो शहर, वो मुश्किल
0: मतलब
1: शहर है। अगर आप वहाँ पे किसी तरह का वृक्ष बोना चाहें या पौधा बोना चाहें, तो उस शहर की मट्टी पूछती है कि तुम्हारे औकात है करने की।
0: जी,
1: तो
0: क्या बात है।
1: उस शहर ने मुझे टेस्ट किया। तो मैं तो पहली फिल्म थी, तो मैं बहुत एक जवान, बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह अपना शहर जा रहा हूँ, शूटिंग करूँगा अपनी पहली
0: जी,
1: फिल्म की। क्लाइमैक्स मैंने कुंभ मेले में ऑलरेडी सेट कर दिया था, जिसको मैं पहले शूट कर चुका था, 2000 वाला जो कुंभ मेला था।
0: जी,
1: तो बट वहाँ के लोग जो थे, उनको लगा कि मैं शहर को, वहाँ की यूनिवर्सिटी को एक बहुत गलत अंदाज से पेश कर रहा हूँ, उनको ऐसा लगा। तो मैं उनसे कहता रहा, भाई रामायण में रावण भी है, राम भी है, मैंने रावण के सीन पहले शूट कर लिए, तो उन्होंने वो देखा, तो उनको लगा कि ये तो ऐसी फिल्म है।
0: जी,
1: तो मेरा बड़ा विरोध हुआ वहाँ, बहुत बुरी तरह, मतलब मुझे बहुत बेइज्जत किया गया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि, और मैं, मेरी पहली फिल्म थी, तो उस तरह से लोग मुझे उस तरह से तब जानते भी नहीं थे। अब कोई दिक्कत नहीं होती है, बट फिर उन्होंने, मैंने कहा कि ये शहर मेरा टेस्ट ले रहा है। तो जिस दिन उन्होंने रोकी मेरी शूटिंग, मैं कहीं और जाके गुरिल्ला वॉरफेयर की तरह मैंने वहाँ शूटिंग की। मैंने एक भी दिन काम नहीं रोका, क्यों, मुझे था कि काम रुकेगा, प्रोड्यूसर रुकेगा, अपने शहर लेके गए, उसका नुकसान होगा। तो मैंने कहा शूटिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो मैं भी, अगर वो इलाहाबादी मेरे खिलाफ थे, तो उनको नहीं पता मैं भी एक
0: एक इलाहाबादी
1: दूसरा इलाहाबादी से ही
0: हैं।
1: लड़ रहे हैं,
0: जी।
1: और वो हार गए सब। मेरी फिल्म रिलीज भी बनी, उससे सब कुछ दिया, सक्सेसफुल रही।
0: और लोगों ने बहुत सराहा, तो वो इसी वजह से रोए थे आप, मतलब
1: हाँ,
0: ये
1: वो रोया तो
0: रोने
1: इसलिए था कि हाँ, मुझे
0: वाले।
1: वहां पे डीएम के दफ्तर में बुला लिया,
0: जी
1: और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने पुराने पुराने दिग्गज सब एक्स प्रेसिडेंट या नेता जो भी थे, वो आ गए डीएम के ऑफिस में, और उन्होंने कहा देखिए ये तो शूटिंग वाले हैं, ये तो चले जाएंगे, आपको यही रहना है,
0: जी,
1: और ये लोग यात्री होटल में हैं, तोड़ देंगे उसका शीशा, उनकी गाड़ियां, उस लड़के को उसका
0: ओ
1: सर मुंडवा के गधे पे बैठा के शहर में घुमाएंगे। तो
0: ओ बाप रे।
1: मुझे तो आंसू आ गए मेरे,
0: हाँ,
1: मैं अकेला हूँ, ये कम से कम 25-30 लोग डीएम ऑफिस में, मेरे को डिफेंड करने वाला कोई भी नहीं। तो फिर मैं रो दिया, फिर लेकिन मैं निकला बाहर, मैंने शूटिंग नहीं रोकी। इवेंचुअली एक फिर बात हुई, मुझे फोन करने पड़ा। तो
0: तो मतलब आंसुओं की उस उन लड़ियों ने मुस्कान की और खुशी के मोती आपके जीवन में दिए
1: लगता तो
0: और
1: ऐसे ही है। हाँ,
0: बहुत सारे मोतियां। तो यहाँ पर बात हासिल की चली है, तो क्या हासिल फिल्म का गाना सुन लिया जाए,
1: जी बिल्कुल, कतई
0: और आपका पसंदीदा गीत है शायद ये,
1: जी।
0: सुनते हैं।

0: तो ये हासिल फिल्म का गाना था, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ें थी, सोनाली वाजपेयी की आवाज़ थी साथ में, और जतिन ललित का संगीत था। और कुछ श्रोता भी तिग्मांशु जी लिख रहे हैं और आपसे सवाल भी पूछ रहे हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है कि ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, ये चार शब्द सुबह सुबह घरों की खामोशी में पिछले 70 सालों से जीवन रस घोल रहे हैं। रेडियो की धीमी आवाज़, शहनाई की मंगल धुन आज भी करोड़ों भारतवासी के हृदय में अपनी पहचान बनाए हुए। विविध भारती की खासियत ये है कि उसके दर्पण में हर किसी के सपनों की आहट, ख्वाहिश की झिलमिलाहट और दूर तक अपने साथ ले जाने की फितरत शुमार है। एक श्रोता की ओर से सवाल है आपसे, तो पहले मैं जतिन ललित के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं श्रोता का सवाल शामिल करूं?
1: सवाल ले लेते हैं पहले
0: जी। हमारी एक श्रोता है, इन्होंने लिखा है कि तिग्मांशु जी, आपने इरफान खान के साथ काफ़ी फिल्में की हैं, उनके साथ फिल्म मेकिंग से संबंधित ऐसा कौन सा लम्हा है, कौन सा पल है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है?
1: अब ऐसे मोमेंट्स और लम्हे तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन जो ख़ास बात हमारे कॉम्बिनेशन में ये थी कि आप जब भी किसी एक्टर के साथ काम करते हैं और ठीक है आप उससे मिलते हैं पहली बार, उसको स्क्रिप्ट सुनाते हैं, तभी शायद आप जान पहचान होती है, और फिर शूटिंग के दौरान, लेकिन एक आप वो आपका दोस्त नहीं होता है।
0: जी जी,
1: वो एक साथ में एक फिल्म बनाने में जो एज ए टेक्नीशियन है वो एक्टर है, वैसा ही रिश्ता रहता है। और एक्टर्स क्योंकि थोड़े नाजुक मिजाज होता है इनका
0: जी,
1: तो आप उनको बहुत सहम के उनके साथ बिहेव करते हैं
0: जी,
1: कि कहीं कुछ ना हो जाए। इरफान के साथ ये था कि मेरा दोस्त था वो, तो मैं दोस्त के साथ फिल्म बनाता था
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं अकेला नहीं बना रहा होता था, मेरे साथ वो भी रहता था, उसके साथ मैं कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकता था, बाकी एक्टर के साथ मैं ये फैसिलिटी नहीं है मेरी, तो उससे थोड़ी मेरी उसकी जो फिल्में रही हैं
0: जी
1: वो थोड़ी ज्यादा लोगों के
0: संवेदनशील भी रही
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बात लोगों तक पहुंची है
0: जी। और इरफान से आपके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं?
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो कुछ पारिवारिक इरफान की जो निजी बातें हैं उनकी, फिल्मों के अलावा कौन सी बात आपको याद आती है? आज इरफान नहीं है लेकिन हम सब के दिल के करीब हैं वो ऐसा लगता है कि एक्टिंग नहीं, सामने बातचीत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, मेरे भाई जैसा था वो, मेरा सबसे अच्छा दोस्त था वो, जो कि दूसरा है नहीं उसके जैसा कोई
0: जी।
1: तो उसके जाने से मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हूँ,

0: और ये सच बात है, मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। और फिर पारिवारिक जो आपने कहा कि मतलब घर बिल्कुल पारिवारिक माहौल बन, मतलब कि मेरी हम मैं इरफान हमारे और भी दो तीन चार दोस्त जो करीबी थे, ब्रिजेंद्र काला और सब जो थे, तब बहुत मिला करते थे हम लोग सब बाप बने हैं, मतलब सब 5-6 महीने के गैप में सबके सब,
1: जी जी
0: मतलब सबकी बीवियां मोटी मोटी स्वीट, सब स्वीट और
1: अच्छा
0: इरफानी उनको गाड़ी में बैठा के
1: हाँ
0: घुमाना, या उनको जैसे चाट वाट के खाने का बहुत मन करता है ना, सब तो वो सब इरफानी करता था,
1: जी जी
0: 3-4 महिलाओं को बैठा के और घुमाना, और फिर सबके 5 बच्चे हुए, सब 4-5 महीने 3 महीने के गैप में, तो अब
1: जी
0: इससे इतना बड़ा परिवार हो गया हमारा।
1: जी बिल्कुल, ब्रिजेंद्र काला का आपने नाम लिया तो वो तो आपकी फिल्म में भी पत्रकार की भूमिका निभाई थी,
0: हाँ वो मेरा
1: मानसिक
0: मेरा
1: मतलब।
0: कजन ब्रदर है।
1: तो जो पत्रकार की भूमिका थी वो बड़ी अलग किस्म की थी,
0: हाँ
1: तो क्या सचमुच वो ऐसे हैं या उस फिल्म में आपने शामिल किया था, उनका कैरेक्टर गढ़ा था?
0: तो बहुत अच्छा एक्टर है वो, थिएटर का एक्टर है, बहुत पुराना एक्टर है, और उसको कुछ बताने की ज़रूरत मुझे खास पड़ी नहीं, थोड़ी बहुत जो उसकी ये कि दीवार पे लग के लिखो वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा, और डायरेक्टर किस काम का है, नहीं तो अपने आप में बहुत ही माहिर एक्टर है वो।
1: जी, एक्टिंग की बात चली कि बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप खुद भी तो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत सारी फिल्में की हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर का जो किरदार है रामा धीर सिंह,
0: जी,
1: तो वो तो नाम से ही मशहूर हो गया था, तो कैसे आप वहाँ पहुँचे? मतलब एक्टिंग, आगे एक्टिंग ही तो नहीं करना चाहते हैं?
0: नहीं
1: मतलब हम लोग चाहते हैं कि आप डायरेक्ट बतौर डायरेक्टर फिल्में देते रहें।
0: एक्टिंग में मुझको मतलब वो मैं ऐसी पता नहीं क्यों, वो अपना अनुराग और कश्यप और जो
1: जी
0: कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे मुकेश छाबड़ा साहब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन में आया कि ये रोल मुझसे कराना है। मैं एक्टर तो था नहीं, मतलब एक्टर पे था, ड्रामा स्कूल में मैंने एक्टिंग की पढ़ाई की, लेकिन मैंने कभी एक्टिंग के परसू नहीं किए। मैं फिल्म डायरेक्शन में आ गया, कम्प्लीटली
1: जी
0: अलग
1: जी
0: स्ट्रीम, उन्होंने बोला मैंने हाँ कर दी, मुझको मालूम नहीं था कि इतना बड़ा रोल है ये वो, तो ऐसे मिल गया और मैंने कर दी। अब हमेशा एक्टिंग में, कल भी बच्चों के साथ एक वर्कशॉप किया था मैंने, कहा एक्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, वो बहुत तरक एक चीज़ नहीं
1: आप
0: होती, बहुत चीज़ों से आती है, थोड़ा एक्सपीरियंस से आती है, थोड़ा रिस्पेक्ट से आती है,
1: जी जी
0: थोड़ा आपने अच्छा काम कर लिया हो तो उससे आपको अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर हो चुका था, उस यूनिट पर जब गया तो सब दोस्त थे,
1: जी जी
0: मनोज वाजपेयी हो ये वो नवाज हो, तब सब दोस्त हैं,
1: जी
0: अनुराग कश्यप दोस्त है आपका, कैमरामैन को आप जानते हैं, तो मुझको कोई ऐसी जगह नहीं गई कि अरे मैं अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ कर रहा हूँ तो शायद मैं घबराता थोड़ा, तो
1: तो
0: इसलिए वो हो गया कॉन्फिडेंस में और
1: जी,
0: अच्छा हो
1: तो
0: गया।
1: वो जो थप्पड़ मारे थे आपने फटाफट, वो असली वाले थे कि नकली थे?
0: हाँ नहीं
1: क्या हुआ
0: विपिन,
1: था फिर उसके बाद? हाँ
0: वो विपिन को जब मारता हूँ कहाँ गाड़े थे उस वक्त,
1: जी
0: तो मैंने विपिन को बोला, विपिन मेरा सीनियर है नेशनल स्कूल ड्रामा से, मुझसे तो 3-4 साल सीनियर है, तो मैंने विपिन को बोला अभी, मैंने कहा विपिन यार से जैसे हम लोग फिल्म नहीं मारते हैं वैसे मार दो क्या? कह नहीं नहीं मारना मारना,
1: ओहो
0: मैंने कहा यार लग जाएगी मेरा थोड़ा भारी हाथ है, कह नहीं नहीं कोई नहीं, हम लोग
1: अच्छा
0: कह दिया तो मैंने मार दिया,
1: फिर बाद में झगड़ा नहीं हुआ?
0: नहीं नहीं झगड़ा बिल्कुल नहीं
1: अच्छा
0: हुआ,
1: ओके।
0: बिल्कुल
1: और
0: नहीं।
1: बात एक्टिंग की चली है तो शाहरुख खान के साथ भी तो आपने एक फिल्म की है, दिल से।
0: हाँ डायलॉग्स लिखे थे उसके,
1: जी
0: तो मैं पूरी शूटिंग में था
1: जी
0: उस दिल से की। जी
1: तो शाहरुख खान के साथ लिखना आपके लिए एक अलग अनुभव रहा होगा, कुछ अनुभव
0: मैं
1: साझा कीजिए।
0: शाहरुख के लिए नहीं लिख रहा था, मैं मणि सर के लिए लिख रहा था, मणि रत्नम जी के लिए लिख रहा था, मैं लिख क्या रहा था, मैं सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा था एक्चुअली में,
1: जी
0: वो अंग्रेजी में बता देते थे कि ये चाहिए मुझको, और उस इतना समझ के कि शाहरुख का किरदार ऐसा है, मनीषा का जो कैरेक्टर्स को इतना तो समझ थी मुझे,
1: जी
0: तो उस किरदार को समझते हुए मैंने उस तरह की हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया, और उस जो अंग्रेजी में मणि सर ने लिखा था उसको मैंने एक अच्छे ढंग से अडेप्ट कर लिया,
1: जी
0: बस
1: जी
0: ये काम था मेरा।
1: जी तो इस समय उनकी फिल्म का जिक्र चला है, तो यहाँ पर आपको कौन सा गाना हम सुनवाएं? हालांकि आपकी पसंदीदा गानों की हमने लिस्ट बनाई है, तो बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं? कुछ पुराने दौर में जाना चाहते हैं या नए दौर के गाने
0: हाँ
1: सुनना चाहते हैं?
0: ये तेरे मेरे सपने का गाना,
1: जी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, ये गाना हम सुन लें।
0: जी बिल्कुल।
1: नीरज के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत है। और आपकी

0: तो तिग्मांशु जी, ये गाना हमने आपकी ओर से नज़र किया अपने श्रोताओं को, और आपकी एक लंबी यात्रा है, आपका परिवार इलाहाबादी है मन से, आप अक्सर कहा करते हैं, तो एक बार फिर इलाहाबाद की गलियों में चलते हैं और याद करते हैं आपकी माँ को। आपकी माँ से जुड़ी हुई कौन सी याद है जो आप साझा करेंगे? संस्कृत की प्रोफेसर थी वो?
1: जी जी, मेरे पिताजी वकील थे, बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज भी बने। वो बहुत ज़्यादा दिन जी नहीं पाए वो, बट मदर मेरी पढ़ाती थी और दोनों चले जाते थे अपने वो हाईकोर्ट या अपने स्कूल कॉलेज पढ़ाने के लिए। हम तीन भाई थे तो हमारे घर में एक था आनंद कुकर, और वो चीज़ मैंने किसी और घर में देखी नहीं।
0: अच्छा,
1: वो इतनी खूबसूरत चीज़ थी कि जैसे उस जिसके टिफिन बॉक्स होता है ना, जैसे
0: जी,
1: जिसमें
0: जी,
1: हम लंच लेके ऑफिस में लोग जाते हैं, दो तीन उसमें वो होते हैं दाल चावल
0: डब्बे होते हैं,
1: उसमें वो बड़ा सा एल्युमिनियम का था और नीचे उसमें आप कोयला जला दीजिए।
0: अच्छा
1: हाँ, अब

0: बड़ा स्मोकी फ्लेवर भी होता ना, और जो नीचे एक उसमें दाल रख लीजिए, फिर थोड़ा चावल रख दीजिए, फिर जो सब्जी उबल उबल जाए, घर आए आप सीधे काटे छोंक दे बन गई, उस तरह की आलू या परवल या इस तरह की
1: अच्छा
0: चीज़ें आप ऊपर रख दीजिए। और हम लोग आते थे 1:30-2 बजे स्कूल से, तो और फट से बना बना खाना मिलता है गरम गरम। तो ये आनंद कुकर बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ थी, वो पता नहीं गायब होगी, लोगों को रखना चाहिए अपने घर में। उसका एक तो फ्लेवर भी खाने का बहुत अच्छा आता है उसमें,
1: जी जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: कोयले में पका हुआ एक तो ईंधन ही बचता है, और बहुत इतना डिलिशियस खाना बनता है। तो मदर फिर आती थी इलाहाबाद की गर्मी, तो आपको पता ही, आप भी वहीं की हैं,
1: बिल्कुल भीषण गर्मी।
0: हाँ भयंकर गर्मी। तो तब वो रिक्शे में आती थी, एक रिक्शा वाला बेचारा उनको ढो के सबको, वही तब तभी रिक्शा ही चलता था।
1: जी
0: तो वो हमारा फर्स्ट फ्लोर पे घर था, नए नए फ्लैट सेल अप सिस्टम इलाहाबाद में आया था, तो हमारे घर वालों ने खरीद लिया था एक फ्लैट, आज भी है वो फ्लैट। तो दिन में आती थी वो 3, 3:30 बजे में, भीषण गर्मी, और रिक्शे वाले को ऊपर ले गया था, रिक्शे वाला पसीने से लथपथ होता था।
1: बिल्कुल
0: ये उनसे मैंने एक चीज़ की, जब वो आती थी मतलब कहते रिक्शे वाले को पानी पिलाओ, पानी पिलाने के पहले उसको गुड़ दो।
1: क्या बात है, ये वहां का
0: हाँ,
1: चलन
0: तो
1: है।
0: मैं बड़ा सा एक ढेला गुड़ का उसको रिक्शे वाले को देता था, वो पहले बेचारा गुड़ खाता था और फिर वो ठंडा पानी पीता था और बहुत दुआएं देके जाता था। ये हम हर रोज होता था,
1: क्या बात है,
0: तो ये चीज मुझे बहुत याद रही अपनी मदर की कि
1: ये सिखाया।
0: हाँ जी।
1: और आपकी फिल्मों को जब उन्होंने देखा, निर्देशन किया, तो उन फिल्मों में कुछ बारीकियां वो समझाती थी।
0: उनको प्रॉब्लम होती है मेरी फिल्मों से कि उसमें बहुत लड़ाई झगड़ा खून खराबा गोलियां बहुत चलती है, तो उनको उनको इस बात का वो उनको वो है, वो एतराज़ करती है इस पे, कैसी फिल्म बनाते हो।
1: तो आपने बात मानी नहीं उनकी एक कोई प्रेम कहानी लेकर आइए और बड़ी संवेदनशील, जहाँ प्रेम आलाप हो, जो इलाहाबाद की गलियों में होता है।
0: हाँ नहीं, पान सिंह तोमर जैसी फिल्म तो उनको भी अच्छी लगी थी, वो उसमें फिर अवार्ड अवार्ड कभी मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाती है वो।
1: किसे नहीं अच्छा लगता है। पान सिंह तोमर एक बेहतरीन फिल्म थी, हम सब ने देखी है, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और सचमुच इरफान की एक्टिंग, जब भी पान सिंह तोमर की बात चलती है तो इरफान का जिक्र ना हो ये हो ही नहीं सकता। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने तो ये इलाहाबाद का जिक्र किया, माँ का जिक्र किया, और आपके भाई भी अभी जज हैं इलाहाबाद में।
0: नहीं, अब वो सुप्रीम कोर्ट में जज थे और लास्ट ईयर अगस्त में रिटायर कर गया।
1: जी, तो वो जो परिवार इतना आपका, क्या कहते हैं इलाहाबाद में जो भाषा कहते हैं, दबंगई, तो वो दबंगई आपकी फिल्मों में भी कहीं दिखता है, आप लाते हैं। और छोटे शहरों के जो कस्बे के संवाद होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, किरदार होते हैं, वो आपकी फिल्मों में खूब दिखाई देते हैं, तो वो क्या इलाहाबाद की देन है कि आपके निर्देशक की कलाबाजी है?
0: नहीं, एक बचपन से मुझे फिल्में ही वो पसंद थी जिसमें थोड़े से इस तरह के एलिमेंट्स हों, जो किसी के आदेश का पालन नहीं करते वाले किरदार जो होते हैं, जो किसी से दब के नहीं रहते हैं, क्योंकि इलाहाबादियों में एक बात होती है, वो दब के नहीं रह सकता किसी से। तो पता नहीं क्या बात थी, मुझे फिल्में भी वैसी अच्छी लगती थी, मुझे लव स्टोरीज पसंद ही नहीं आती थी। तो ये टेस्ट वाली बात है कि आपको कौन सा खाना पसंद है, उसी तरह की चीज़ थी मुझको। मुझको थोड़ा जिसमें पोस्टर में अगर पिस्टल है तो वो पिक्चर देखनी ही देखनी है, इस तरह का था। वही चीज़ चली आ रही है, तो मैं बनाता भी वैसी फिल्में हूँ। लव स्टोरीज मैंने शायद एक ही बनाई, वो चली हुई नहीं।
1: जी, और उसमें वो गाना भी खूब मशहूर हुआ था, आंखें भी दिल की जुबान,
0: ये तो हासिल
1: का था। हासिल का है। और साहब बीबी गैंगस्टर में भी खूब गोलियां चली हैं।
0: जी जी जी।
1: तो साहब बीबी गैंगस्टर से जुड़ी कुछ बात हमारे श्रोताओं को बताइए। शूटिंग के समय किस तरह का माहौल आप रचते हैं, आपका जो निर्देशक का?
0: साहब बीबी के मैंने 3 पार्ट्स बनाए थे, तो जो पहला पार्ट बन रहा था, जब बनाया था, तो हमारे पास कोई काम नहीं था किसी के पास। पान सिंह तोमर बन चुकी थी और फिल्म रिलीज नहीं हो रही थी, और मैं तो वेट करता था कि पिक्चर रिलीज होगी, अगर कुछ हुआ तो फिर अगली फिल्म मिलेगी, ऐसे ही चलता करियर। और फिल्म रिलीज ही नहीं कर रहे थे वो लोग, हम ऑफिस जाते थे, कुछ नहीं करते थे, फिल्में देखते थे और फिर टीटी खेलते थे, चले आते थे। तो ऑफिस में कई लोग आते थे, रणदीप हुड्डा भी आता था, वो भी टीटी खेलता था हम लोगों के साथ, और जिमी तो खैर दोस्त आता ही था। तो फिर सोच, मतलब उसी वक्त ये डिजिटल नेगेटिव गया और डिजिटल आया हिंदुस्तान में, जब हम डिजिटल पे शूट करते हैं ना सब कुछ।
1: जी जी।
0: तो उससे कॉस्ट बहुत कम हो गई फिल्म बनाने की, बहुत ज्यादा। तो मुझको लगा कि मैं डिजिटल पे, मैंने कहा 1.5 करोड़ में फिल्म बना दूंगा, किसी को देंगे नहीं पैसा, जो भी खाना वाने का खर्चा है लोगों को, थोड़ा बहुत करके 1.5-2 में बना दूंगा। और उल्टी बही गंगा, हमको, हमने पहले टाइटल डिसाइड किया साहेब बीवी, और मुझको साहेब बीवी गुलाम का एक इंडियन, वो इंडियन

0: मॉडर्न वर्जन बनाना था।
1: जी,
0: वो बहुत अच्छी फिल्म है, सबको पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर उन्होंने कहा गुलाम नहीं गैंगस्टर्स, अच्छा टाइटल, पहले टाइटल ले आया, फिर उस तरह की लोकेशन ढूंढने गए। जब लोकेशन मिली तो लोकेशन के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी गई, उल्टा पहले तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है फिर जाते हैं हम लोकेशन ढूंढने, यहाँ उल्टी भाई सब बड़ी गंगा
1: जी।
0: ये कहकर हमने वो फिल्म बना दी और वो पिक्चर ने बहुत क्रिटिकल अक्लेम और चली भी पिक्चर वो
1: जी।
0: और उससे उसकी वजह से फिर सेकेंड भी आई और फिर थर्ड भी आई
1: जी। तो तीनों को बनाने में जो कि पहली फिल्म पहली से, मतलब दूसरी फिल्म पहली से और अच्छी हो और उत्तम हो, तो उसके लिए क्या खास ख्याल रखा आपने?
0: कुछ ऐसा ख्याल, मुझको तो उसी दुनिया में बनानी थी, कहानी का ही हर पहले का ही एक्सटेंशन था, सेकेंड और थर्ड भी। तो उसे सिर्फ गैंगस्टर बदलते हैं, पहली वाले में रणदीप हुड्डा गैंगस्टर थे, सेकेंड वाले में इरफान था। तो पहली भी चल गई थी और तो सेकंड वाले में थोड़ा हमको मिल गया स्टूडियो फट से, बहुत झंझट नहीं हुआ
1: जी जी।
0: थोड़ा बजट भी थोड़ा बढ़ गया, तो उसमें थोड़ा सा आपने थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया पोलो मैचेस, जितने प्रिंसली वाले जो पोलो खेलते हैं उस तरह के मैचेस और ये वो, थोड़ा गानों में खर्चा ज़्यादा, वो सब किया आपने सेकंड में
1: जी। एक झलक सुनते हैं गाने की, साहबीबी और गैंगस्टर, नूरा सिस्टर्स की आवाज़ में।

ये साहा बीबी और गैंगस्टर फिल्म का गाना था नूरा सिस्टर्स की आवाज़ में, और तिग्मांशु जी की ही ये फिल्म है। तिग्मांशु जी, हमारे बहुत सारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं और आपसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी जिज्ञासाएं। एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आपने अभिनय और

0: स्टेशन दोनों में काम किया है, कैमरे के सामने और कैमरे के पीछे काम करने में आपको सबसे बड़ा अंतर क्या महसूस होता है?
1: दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अंतर क्या बहुत ही दोनों, मुझे मज़ा आप कैमरे के पीछे ज़्यादा आता है, मुझे डायरेक्शन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। एक्टिंग मैं करता हूँ क्योंकि मैं बाय मिस्टेक एक्टर बन गया किसी तरह से, और वो लोगों को पसंद आ गया, तो अब मुझे कभी कोई रोल ठीक ठाक होता है या पैसे थोड़े ठीक ठाक मिलते हैं तो मैं रोल कर लेता हूँ। बाकी मुझे बहुत शौक नहीं है एक्टिंग करने का।
0: जी,
1: दुनिया का सबसे आसान काम है एक्टिंग।
0: अच्छा, तो उस समय आपका निर्देशक भी काम करता है आपके भीतर कि जो निर्देशक बोलता है वही करते हैं?
1: जी नहीं, आप उसको स्विच ऑफ तो नहीं कर सकते कि आप कम्प्लीटली स्विच ऑफ, तो लेकिन ये है कि डायरेक्टर कोई और होता है तो मैं ज़्यादा सवाल जवाब करता नहीं हूँ। बहुत ही मेजर कोई प्रॉब्लम लग रही है कि जो वो डायरेक्टर समझ नहीं पा रहा, तब मैं कभी कभी समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर वो अड़ा रहे तो मैं डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर भी ऐसे ही करें, तो मैं भी डायरेक्टर की ही बात मानता हूँ, माननी भी चाहिए
0: जी।
1: तो लेकिन एंजॉय मैं ज्यादा डायरेक्ट करना करता हूँ
0: जी। एक श्रोता कह रहे हैं कि अवधि में कुछ बोल के बताइए।
1: अरे कहाँ बताई भैया, कोनो एक सवाल बढ़िया से पूछो तो बताई फिर तुमको।
0: तो बतावे कोनो शूटिंग से जुड़ी हुई कोनो बात याद हो तो बतावे दे।
1: अरे अब शूटिंग इतनी पिक्चर बन गई, इतने इतने कांड हुए हैं और इतनी कहानियां हैं कि सुबह से रात हो जाएगी।
0: तो एक आध कोनो छोटा सा अंश बता दे ताकि हमारा श्रोता खुश हो जाए।
1: नहीं ऐसे जब बहुत कुछ होता था कि एक जैसे पान सिंह तोमर की एक बार शूटिंग कर रहे थे हम लोग चंबल में, तो बहुत खूबसूरत जगह है चंबल, बहुत ही वो नदी इतनी खूबसूरत है, इतनी साफ, इतनी आप उसको आप ऊपर से देखें बोट से तो आपको नीचे तक दिखाई देता है,
0: ट्रांसपेरेंट है
1: एकदम, आपको नीचे कछुए और ये सब चीजें तैरती हुई दिखाई देंगी, ब्यूटीफुल रिवर, और साथ में वो चंबल के घाटियां और रवीन्स जो है। तो शूटिंग करते थे फिर सोचते थे यार, क्योंकि सारे दोस्त यार हैं, इतनी 100-150-200 की यूनिट है, हम लोग सोचते थे यार एक जैसे की जगह शूटिंग कर रहे थे हम लोग, तो हमने कहा साहब मेरे फान, और मैंने कहा यार रात को ना बैकअप के बाद यही मंदिर बनाएंगे।
0: क्या बात है।
1: कि तो यही बैठा जाएगा।
0: डर नहीं लगता था रात की शूटिंग में?
1: उस नहीं, तब पुलिस तो रहती थी हम लोग के साथ, लेकिन हम लोग सोचा था बैठेंगे अपना कुछ मजा वजा करेंगे, यही आस पास खाना वाना कहीं बनवा लेंगे गाँव में, और पूरी तैयारी के साथ, और बहुत कैसे जिस कैसे जल्दी पैकअप हो और कैसे हम लोग सब रिलैक्स करें नदी के बगल में, घड़ियाल बहुत है वहाँ चंबल जो नदी है उसके कट पे एलिगेटर्स जो है बहुत सारे हैं,
0: जी जी,
1: ऐसे मुंह खुले हुए सब लेटे रहते हैं सब। तब तक खबर आई, हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि आग वाग का सबका, हर तरह की आग का, तो फिर पाया कि देखो शूटिंग देखने के लिए आते ना बहुत सारे लोग, कौन क्या है उसमें क्या मालूम, कहते नहीं डकैत लग गए हैं यहाँ पे 3-4, और आप लोग ये सब एंजॉय करना भूल जाइए, चुपचाप गाड़ी में बैठिए होटल जाइए। तो वही किया, नहीं तो पता चला कि जो हीरो है उनको उठा के ले गए, पकड़ बन गए, वो हम उनकी रैंसम दे रहे हैं वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं शूटिंग के दौरान, आपको क्योंकि लोकेशन नहीं होती है, आप थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस होना चाहते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे किस्से इस तरह के
0: जी जी
1: बहुत है। लेकिन डाकू आते थे हमारी शूटिंग देखने।
0: अच्छा, तो कभी आपको उनसे डर नहीं लगा, डराया धमकाया नहीं?
1: इस तरह के थोड़ी होते हैं
0: जी,
1: इस तरह के थोड़े गधे बेवकूफ थोड़ी होते बाकी लोग
0: जी,
1: उनको अगर किसी को किडनैप करना हो तो पूरे प्लानिंग के साथ आएंगे तो करेंगे, लेकिन ऐसे वो किसी को
0: हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: अब वो पूरे एरिया में सब घर हर घर में बंदूकें हैं, क्या करेंगे डाकू परेशान।
0: और आप जैसे जो इलाहाबाद की जो दबंगई है, दबंग किस्म के इंसान तो डर ही नहीं सकते, ये भी बात।
1: ऐसी बात नहीं है, डर तो लगता है, सबको लगता है, मुझको भी लगता है
0: जी,
1: और लगना भी चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है, खतरों से खतरों का सामना करना ठीक है, लेकिन खतरों के खिलाफ खड़े होके अनायास मोर्चा लेना भी ठीक नहीं होता जी। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आज के दौर में जब सिनेमा तेजी से बदल रहा है तो आपको लगता है कि कहानी ज्यादा महत्वपूर्ण है या उसे प्रस्तुत करने का तरीका?
1: फिल्म चलने के पीछे, अच्छी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दोनों पे बात बोल सकता हूँ। देखिए फिल्म के चलने के पीछे अच्छी कहानी हो जरूरी नहीं है
0: जी, कौन सी फिल्म चल जाए कुछ पता नहीं।
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, उस पिक्चर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपको क्या चाहे कैसी भी कहानी हो, सिंपल कहानी हो, लेकिन उसको जिस तरह से आप कह रहे हैं वो अंदाज आपका, उस फिल्म की पैकेजिंग, किस तरह से टाइटल्स आ रहे हैं, किस जगह पे गाना आ रहा है, स्क्रीन प्ले जिसे कहते हैं हम।

0: साहिर साहब ने लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी, किशोर कुमार की आवाज़ और
1: दाग
0: दाग फिल्म, तो ये गाना तो हमने सुना। और हमारे श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हैं, तो वो उन्हें बड़ी जिज्ञासा है, तो उनकी ओर से एक सवाल है, वो ये कि आपका नाम तिग्मांशु है और धूलिया है, तो ये दोनों का मतलब क्या है? दो नाम है या एक ही नाम है?
1: नहीं, नाम तिग्मांशु है, धूलिया मेरा सरनेम है
0: जी।
1: तो तिग्मांशु संस्कृत नाम है, इसका मतलब है सूर्य, सूर्य। तिग्मांशु तो तेज, जिसकी अंशु हैं, किरणें हैं, वो है तिग्मांशु। जो तो सूर्य सहस्त्र नाम, अगर आप जो इतने सारे नाम सूर्य भगवान के आप सुनिएगा तो उसमें तिग्मांशु भी आता है
0: जी जी।
1: तो मुझको नहीं लगता मेरा नाम किसी नाम का कोई और दूसरा है देश में, और आप सोच समझ के रखा गया मेरा नाम।
0: बिल्कुल, शायद आहट मिल गई थी आपके माता पिता को
1: क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाइयों का हिमांशु सुधांशु है, वो चंद्रमा से वो है, तो वो उनको लगा एक तो सूरज हो
0: जी।
1: तो और धूलिया का क्या है, मैं भी पूछता रहता हूँ कि क्या रब है। तो मुझे जो मुझे एकदम साइंटिफिक और हिस्टोरिकली थोड़ा रेलिवेंट और करेक्ट लगता है, वो ये लगता है कि शायद हम लोग धूले से हैं, महाराष्ट्र से
0: जी।
1: वैसे तो मैं हूँ उत्तराखंड का।

0: आते हैं और गाने वाले भी आते हैं, क्योंकि बहुत मीलों तक का ट्रैवल होता है। तो मुझको लगता है कि पानीपत के उसमें फिर कई पुजारी जो है रह गए वहीं। और ये भी होता था कि वहां तक जा रहे हैं तो जो भी ब्राह्मण्स होते थे उनको ये लगता था काशी तो हो आए या बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन कर लें, ये सब बहुत होता था ना वहां से
1: जी,
0: आए हैं।
1: जी,
0: यहाँ तो
1: जी.
0: हवाई जहाज तो थे नहीं कि पहुंचे घटाघर, तब तो पैदल चल रहा है सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग धुले से थे और हम लोग रह गए वहाँ और उनको अच्छा लगा शायद पहाड़ में रहना,
1: जी
0: तो उत्तराखंड में सेटल हो गए, ऐसा मुझे लगता है।
1: जी बात उत्तराखंड की चली है. उत्तराखंड के बारे में हम जानना चाहते हैं. तिग्मांशु जी, एक टिप्पणी है, जानी मानी कथाकार हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ, उन्होंने अभी टिप्पणी की है और इस पूरे कार्यक्रम की बहुत तारीफ कर रही हैं और लाइव फेसबुक पेज पर देख रही हैं, तो उनका हम शुक्रिया अदा कर देते हैं.
0: जी जी
1: और
0: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी, और एक श्रोता ने पूछा है आपसे, विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के संगीत को घर घर पहुंचाया है, आपकी फिल्मों में जैसे पान सिंह तोमर है, हासिल है, साहब बीबी और गैंगस्टर में भी संगीत का एक खास मिजाज है, रेडियो पर बजने वाले पुराने गानों ने आपके संगीत के सेंस को कितना प्रभावित किया है?
0: अब मुझे हिंदी फिल्म म्यूजिक मुझे को मैं एक बहुत ऊंचे लेवल पर रखता हूँ।
1: जी
0: इससे बड़ा बढ़िया हिंदी फिल्म म्यूजिक, एक फ्यूजन म्यूजिक का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता।
1: जी जी
0: बाद में सब जैज़ और फ्यूजन म्यूजिक आया कि इंडियन क्लासिकल और जैज को मिक्स, वो सब का हिंदी फिल्म म्यूजिक ये काम 200 साल पहले से कर रहा था।
1: बिल्कुल,
0: बहुत इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड हिंदी फिल्म म्यूजिक है।
1: जी जी
0: तो उसको पसंद अगर मैं करता हूँ या जो भी लोग पसंद करते हैं वो कई कारणों से करते हैं, कईयों को लिरिक्स बहुत पसंद आती हैं। अब पुराने ज़माने में क्या था, जो कि लिरिक राइटर जो थे वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, और हिंदी फिल्म के जो राइटर्स थे वो सबसे ज़्यादा, बाकी लोग इतने थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चाहे वो डायरेक्टर्स भी ही क्यों ना हो। तो हमारी हिंदी फिल्म म्यूजिक को इतना पॉपुलर करने के लिए पीछे लिरिक राइटर्स का हाथ बहुत, और मैं आज एकदम पूरे दम से बात कहता हूँ कि गाने कविता की वजह से ज्यादा चलते हैं बजाय उसकी मेलेडी की वजह से।
1: क्या बात कही आपने, सच
0: लिरिक, जी बिल्कुल लिरिक्स की वजह से ज्यादा चलते हैं आज, उनको हम याद ही इसलिए करते हैं बिकॉज वो लिरिक्स हमको समझ में आती हैं और हमारे दिल को छूती हैं, और डेफिनेटली उसके बाद एक मेलेडी कॉम्पोजिशन का हाथ तो होता ही है, लेकिन इट्स फर्स्ट थिंग आई थिंक इट इज ऑल पोएट्री।
1: जी बिल्कुल, और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो कविता होती है वो गाने खूब चलते भी हैं, इसीलिए शायद हमें पुराने गाने कंठस्थ होते हैं और नए वाले गाने हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे भी लगते हैं तो भी हम याद नहीं कर
0: बहुत
1: पाते।
0: बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं आजकल गाने को, उनको लगता है हम कोई बड़ी बात बात कह दें, अरे महसूस जिंदगी में किया नहीं से बात करने से थोड़ी होता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ इश्क करना सीख ले नासिक, इल्म से शायरी नहीं आती है, इश्क तो कर।
1: जी बिल्कुल,
0: तो पुराने राइटर्स से जैसे हिंदी फिल्म म्यूजिक राइटर बहुत ग्रेट ग्रेट राइटर्स हैं, लेकिन जो सब वो राइटर्स जिनकी फिल्मोग्राफी बॉडी ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छा भी है परसेंटेज, वो मजरूह सुल्तानपुरी हैं, वो आनंद बख्शी जी हैं, सिंपल राइटिंग है एकदम,
1: जो सबके समझ में
0: देखती हूँ उनकी फेहरिस्त सबसे ज्यादा है ना
1: जी।
0: तो उसका हिंदी फिल्म गाने लिखने का एक जो शऊर है वो सबको नहीं पास नहीं आता।
1: जी जी, तो इस समय आप जो नए दौर के बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनके लिए कुछ कहिए, और हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आपकी फिल्मों के गाने कविता के रूप में आए, क्या आप ये वादा करेंगे, और नए बच्चों के लिए कुछ कहेंगे कि वो नए गानों से, हिंदी गानों से कैसे जुड़े?
0: देखिए कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि मीडियोक्रेटी ज्यादा है, अच्छा काम तो कम ही होता है
1: जी,
0: बुरा काम ही होता है ज्यादा तो, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कोशिश करते रहो बस
1: जी,
0: कोशिश करते रहो, भले ही हम लोगों की संख्या कम हो लेकिन फिर इवेंचुअली हम ही लोग असरदार बनेंगे, तो इसलिए कोशिश करना मत छोड़ो, हार मत मानो कि यार ये गाने चलते नहीं है कौन सुनेगा मेरे गाने, नहीं लिखो वही, इवेंचुअली कुछ ना कुछ मिलेगा।
1: बिल्कुल, आज के दौर में भी इरशाद कामिल, स्वानंद किरकिरे जैसे गीतकार जो कविता रचते हैं अपने गानों में और हम सब पसंद करते हैं।
0: तो ये दिक्कत ये है ना कि हमारे फिल्मों में अब गाने खत्म हो गए।
1: जी
0: प्रॉब्लम ये है, हम क्यों ये सारे जो हम भी गाने सुन रहे हैं पुराने गाने हैं, नया गाना को तो कोई सुनता भी नहीं है
1: जी,
0: और पिक्चरों का जिस तरह से बजट हो गया है, जिस तरह की चीजें होगी, आप गाने आप रख नहीं सकते कि, तो गाने को रिकॉर्ड करने में पैसा खर्चा होता है, फिर उस गाने को पिक्चराइज करने में 3-4 दिन, एक अच्छा गाना हो तो 3-4 दिन तो जाएगा ही जाएगा
1: जी।
0: तो वो बजट में बहुत बड़ा एक पैकेट सा बन जाता है म्यूजिक। तो सबसे पहले सोचा म्यूजिक को हटाओ, बैकग्राउंड में रख दो गाने थोड़ा, यही हो गया है। सिर्फ बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं।

0: आपकी छोटी फिल्मों में तो बैकग्राउंड में कुछ गाना, वो गाना चलते वलते भी नहीं है कुछ
1: जी जी।
0: पहले जमाने में तो जैसे मैं हमेशा कहता था, तो अमिताभ बच्चन की नई पिक्चर भी आती थी कोई मुकद्दर सिकंदर, तो साथ में अमोल पालेकर साहब की भी गोलमाल आती थी, उसके गाने भी अच्छे थे
1: जी जी बिल्कुल। और वो गाने याद किए जाते थे, गुनगुनाए जाते थे। और आज भी जो म्यूजिकल शो होते हैं, चाहे वो अंताक्षरी हो निजी तौर पर या कहीं, तो वहाँ पुराने गाने ही गाए जाते हैं।
0: और देखिए बात ये, उस वक्त के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे वो बड़ी पिक्चर भी करते थे और वो छोटे पिक्चर पर, ये जानते थे कि छोटे पिक्चर का बजट कम होगा। आर डी बर्मन के आप मैक्सिमम गाने जो अच्छे हैं वो छोटी पिक्चरों के, आप उठा के देख लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो गोलमाल, बुड्ढा मिल गया, मासूम, ये सब पिक्चर छोटे बजट की पिक्चर है। फिर उन्होंने बड़ी, रमेश सिप्पी शोले, ये सब किया, लेकिन उनकी जो छोटी जो कम बजट की पिक्चर है, ऋषिकेश मुखर्जी की सारी पिक्चरें बेमिसाल देख लीजिए, कितनी फिल्में देख लीजिए, सब में म्यूजिक उन्हीं का है ना।
1: जी बिल्कुल।
0: छोटी फिल्म है, देख लीजिए आप।
1: तो यहाँ पर जिक्र गानों का है, तो कौन सा गाना आपकी पसंद का हम सुनवाएं?
0: वो गाना बहुत अच्छा लगता है, वो फिर में लोगों कभी इस बात का वादा कर लो, ओपी नैयर साहब का बहुत खूबसूरत गाना।
1: जी जी वो गाना हम सुनवाते हैं, ये रात फिर ना आएगी
0: जी,
1: ये वाला गाना आपको, आपने पसंद किया तो सुनते हैं।

0: विविध भारती के इस जश्न के मौके पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने फिल्मकार तिग्मांशु धूलिया जी को। तिग्मांशु जी, हमें बताइए कि एक फिल्म थी दिल से जिसमें आपने स्क्रीन प्ले किया,
1: डायलॉग्स
0: किए, और एक नाम है जानुसी, आपकी बेटी का नाम है। तो हमें ये पता चला है कि उसमें एक गाना है गुलजार साहब का लिखा हुआ, उस गाने से कहीं इंस्पायर होकर वो लिखा, क्या है कहानी, बताइए ना हमारे श्रोताओं को।
1: उसमें हुआ ये कि दिल से का जब म्यूज़िक रिलीज़ हुआ तो उस पार्टी में सब लोग जो फिल्म से जुड़े हुए लोग होते हैं सबको बुलाया जाता है, जो होते हैं
0: तो अजनबी गाना,
1: हाँ, तो उसमें सीडी मिला। पिक्चर अभी के गाने पब्लिक में रिलीज नहीं हुए थे
0: जी,
1: तो मैं उसका सीडी, अब जवान सी मेरी बिटिया पैदा हो चुकी थी, उसका नाम भी रख हुए थे, उसका नाम रखा गया था श्रेयसी। तो
0: आपकी वाइफ ने रखा था?
1: हाँ, घर वालों ने भी मिलके, मदर ने भी सब सब करके कि श्रेयसी, मेरी मदर क्योंकि संस्कृत की हैं वो, तो नामों को लेके उनका
0: जी जी,
1: हमारी फैमिली में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अब ये हुआ कि मैं घर में वो सीडी लेके आया, उसमें गाना शुरू हुआ, वो छैया छैया के बाद ये, और फिर ये जब गाना शुरू आया अजनबी तू भी, तो उसमें हम लोग सुन रहे थे, गाने तो कमाल थे दिल से के, खैर आज भी झटका दे देते हैं हर एक गाना उसका, तो उसमें वो जानसी
0: क्या बात है,
1: और वे तुलका लेकर रुको, जानसी वर्ड, बेटिया का नाम जानसी, मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहता हूँ एक्चुअली बेटी बेटी का नाम गुलजार साहब ने रखा है।
0: क्या बात है, तो जानसी का असल में अर्थ क्या है?
1: जान जैसी सिंपल
0: जी। तो ये तो बिटिया की कहानी हो गई, और बिटिया भी फिल्मी दुनिया में आ चुकी है और आपकी तरह ही धमाके कर रही है, तो
1: अभी अभी जी अभी तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: आपको असिस्ट कर रही है?
1: हाँ।
0: ओ,
1: तो उसने 4 साल का कोर्स किया फिल्म मेकिंग का, और उसके बाद जैसे होते हैं बच्चे पहले शॉर्ट फिल्म बनाना है पापा ये सब जैसे भी कब करते हैं वो करते रहते हैं, फिर मैंने कहा थोड़ा रियल फिल्म मेकिंग में आ जाओ। तो वो मेरे साथ है अभी
0: जी। कौन सी फिल्म बना रही है
1: अभी? तो मैं बना रहा हूँ, तो मुझको असिस्ट कर रही है।
0: अच्छा,
1: तो बनाएगी
0: जी। तो उसने भी ट्रेनिंग ली बाकायदा?
1: जी, मैंने कहा ना 4 साल की, उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया।
0: जी। तिग्मांशु जी, आपकी बहुत सारी फिल्मों में जिमी शेरगिल रहे हैं, और तो जिमी शेरगिल, हालांकि अगर शायद वो देश से बाहर हैं, परदेश में हैं, नहीं तो आज आपके साथ वो यहाँ माइक के सामने होते और हमें लगता है कि और ज़्यादा हमें रोचकता बढ़ जाती। तो उनके बारे में कुछ बताइए, कुछ ख़ास बात बताइए।
1: जिमी से ये था कि मुलाकात, जब पहली फिल्म की मैं कास्टिंग कर रहा था तो मैं उसमें जिमी से मिला, उसको चाहिए था उस जैसा जैसा है जिमी, बड़ा शरीफ लड़का, मेरा किरदार भी बहुत बहुत ही शरीफ सा था,
0: सलोने से दिखते भी हैं,
1: क्योंकि उसमें कैरेक्टर का वो था दिखाना था कि किस तरह से एक सीधा साधा लड़का जो पढ़ाई में है और थिएटर भी करता है, किस तरह से एक उसकी सोहबत ख़राब हो जाती है, गुंडे के साथ वो रहने लगता है और उसका कैरेक्टर बदलता है, फिर इवेंचुअली फिर वो संभलता है। तो मुझको चाहिए था कि उस तरह का एक अच्छा शरीफ बच्चा। तो जिमी के, और ये बात मैं आपको 2026 साल पुरानी बता रहा हूँ,
0: तो जी बताइए बिल्कुल।
1: हाँ, तो उस वक्त हम लोग भी सब यंग थे और जिमी तो और भी शरीफ लगता था तब। तो ये हुआ, और फिर ये क्या हुआ भाई, जैसे याराना दोस्ती बढ़ गई, मिलना जुलना, तो फिर इतनी सारी फिल्में की हमने साथ में।
0: जी जी। और आपकी एक फिल्म है बुलेट राजा
1: जी,
0: उसके बारे में जरा बताइए, उसकी क्या कहानी, कहाँ से आपके मन में आइडिया आया बनाने का?
1: और आया तो वो यूपी के कुछ गैंगस्टर्स हैं, उनके उसमें से एक गैंगस्टर की कहानी से मैं थोड़ा उससे, उसके कारनामों से आप थोड़ा
0: इंस्पायर हुए।
1: इंस्पायर

0: वो कारनामे में विचलित भी कर देते थे आपको सुन करके, और ये भी करते, लेकिन कितना इसमें हिम्मत कहाँ से आ गई सब करने की, है ना?
1: तो समाज के सामने सच्चाइयां लाना
0: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, समाज के सामने समाज से मैं सच्चाई है तो अखबार पढ़ के समझ में आ जाती है, मुझको अखबार थोड़ी बनानी, फिल्म बनानी, एंटरटेनिंग होनी चाहिए वो। तो मैं उस तरह का बदलाव बदलाव वाला परचम लेके नहीं चलता हूँ, मेरी फिल्मों में दिख जाता है कहीं ना कहीं, और वही काम है फिल्म का।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: सच्चाई यथार्थ के
0: मतलब
1: करीब।
0: हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ। तो उस एक किरदार को मैंने दो में स्प्लिट कर दिया, तो एक बन गए हमारे सैफ साहब, सैफ अली खान, और दूसरा बन गए जिमी शेरगिल। क्योंकि मुझे दोस्तों की, मुझे दोस्ती बहुत प्यारी, एक ये रिश्ता होता है ना दोस्ती का,
1: जी बिल्कुल।
0: तो हासिल में डायलॉग भी, बाकी रिश्ते तो बने बनाए मिलते हैं, दोस्ती के ऐसा रिश्ता है जो आदमी खुद बनाता है।
1: बिल्कुल
0: आपके चाचा ताऊ मम्मी पापा तो मिले हैं, आपने क्या किया उनको कर, लेकिन दोस्त आप खुद बनाते हैं। तो
1: जी
0: आपका जो एक वो मोरालिटी का और गुड और बैड का जो सेंस आपके अंदर है, जो इनबॉर्न है, वो आपको उस दोस्तों को उस तराजू पे खरा तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, ये आपका खुद का अचीवमेंट है।
1: जी
0: तो इसलिए मैंने दो, मुझे दोस्त दोस्त का रिश्ता बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बुलेट राजा में ये दोस्त दो दोस्त रखे।
1: जी और इसी फिल्म में गुलशन ग्रोवर भी
0: हाँ,
1: थे
0: बाकी
1: और
0: उसमें और
1: सैफ
0: भी
1: अली
0: कैरेक्टर्स
1: खान,
0: हैं। जी।
1: तो सैफ अली खान और गुलशन ग्रोवर से जुड़ी हुई जब आप शूट कर रहे थे तो कुछ खास बात बताना चाहेंगे?
0: अब उनके बारे में, उन्होंने तो इतनी फिल्में की हैं, सब लोगों ने, तो सैफ के साथ दोबारा मैंने कभी काम नहीं किया, ना ही गुलशन जी के साथ काम किया। मिलते हैं तो मतलब मैंने सैफ के साथ किया एक्टिंग की, मैं एक बड़ा वो बैन शायद भी हो गया था, एक शो था तांडव, जिसमें कुछ उन्होंने कुछ गलत गलत चीज़ें दिखा दी, उसके वजह से उसमें सैफ था। मैं शुरू के दो एपिसोड में था, पहले मैं तो मर जाता हूँ, बाकी दो एपिसोड मेरी मतलब बतौर लाश में पड़ा हूँ। तो उसमें सैफ का मैं फादर बना था,
1: जी
0: प्राइम
1: जी
0: मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऐसे दिखाया था।
1: जी
0: तो
1: जी
0: बस वो काम हमने साथ में किया, उसके बाद हमने कभी साथ में काम किया नहीं।
1: यहाँ अब गानों का फिर से जिक्र करते हैं और
0: जी।
1: बताइए आपको पुराने गाने ज़्यादा पसंद है, हालांकि नए दौर के एक कामयाब डायरेक्टर पसंद करते हैं ज़्यादातर पुराने गाने, तो यहाँ पर कोई गाना आप सुनवाना चाहेंगे?
0: आप वो दिल तो है दिल,
1: मुकद्दर का सिकंदर।
0: मुकद्दर का वो कलानजी आनंद जी का, ये भी बड़ा यूनिक सॉन्ग है,
1: जी
0: बहुत बहुत खूबसूरत गाना है।
1: आप चाहें तो इस गाने में सुर मिला सकते
0: हाँ
1: हैं,
0: नहीं,
1: आपने कई
0: अरे
1: बार
0: लता जी गा रही, मैं कहा सुन ला।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: तिग्मांशु जी विविध भारती के सजीव प्रसारण में हमारे सामने बैठे हैं और आज विविध भारती का जश्न हम मना रहे हैं, 70वां स्थापना दिवस है ये। और तिग्मांशु जी, आपने छोटे पर्दे के लिए भी बहुत काम किया है, लिखा भी है, और एक्टिंग, आप कहते हैं कि एक्टिंग नहीं करना चाहते हैं लेकिन एक्टिंग भी की है, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा दोनों आपको कौन सा ज़्यादा आकर्षित करता है?
1: नहीं, हमेशा से बड़ा पर्दा ही आकर्षित किया है। वो तो छोटा पर्दे पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज घर भी चलाना था तो, और उस जब भी, लेकिन हमने, मैंने जब टीवी किया और मेरे साथ के जितने भी और हमारी क्लास के जितने डायरेक्टर हैं मेरी कक्षा के, जो हम लोग हम उम्र हैं सब थोड़े थोड़े, तो सब ने टीवी किया है। बट उस वक्त टेलीविजन अच्छा होता था, भले हफ्ते में एक एपिसोड आता था, आप उसको बनाते थे आराम से 3-4 दिन में एक एपिसोड। अब उसके बाद वो डेली सोप हो गया, एक दिन में आधे दिन में बनाइए, तो उसकी क्वालिटी गिरती चली गई। बट एक्चुअली वो शायद उस तरह के टेलीविजन की डिमांड थी। तो हमने जब टीवी कर रहे थे तो अच्छा टीवी होता था, उसके बाद फिर जाना तो फिल्मों की ही तरफ था।
0: जी जी, तो आप अपने वाले दूरदर्शन की बात कीजिए, जब इलाहाबाद में रह रहे थे या उत्तराखंड में रह रहे थे तो दूरदर्शन, एक दूरदर्शन के जो कार्यक्रम होते थे, जो धारावाहिक होते थे, वो आज भी हम सबको याद हैं, तो वो कुछ यादें आप ताज़ा कीजिए।
1: बहुत सारे थे, कितने थे, मतलब बाप रे, श्याम बेनेगल जी का आता था के, फिर भारत एक खो जाता था,
0: फिल्मों का इंतजार होता था,
1: फिल्मों का हर संडे को इंतजार होता था, इलेक्शन होते थे, हम लोग छोटे थे, हम इलेक्शन से हमको लेना देना नहीं, इलेक्शन के टाइम पे फिल्में खूब दिखाई जाती थी, दिन में 3-3, 4-4 पिक्चर है, तो उसका हम लोग घर में बड़े लोगों को चुनाव के नतीजे पे थे, हम लोग को था कि पिक्चर कौन सी दिखी जाए, तो तब तो बहुत अच्छा टीवी था, बहुत ही खूबसूरत था।
0: जी जी, तो पढ़ाई जब आप करते थे तो घर वाले कहते थे, रोकते थे, मतलब कोई ऐसी फिल्म देख रहे हैं कि क्यों देख रहे हो फिल्म, पढ़ नहीं रहे हो, ऐसी कोई याद?
1: इलाहाबाद में टीवी ना बहुत बाद में आया,
0: एशियाड जब शुरू हुआ था
1: तब आया था, 82 में।
0: जी,
1: तो और जब आया था तो सबके घरों में टीवी होता भी नहीं था, धीरे धीरे आने लगा लोगों के, तो जब तक टीवी आया तब तक हम लोग के घर वालों के हाथ के बाहर हो चुके थे बड़े हो गए थे थोड़े तो, लेकिन उतना टीवी के सामने मैंने, छोटे छोटे जब होते तब बहुत गुजारा है, लेकिन उसके बाद नहीं था। आउटडोर एक्टिविटी हम लोग ज्यादा, जैसे मैंने कहा थिएटर करते थे, तो कहीं बजाना है या फंक्शन में इधर उधर, तो घर के बाहर ही ज्यादा रहते थे, तो टीवी देखना इतना होता नहीं था।
0: थिएटर के लिए जब आपने शुरुआत की, मतलब थिएटर की ओर गए, एनएसडी किया, तो घर वाले आपके इतने सब पढ़े लिखे, माँ प्रोफेसर, पिताजी जज, तो कहा नहीं कि कहाँ जा रहे हो फिल्मी दुनिया में? अमूमन ये सुना है कि डायरेक्टर, मतलब इस दुनिया में जो आना चाहते हैं उन्हें कहा जाता है पढ़ो लिखो कुछ बनो, इस दुनिया में मत जाओ, तो आप
1: कभी कभी नहीं मना किया, कभी नहीं, इनफैक्ट हमेशा प्रोत्साहित ही किया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मेरे मदर फादर दोनों फिल्में खूब, खुद भी बहुत फिल्में देखते थे, और शायद मैंने छोटा, सबसे छोटा होने का मुझे, मैंने उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया, तो मुझे डांटा भी कम जाता था,
0: दुलारे बेटे थे,
1: हाँ दुलारा बेटा था जैसे मैंने, बड़े भाइयों में 7-8 साल का डिफरेंस था, तो जो भी

0: होता था उनके साथ होता था, मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो जब तक मैं एनएसडी में गया तब तक तो माय फादर हैड पास्ड अवे, गुजर गए थे, लेकिन मदर ने हमेशा पूछा जाओ।
1: तो मुंबई आए शुरुआत में, तो मुंबई की शुरुआती संघर्ष किस तरह के थे?
0: मेरा मैंने देखिए मेरे मैंने बिल्कुल कोई संघर्ष संघर्ष नहीं किया। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने वड़ा पाव खाया है और लोकल ट्रेन में चढ़ा हूँ और चढ़ा हूँ, लेकिन ऐसे कुछ
1: तकलीफों से नहीं गुजरा।
0: बिल्कुल नहीं, मैं बहुत इस मामले में अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि घर वाला, मेरे भाई, मेरे मदर फादर मुझको ऐसे मिले जिन्होंने मुझको इस तरह की लाइन में भी पहले तो इनकरेज किया कि म्यूजिक बजाओ, करो थिएटर, कभी नहीं रोका। उसके बाद ड्रामा स्कूल गया था, मदर ने भी कभी नहीं रोका कि जाओ। मेरा पहले अटैम्प्ट में ही हो गया था, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया ड्रामा स्कूल में
1: जी।
0: तो और उसके बाद मैं दिल्ली में रहकर मैं फिल्में कर रहा था उस वक्त, होता नहीं था। फिर बैंडेड क्वीन भी तो शेखर जी के साथ में मुंबई आ गया था, जो मुंबई आया तो मैं ऑलरेडी शेखर कपूर का असिस्टेंट था, तो मुझे कुछ स्ट्रगल करने की जरूरत, पैसा नहीं मिलता था वहाँ, लेकिन कहने को होता था कि आप शेखर कपूर के असिस्टेंट हैं, तो उनका नाम सब जानते थे, रिश्तेदार भी सब जानते थे, अच्छा शेखर कपूर, बाकी डायरेक्टर को नाम तो लोगों ने सुने नहीं थे, कि शेखर कपूर का नाम सब जानते थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि वो डिग्जाम के मॉडल भी हुआ करते थे, तो लोगों को पता उनके असिस्टेंट और ठीक है
1: जी।
0: तो ऐसे करते करते मैं काम करने लगा। मैं जब जहाँ आया तो पहले मैं साल भर अपने बड़े भाई साहब के यहाँ रहा, वो नेवी में थे, ये जब इधर INS हमला जाते हैं
1: जी जी
0: वहाँ रहते थे, तो मैं साल भर उनके साथ था, तो कोई दिक्कत नहीं, नेवी में आप हैं, बढ़िया सा कमरा है, तब नेवल फैसिलिटी, नो प्रॉब्लम।
1: तो हमारे जो युवा श्रोता हैं जो फिल्मी दुनिया में आना चाहते हैं, उन्हें कुछ कहिए कि क्या हो तो मुंबई आए स्ट्रगल करने के लिए, और क्या ना हो तो ना आए।
0: ये मैंने कल ही कुछ बच्चों को ये बोला कि जिंदगी में इस बात का एहसास अगर हो जाए कि मैं कर पाऊंगा कि हो पाएगा मुझसे कि नहीं हो पाएगा,
1: बिल्कुल,
0: इसका एहसास आपको अगर हो गया ना, वो सबसे बड़ी चीज है। तब तो आपको लगे कि बॉस मैं कर पाऊंगा, तब तो आगे बढ़ो, लेकिन कहीं भी लग रहा है कि नहीं कर सकता तो एकदम पीछे मुड़ जाओ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप डर के भाग गए, आप रणछोड़ नहीं कहलाओगे, आपने अच्छा करेक्ट डिसीजन। मैंने जब NSD में मैं थर्ड सेकेंड ईयर में था, मुझको पता चल गया था मैं बहुत बुरा एक्टर हूँ, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, और मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा डिसीजन था
1: जी जी।
0: नहीं तो मैं एक्टिंग करके आता तो मुझको बालाजी के एक आध सीरियल में कुछ एक आध रोल वोल करके जिंदगी खत्म हो जाती
1: जी, बिल्कुल। और आप तो हमें आपकी इतनी सारी फिल्में कैसे मिलती, तो और आपकी एक फिल्म है साहब बीबी और गैंगस्टर, जिसका जिक्र श्रोता भी बार बार कर रहे हैं और हमने भी किया, उसका एक गाना है जो हम श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं, उस गाने से जुड़ी हुई कोई बात बताइए, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई, किस तरह से रिकॉर्ड हुआ गाना?
0: पार्ट टू का गाना है, जाती इसको पीयूष भाई ने गाया, पीयूष मिश्रा जी ने बहुत खूबसूरत गाया है, और छोटा संदीप ने इसको कंपोज किया है, लेकिन कंपोज करते हुए ये ध्यान में रखते हुए कि ये, और संदीप नाथ एक बहुत अच्छे लिरिक राइटर है, इलाहाबाद से भी उनका कनेक्शन है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बढ़ावा से कई गाने, पान सिंह तोमर के भी गाने लिखे संदीप नाथ ने, तो ये सोच के कि ये भाई गाना जो है गाएंगे पीयूष भाई, तो उसी तरह से गाने का मीटर रूटर की जो उनको जो उनके इमेज के साथ जाता है, लोग पीयूष भाई को ऑन स्क्रीन भी देखा है लोगों ने, तो आप सुनाइए गाना, बड़ा बहुत बहुत मजेदार और बहुत बढ़िया गाना है, इसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं
1: जी, सुनते हैं ये गाना।
2: छल कपट प्रपंच है हर स्वार्थ का।

0: आप भी राजा हैं और हम भी, मगर आपका खून आलसी हो चुका है, हमारा नहीं।
1: तनी हुई हर बात है बनी हुई।

सकते हो ना कि जंग हो होगी कम आसान होगी आपकी कसम।

0: तो ये गाना हमने सुनवाया तिग्मांशु जी आपकी फिल्म का गाना, और आपकी ओर से हमने नज़र किया। और हमारे एक श्रोता ने पूछा है आपसे कि आप जो लीक से हटकर फिल्में बनाते हैं, तो क्या आगे भी हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बनती रहेंगी आप द्वारा या अन्य फिल्म मेकर्स के द्वारा भी?
1: मैं ऐसी कोई बहुत लीक से हट के नहीं बनाता हूँ। अगर आप मेरी फिल्मों की पूरी मतलब मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखिएगा तो मैं बहुत ही एक कमर्शियल एक जो चलने वाली फिल्में होती है ना उसी गली की फिल्म बनाता हूँ।
0: जी।
1: कहने का थोड़ा अंदाज मेरा फर्क है सिर्फ, जिसको बोलते हैं एस्थेटिक्स, वो मेरा बाकियों से फर्क है। बाकी
0: जी।
1: मैं कोई लीक मैं लीक से बिल्कुल हटना भी नहीं चाहता। मेरे लिए फिल्म फर्स्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हैज टू बी एंटरटेनिंग।
0: जी।
1: वो कोई बोरिंग स्लो पेस्ट वो सब चीज़ें मुझे मैं नहीं देखता भी नहीं, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। मैं कभी बनाऊंगा मैं
0: जी।
1: तो वो एस्थेटिक्स जो है वो ओवर द इयर्स, एक तो आपके खुद की जिंदगी का एक्सपीरियंस से आता है, और फिर एक होता है आपका एक्वायर्ड विजडम, जिससे मैं आपसे मिलूंगा, आपकी आपने कोई बात कही मुझसे, मैंने आपसे बात, मुझे लगा कि आप अच्छी बात कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी नए आदमी से मिलके, कोई फिल्म देख के, कोई नॉवल पढ़ के, आपकी जो एक्वायर्ड विजडम है वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। एक्सपीरियंस तो जिंदगी में एक बार आके फिर टिक जाता है, फिर जब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते
0: जी, बिल्कुल।
1: आप एक सेट लाइफ में जीने लगते हो, फिर आप बहुत कभी कभी एक्सपीरियंस करते हो, लेकिन जो एक्वायर्ड विजडम है जो आपको बाहर चीजों से मिलती है उसका जो स्रोत है वो कभी कम नहीं होना चाहिए।
0: जी
1: वही आपके सारी कला, आप किस तरह से कहानी कहना चाहते हैं, सबके पीछे वही है।
0: जी बिल्कुल।
1: तो जो एक्सपीरियंस करते रहेंगे वो फिल्म बनाते रहेंगे, जिन्होंने एक्सपीरियंस करना छोड़ दिया कि मैं हो गया बॉस गॉडफादर, अब तो मेरे बराबर कोई है नहीं, उसका पतन निश्चित है।
0: जी बिल्कुल। 2026 की फिल्म है घमासान आपकी फिल्म,
1: जी जी
0: तो उसमें कौन सा ऐसा प्रसंग है शूटिंग में जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा या कठिन रहा, या इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई बात हमारे श्रोताओं को बताइए?
1: कठिन तो कुछ नहीं होता,
0: आपके लिए तो बिल्कुल
1: नहीं नहीं ऐसी बात
0: नहीं।
1: नहीं है। अब जो काम आप कर रहे हैं आपने किया, आपको मालूम है कैसा होना है। वहां पे कठिनाई होती है अगर आप ऐसी जगह पे, जैसे हमने वो घमासान की शूटिंग हमने की चित्रकूट के एरिया में, जहाँ पे रामचंद्र जी ने 14 साल पे 11.5 साल अपने वनवास का वहां बिताया,
0: जी
1: और ये पूरा जो बुंदेलखंड का इलाका, बांदा वाला, रीवा, सतना, मध्य प्रदेश, यूपी, इलाहाबाद के भी बहुत नजदीकी है।
0: जी।
1: तो वहां पे एक बार जंगल में हम लोग शूटिंग कर रहे थे, सड़क बहुत दूर नहीं थी, वहां पे पुलिस भी थी हमारे साथ, तो बैठे रहते थे अपने जीप में, तो शूट कर रहे थे हम लोग। सडनली मैं आगे और लोकेशन देखते हैं जंगल में, थोड़ा सा एक दो असिस्टेंट के साथ बढ़ गया आगे, जहाँ के मैंने देखा कि एक पेड़ से एक मोटे सा नायलॉन का जो तार, ऐसे रस्सी होती है, वो ऐसे लटकी हुई थी, नीचे कुछ टूटी पट्टी चप्पल दो पड़ी हुई थी, और उस नायलॉन के तार से कुछ फटे फूटे कपड़े ऐसे लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि आदमी था यहाँ, या तो खा गए जंगली जानवर, ये क्या हुआ, सबमडी, या तो मार के लटकाया गया है या खुदकुशी की है किसी ने। और देख के मैं सन्न रह गया, मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था कि आदमी लटका होगा, उसको जंगली जानवर खा गए होंगे, आई डोंट नो क्या हुआ था, लेकिन बाकी उसका सब कुछ पड़ा था, चप्पल वहीं नीचे थी, कपड़े स्ट्रिंग्स लटके हुए थे, और क्योंकि नायलॉन की थी वो टूटी भी नहीं थी, पक्की सी थी। अरे देख के ऐसे दहशत हो गई सबको कि ये क्या देख रहे हैं हम। तो उसका ये एक्सपीरियंस था। फिर हमने वहाँ देखा, वहाँ पे एक स्पॉटेड डियर था, बड़ा सा मेल, उसको जंगली कुत्तों ने दौड़ा के हमारी आंखों के सामने मारा जंगल में।
0: बाप रे।
1: तो ये सब चीजें, हाँ, थोड़ा एक्साइटिंग हो जाती है फिल्म मेकिंग, तो मजा आ जाता है आपको।
0: जी। डर डरावना भी लगता है लेकिन रोमांचक भी होता है। तो यहाँ क्या घमासान फिल्म का ही गाना सुनवाए?
1: जी सुनाइए, धाएं धाएं
0: सुनते हैं।

0: तिग्मांशु जी, ये घमासान फिल्म का गाना था और काफी चर्चित है इन दिनों, ये गाना भी खूब बज रहा है और वायरल भी हो रहा है, जिसे हम वायरल कहना कहते हैं इंस्टा और फेसबुक के युग में। अरशद वारसी हैं इसमें और प्रतीक गांधी हैं, इनसे जुड़ी हुई कोई खास बात बताना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
1: नहीं, इस फिल्म के बारे में तो मैंने बताया, मैंने कि वहां पे एक लटका हुआ आदमी के मतलब अस्थि पंजर दिखाई
0: तो अब हमें बताइए कि एक लेखक और निर्देशक पढ़ता भी बहुत है और पढ़ना आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, जानकारी भी देता है। तिग्मांशु धूलिया जी क्या पढ़ते हैं अपनी फिल्मों के नज़रिए से कि एक अच्छी फिल्म दें दर्शकों?
1: मैं फिक्शन ऑलमोस्ट नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं और चीज़ें पढ़ता हूँ, मतलब बायोग्राफीज और एंथ्रोपोलॉजिकल वर्क या पॉलिटिक्स पे किसी ने या जियो पॉलिटिक्स पे किताबें, इस पे मैं ज़्यादा इन चीज़ों को पढ़ता हूँ। फिल्मों पे कुछ का किसी ने कुछ अच्छा नई किताब है कुछ अच्छी लिखी तो पढ़ता हूँ, लेकिन फिक्शन मैं उस तरह से नहीं पढ़ता हूँ, मुझे थोड़ा बोरिंग से लगता है फिक्शन बहुत
0: तो जी।
1: मैं और तीन तीन चार चार किताबें एक साथ पढ़ता हूँ, मैं किसी का एक चैप्टर किसी का दूसरा चैप्टर ऐसे पढ़ता हूँ मैं। हाँ,
0: और अब बताइए कि चलते चलते हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश दीजिए और आपकी आने वाली फिल्म, आने वाला प्रोजेक्ट क्या है?
1: आने वाला प्रोजेक्ट, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस जो कि आपको तो पता ही होगा, उदय प्रकाश जी जो हिंदी के बहुत महान लेखक हैं, उनकी एक कहानी है दिल्ली की दीवार, उसको मैंने अडेप्ट किया है। उसका नाम है वो फिर कभी दिखा नहीं।
0: क्या बात है।
1: और उसको बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब वही है, जब भी आप कुछ नया अलग तरह का काम करने की कोशिश करते हैं तो आपके सामने बहुत सारी अड़चनें आती है, तो उन अड़चनों का सामना करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपनी फिल्म शुरू कर दूँ।
0: जी जी। और अब हम हमारे श्रोताओं के लिए कुछ पैगाम दीजिए।
1: जो मैं क्या पैगाम दूंगा, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ को पैगाम दूँ। सब लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अपने संघर्षों से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर मैं उनको पैगाम दूंगा, जीते चलो, जिंदाबाद रहो, देश को आगे बढ़ाओ, सब लोग मिल के इस खूबसूरत दिन में, आज विविध भारती के 70 ईयर्स पूरे हुए हैं
0: जी,
1: उसको याद करते हुए विविध भारती के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहें ज़िंदगी में।
0: जी, आपकी पसंद का ये आखिरी गाने की झलक।

0: ये श्रोताओं से भी ये कहना है, तिग्मांशु जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और ये 1.5 घंटे कैसे बीत गए हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे श्रोता भी यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। आप फिर आइए, वादा कीजिए कि विविध भारती के स्टूडियो में आप फिर आएंगे और आज के इस जश्न में आप शामिल हुए। पूरे विविध भारती परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। मैं ज़रूर आऊँगा, जल्दी मिलेंगे
0: जी। शुक्रिया।

0: Lights, sound, camera, action.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la.
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आइए सुनते हैं तीसरा और अंतिम भाग।
1: सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं।
2: मुझे लगता है कि अब सुषमा श्रेष्ठ के उस दौर से निकलकर मैं पूर्णिमा जी से बात करने अब आना चाहती हूँ, है ना?
3: तो स्वागत है आपका।
2: बिल्कुल, मुझे अब अपने आप को ये देखना है कि मेरे सामने पूर्णिमा बैठी है जो एक इस तरह के गाने जिन्होंने गाए हैं और हमें नचा दिया है। तो सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने का ये सफर क्या था, कैसा था और क्यों था?
3: देखिए, सुषमा श्रेष्ठ एक बाल गायिका के बतौर एक बाल गायिका ही जानी जाती थी। पता है मंदाकिनी जी, मैंने जब वो गाना गाया था ना, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, तब मैं 18-20 के बीच, मुझे याद नहीं आ रहा है वो, लेकिन चोपड़ा साहब की जिद थी कि नहीं, मुझे तो सुषमा ही चाहिए। रविंद्र जैन जी ने बुलाया था,
2: तो जब तक थोड़ा पूर्णिमा में कन्वर्ट
3: नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि ट्रांसमिशन हुआ क्यों। मुझे इतना ऑड लगता था ना मंदाकिनी जी, मुझे बहुत अटपटा सा लग रहा था कि क्या है ये, मम्मी को अंदर बुलाना चाहिए, इतनी बड़ी मैं ना, बहुत ऑड लग रहा था मुझे, तो इसका कुछ तो करना चाहिए, पर क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि हमारी, हमारे परिवार में, हमारा जो घर, जिस जिन संस्कारों से मैं बड़ी हुई, हम बिल्कुल ना वैसे फिल्मी नहीं है, बहुत सीधे साधे लोग हैं हम, मिडिल क्लास, और मुझे गर्व है इस बात
2: जी।
3: अभी भी मैं मिडिल क्लास ही हूँ, वो दादर का घर ही मुझे पसंद आता है, शिवाजी पार्क। खैर, तो इसके बाद 10 साल का एक बहुत लंबा एक गैप पाया, क्योंकि ना मैं बच्चों में मेरी गिनती हो रही थी ना बड़ों,
2: और ये दौर बड़ा मुश्किल होता है कलाकार के लिए,
3: बहुत मुश्किल। फिर शादी भी हो गई, मेरा बेटा पैदा हुआ बड़ा, उसके बाद मेरा एक दौर जिंगल्स का शुरू हुआ, रेडियो स्पॉट्स, है ना, नाथन अंकल हुआ करते थे, वैद्यनाथन जी, जो फिर डैडी के बहुत अच्छे दोस्त, वो मुझे बुलाने लगे। करते करते फिर दिन में 5-6 जिंगल्स, 6-7 जिंगल्स, मैं जिंगल क्वीन, मैं, कविता दीदी, हम मिलकर कुछ वो गाती थी, कुछ मैं। करते करते वक्त बीतता गया, फिर एक दौर आया, आपको अगर याद होगा, कवर वर्जन्स का।
2: जी बिल्कुल,
3: है ना,
2: बिल्कुल,
3: कवर वर्जन्स गाने लगी। तो जब पहला कवर वर्जन का की रिकॉर्डिंग तो खत्म हो गई, वो गणपति के भजन से, पर पता कैसे थे, ये सिंधी जो कम्युनिटी है ना, वो तो सालों से, मुझे लगता पीढ़ियों से, उनके यहाँ पे ये चलन है कि वो लोग फिल्मी गानों पर ही, ये जैसे मेरे स्कूल में एक लड़की थी जब मैं 8वीं 9वीं में थी, वो भी सिंधी थी, तब वो गाना चला था झुमका गिरा रे, तो वो मुझे सुनाती थी कि हम लोग जा रहे हैं वो बाबा जी का जो लंगर होता था उनका, तो मैं भी गाऊंगी। कौन सा गाएगी तू, मैं पूछ, अरे वो रे झुमका गिरा रे ना, उस पर ही, सतगुरु आए हैं हम लोगों को समझाने, सतगुरु। तो ये तो उनका

0: चला था कि अरे ये तो सुषमा श्रेष्ठा है जो पूर्णिमा के नाम से गाती हैं। तो बाल गायिका से व्यस्क गायिका के रूप में खुद को दोबारा स्थापित करने में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने क्या थी?
1: अपनी एक जगह बनाना, क्योंकि मैं जब आई मंदाकिनी जी तब मुझसे पहले 4-5 सिंगर्स एस्टेब्लिश्ड हो चुकी थी। अनुराधा दीदी, कविता दीदी, अलका, साधना
0: सलगम जी।
1: तो मुझे अपनी एक पहचान बनानी,
0: बिल्कुल।
1: तब मैंने कहा ना, वो बचपन से ही वो खेला कर रहा था मेरे दिमाग में, और मैंने सोचा, बहुत स्ट्रैटेजिक एक मूव था ये, एक ऐसे नहीं है कि पर चांस हो गया। मैंने सोचा कि आशा जी के गाने तो मैं गाती ही हूँ, तो आशा जी, शमशाद बेगम जी और गीता दत्त जी को, उनकी तीनों की स्टाइल्स को मिलाकर मैंने कोशिश की कि मैं अपनी एक स्टाइल बनाऊं। एक हद तक मैं कामयाब रही उस।
0: बहुत हद तक तो। आप कामयाब रही। एक हद तक नहीं, आपने कहा ना कि जो बचपन में आपने एक गाना गाया था, उस टोन को आपने ध्यान रखकर अपनी उस आवाज को बनाए रखा
1: जी।
0: जो तुतु तु तु तु तारा में हमें दिखाई दी थी, है ना?
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और उसके बाद आपके हर गाने में लगभग वो एक गले की एक अलग सी आती है, जैसे मैं क्या कहूँ, और वो बहुत अट्रैक्ट करती है कि ये पूर्णिमा जी है, ये पूर्णिमा है।
1: ये बात मैं, मुझे सुनकर आज बहुत अच्छा लगा। मंदाकिनी जी, ये अबू साहब ने, मेरे उस्ताद ने सिखाया था कि आप कितने भी मतलब रागधारी सीख कर आओ, कुछ भी करो, 10 आवाजों में वो एक आवाज जिसे आप पहचान सको कि ये फला की आवाज है, वो आवाज जो पहचान जाता है आपकी श्रोता, आपके श्रोता
0: जो भी
1: उस आवाज को पहचान ले, तो आप समझ लो कि आप कामयाब
0: सफल हो गए हैं।
1: तो हाँ, इसमें मैं कहूंगी कि मैं कामयाब रही
0: हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल,
1: क्योंकि मेरी आवाज कहीं भी पहचानने में आ जाती है।
0: एक जो गले में एक अलग रेंज आपकी आती है उन गानों को गाने में, वो पूर्णिमा ही गा सकती है, वो पूर्णिमा ही गा सकती है।
1: ये बात मैं मानती हूँ, नहीं तो कुदरत मुझे माफ नहीं करेगा।
0: बिल्कुल। तो एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जो मीठी आवाज से लेकर 90 के दशक के कमर्शियल ट्रैक तक आपकी आवाज के टेक्सचर में जो बदलाव आया था, उसे आपने कैसे साधा था, ये थोड़ा हम जानना चाहेंगे।
1: टेक्सचर एज इन आपको मतलब एक बाल गायिका से मैच्योर सिंगर?
0: हाँ।
1: मंदाकिनी जी, मुझे लगता है मेरी आवाज कभी मैच्योर हुई ही नहीं, और शायद वो ही मेरा एक यूएसपी है
0: जी। लेकिन वो कमर्शलाइज होती थोड़ा सा,
1: हाँ,
0: एक अलग तरह से मोल्ड हो गई।
1: मैं कहूंगी आवाज में एक गहरापन तो नहीं बोलूंगी, एक ब्रॉडनेस आई। यस,
0: चुलबुलापन जो आवाज,
1: हाँ,
0: है
1: वो एक वक्त के साथ आता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा चुलबुलापन तो पहले भी था, लेकिन पहले क्या संकोच करती थी, संकोच बहुत करती थी, क्योंकि बड़े दिग्गजों के साथ काम किया, ये तो एहसास था कि भाई ये कौन है। हालांकि ये एहसास नहीं था शायद कि ये कौन है, ये नहीं था, पर ये नहीं,
0: वो
1: ये
0: बाल,
1: कुछ है,
0: बाल मन था,
1: है ना? लेकिन जहां तक आप अगर मेरे वॉइस का अदरवाइज टेक्सचर की बात करेंगे, तो अभी अभी भी मैंने एक गाना गाया है एक मराठी फिल्म के लिए
0: जी, जी।
1: उत्तम सिंह जी, उत्तम भैया का म्यूजिक है उसमें, कब्बशी फिल्म का नाम है। तो मुझे मुझे गर्व ही होता है इस बात का कि मुझे कॉल कर कर के लोग ये कहते हैं कि तुम तो अभी भी 30 साल की तुम्हारी आवाज लगती
0: जी।
1: तो टेक्सचर ऐसा सच नहीं बदला, हाँ, लेकिन क्या होता है, उम्र के साथ हमारा शरीर जैसे फैलता है ना, तो हमारे वोकल कॉर्ड्स भी तो फैलते हैं
0: जी।
1: तो वो थोड़ा सा फैलाव, थोड़ी सी गहराई और जरूर आ गई आवाज में। यस, और चुलबुलापन आप जिसे कह रहे हो ना मंदाकिनी जी, वो तो बहुत एक सोची समझी साजिश थी।
0: प्रोफेशनल <आपकी तरफ से?
1: laughs> प्रोफेशनल साजिश थी कि भाई मुझे ये करना पड़ेगा अगर मुझे अपनी एक अलग पहचान करनी
0: बनानी है,
1: तो, जी।
0: तो एक ऐसा प्रश्न जो मेरे मन में आ रहा है कि क्या कभी पूर्णिमा सुषमा श्रेष्ठ से बात करती है, जब उसे पीछे छोड़ आई है और बहुत आगे आ गई है, बहुत आगे, तो ये दोनों सखियां क्या बात करती होंगी?
1: सुषमा से पूर्णिमा यही कहती है कि तुम पहले पूर्णिमा क्यों नहीं बनी। तुम अगर पहले पूर्णिमा बनती तो तुम पंचम दा को एक अलग कैसे बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं
0: जी,
1: आ रहा
0: जी,
1: पर
0: एक अलग रूप से जी पाती
1: से जी पाती
0: को,
1: उनके संगीत को। यस, क्योंकि मैं आज जितना उनके संगीत को समझती हूँ, शायद वो जो मुझे समझाना चाह रहे थे, सिर्फ उनके संगीत को नहीं, बहुतों के, जिन जिन लोगों के साथ मैंने काम किया।
0: सुषमा से पूर्णिमा का जो

0: अरे यानी क्या हुआ तेरा वादा जैसे इमोशनल गीत से लेकर तू तू तू तू तू तारा, ये जो एनर्जेटिक और डांस ट्रैक का जो गीत
1: जी
0: है, ये सफर आपके लिए कितना अलग था वहां तक पहुंचने का?
1: वैसे म्यूजिकली अगर आप पूछें तो अलग नहीं था, अगर आप निजी तौर पर पूछें तो बहुत कठिन। बहुत जिल्लतें सहनी पड़ी, बहुत कैसे बोलूं, पछाड़ खाई। वो लोग जो एक वक्त सुषमा श्रेष्ठा के साथ काम करने के लिए तड़पते थे, वो सुषमा श्रेष्ठा से आंखें चुराने लगे, है ना। हाँ, ये भी देखा, ये दौर भी देखा है, मतलब देखकर अनदेखा सा करना, है ना, क्योंकि मेरे आगे बहुत से, मेरे पीछे वाले मेरे आगे निकल चुके थे, है ना। तो हम कभी अगर साथ किसी स्टूडियो में जिंगल गा रहे हैं, या अगर ऐसा इक्का दुक्का कोई गाना मुझे मिल गया और हम साथ गा रहे हैं या साथ मिले, वो सिंगर हम सिंगर, तो मुझसे बात ना करना, उन्हीं से बात करते रहना, क्योंकि वो ज़्यादा कामयाब थी उस वक्त, है ना
0: जी।
1: तो ये सारी जिल्लतें सही, लेकिन एक बात बोलूँ मंदा के नीचे, बुरा लगकर भी मैंने उसमें से सीख सीखी
0: जी,
1: क्योंकि बचपन में भी ये था कि जब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहला गाना जब गाया तो एक वो आर्टिस्ट हैं जिनसे जिनसे इसी तरह का बर्ताव सहना पड़ा कि बच्चे गा रहे हैं, उन वो पहचान करा रहे हैं सब लोग के, तो उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं
0: जी।
1: लेकिन मैं इतनी सेंसिटिव थी तब से, और अब जब मैंने ये सब कुछ सहा पूर्णिमा बनने से पहले, तो अब एक कसम खाई थी कि मेरे बाद आने वाले बच्चों के साथ मैं कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी।
0: बिल्कुल,
1: मैं हमेशा उनकी पीठ थपथपाऊंगी, उनको बहुत प्यार दूंगी, और वो कुछ भी हो पर उनके होने का एहसास उन्हें दिलाऊंगी।
0: बहुत
1: जरूरी,
0: ये एक बड़ा मन ही ये बात कह सकता है कि मेरे साथ जो बीता मैं आगे आने वाली पीढ़ी के साथ वैसा बिल्कुल
1: कभी नहीं करूंगी।
0: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पास।
1: शाम है धुआं धुआं।

0: कभी कभी।
1: पूर्णिमा बनते ही पहला गाना यही था, तू तू तू तू
0: पहला
1: तारा?
0: तो वो था तुम ताना नाना
1: जी
0: ताना,
1: जी
0: फिर आया बरसात में जब आएगा सावन का महीना। ऐसा है मंदाकिनी जी, आप पूछ रही थी कि सुषमा श्रेष्ठा से पूर्णिमा तक का जो एक सफर मेरा, वो 10 साल जो मैंने बेकारी में बीता है, तो वो ऐसे मैंने बेकार नहीं जाने दिए। वो 10 साल मैं बहुत सोचती थी और बहुत स्ट्रैटेजीज करती थी कि मुझे, और पता नहीं क्यों मुझे ये एक खुद एतमादी थी हमेशा से कि मैं फिर से आऊंगी, दिस इज नॉट द एंड, मैं आऊंगी किसी ना किसी तरह, मुझे एक मौका फिर से मिलेगा जरूर। क्योंकि मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक आप अगर कहें तो एक अजूबा ही रहा है ना। पिताजी के देहांत के बाद 11 अप्रैल को उनका देहांत हुआ, 12 अप्रैल को मेरा एक शो था बहुत बड़ा, वहां जाकर एक 10-11 साल का बच्चा जाकर गाए और ऐसा गाए कि लोगों को रुला दे, है ना। तो ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है, मेरी पूरी जिंदगी ही मैं हमेशा कहती हूँ एक करिश्मा रहा। तो मैं जानती थी कि कुदरत इतनी आसानी से तो मुझे लुप्त नहीं होने देगा, है ना।
1: सही कहा।
0: तो उसके बाद मैंने माँ का गाना जब गाया, तब इतना मैं पॉलिश्ड नहीं थी, इतनी पॉलिश्ड नहीं थी, मेरे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो गाना डेविड धवन जी ने सुना कहीं, और उन्होंने जब मांग की कि मुझे ये सिंगर चाहिए मेरे फिल्म के लिए, तो तुतु तारा के लिए बुलाया गया, है ना। तो उसमें फिर मैंने तुतु तुतु तुतु तारा के वक्त मैंने थोड़ा और अपने आप को पॉलिश करने की कोशिश की। हालांकि गाना पहले रिकॉर्ड हुआ था वो मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे वरा मुझको भी चलना सिखा, वो वाला। तो उसमें मैंने सोचा कि जूही जी के लिए है तो उनका थोड़ा सा वो एंग्लिसाइज टोन है ना, तो आप अगर ध्यान से गाना सुनेंगे ना, तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट वहां
1: जी
0: के
1: जी
0: मैं हूँ गांव के गोरे बाबू रंग लहरे और गीता दत्त जी का स्टाइल, जरा मुझको भी चलना सिखा दे तू, तो वो बहुत कामयाब
1: हुआ।
0: फिर दूसरा गाना तुतु तारा आ गया, उसमें और थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो कर दो हमें माफ तुम खरदुना वो सब, तो वो कामयाब हुआ। तो मैंने सोचा अब इसी इसमें इसी को पकड़ के हमको चलना है।

0: देखिए, हर हर एक सिंगर के अपने प्लस माइनस पॉइंट्स होती
1: बिल्कुल।
0: है ना, कोई माने ना माने।
1: हाँ
0: मैं समझ गई थी कि मेरा प्लस पॉइंट, मेरा यूएसपी है मेरा, मेरे एक्सप्रेशंस। मैं गाने में जो एक्सप्रेशंस देती हूँ और दे सकती हूँ, वो शायद ही कोई दे सके।
1: जी
0: सॉरी, मैं
1: नहीं
0: खुद से
1: बिल्कुल
0: ये कह रही हूँ
1: जी
0: आज,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इतने सालों बाद इतना तो जायज़ है। तो बस मैंने उसी पे काम किया। वो मेरा जो एक स्ट्रेंथ मेरी थी, मेरा प्लस पॉइंट था, उसी को लेकर मैं आगे चली। फिर तो बहुत अच्छे गाने मिले। तू मेरा हीरो नंबर वन बजाइएगा ज़रूर, शाम है
1: अरे
0: धुआं
1: क्या
0: धुआं,
1: बात है क्या
0: वो तो
1: बात।
0: मेरा सबसे ऑल टाइम फेवरेट, और मेरे श्रोताओं का भी। चने के खेत में, चने के खेत में मुझे बताया गया कि माधुरी जी के लिए है,
1: जी
0: तो उनका, उनकी डिक्शन बहुत साफ है,
1: माधुरी
0: क्लियर
1: जी
0: जिसे
1: की।
0: हम कहते हैं। और हमेशा एक गाने में एक्सप्रेशन, तो क्वीन नहीं महारानी है वो, लेकिन उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशंस में आप देखेंगे उनके उनके जो माउथ की प्लेसिंग है ना,
1: जी
0: वो एक अलग टाइप की होती है।
1: हाँ बिल्कुल
0: वो मैंने नोट किया
1: नोट की।
0: था।
1: और फिल्म अंजाम का ये गीत चने के खेत में माधुरी दीक्षित के करियर का
0: हाँ,
1: सबसे बेहतरीन डांस नंबर्स में से एक बन जाएगा।
0: हालांकि उसके बाद मुझे नहीं मिले माधुरी जी के लिए गाने, लेकिन इस बात का मुझे गर्व होता है कि माधुरी जी जहां आती हैं तो इस गाने को वो डिलीट नहीं कर सकती हैं अपनी जिंदगी से और अपने परफॉर्मेंसेस,
1: बिल्कुल सही कहा
0: है ना।
1: आपने। और
0: ये गाना उनके करियर का एक अहम हिस्सा है, जैसे मेरे मेरे करियर का भी। तो बस फिर गाने मिलते गए मंदाकिनी जी, फिर मैं
1: आगे बढ़ते गए और हम लोगों का दिल आप जीतती रही। और देखिए ना, हीरो नंबर वन,
0: जी,
1: बीवी नंबर वन, मैं तो रास्ते से जा
0: अरे
1: रही
0: बाप रे
1: थी,
0: बाप।
1: है ना, कुली नंबर वन, मतलब गोविंदा और करिश्मा कपूर की जो जोड़ी पर्दे पर दिखाई देती है।
0: हाँ, ये एक अजीब बात है कि
1: हाँ
0: करिश्मा को मेरी आवाज,
1: गजब
0: इनफैक्ट
1: गजब।
0: काजोल को भी, वो मिस्टर लोवा लोवा, मुझे ये बताया गया कि अजय देवगन जी ने काजोल से पूछा कि तुम श्योर हो तुमने नहीं गाया ना,
1: क्या
0: ये
1: बात
0: किसी और
1: है।
0: ने गाया ना, तुम पूर्णिमा जी ने गाया ना, तुमने तो
1: हाँ
0: खुद नहीं गाया। मतलब इतने वो
1: हूबहू।
0: एक्सप्रेशंस,
1: हाँ हूबहू
0: मैं खुद भी मतलब शौक में
1: जी।
0: हूं।
1: और उसके बाद हीरो नंबर वन का गाना सुनना,
0: हाँ
1: कितना
0: बाप
1: तो
0: रे,
1: मतलब उस गाने के बाद तो अगर पैर नहीं थिरके तो बेकार है, वो आदमी इंसान ही
0: उसमें भी
1: बेकार
0: देखिए
1: है।
0: करिश्मा का एक एक अजीब, एक उनका कैसे बताऊं मैं, बोलने का एक तरीका है ना वो। सिर्फ मैंने, कुछ लोगों ने मुझे चिढ़ाया भी उस पे, पर वो कमबख्त जानते ही नहीं है कि मैंने क्या किया।
1: जी
0: छोड़िए, खैर, तो सोना कितना सोना, तो ये म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं सिखाते हमें, वो
1: हाँ
0: हम पर छोड़
1: ये
0: देते हैं।
1: जी जी जी
0: सोने जैसा तेरा मन, हे सुन जरा सुन क्या कहते हैं दीवाने दिल की धड़कन, तुम मेरा तुम मेरा तुम मेरा, हाँ तुम मेरा हीरो नंबर वन।
1: क्या बात
0: तो ये
1: है
0: सब हमारे इनपुट्स होते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: हीरो तुम मेरा हीरो, ये हमारी इनपुट्स होती हैं। सब सब मिलते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिसिस्ट, सिंगर, इवन हमारे साजिंदे, तब जाकर एक गाना बनता है।
1: लेकिन एक गायिका या गायक की खुद की जो IQ है, उसका जो
0: बहुत काम
1: है
0: है,
1: ना, वो होता है कि वो जिस हीरोइन के लिए गाना गा
0: यकीनन
1: रही है
0: यकीनन
1: उसे पकड़े, मतलब
0: यकीनन,
1: लगता है कि करिश्मा कपूर ही गाना गा रही
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल।
1: ये चीजें सबसे बड़ी गायिका को, एक कलाकार को आगे तक
0: यहाँ
1: ले जाती है।
0: कुदरत कुछ साथ देता है,
1: हाँ
0: पर कुदरत भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो खुद से कुदरत की तरफ अपना कदम
1: तो
0: बढ़ाते हैं,
1: आप
0: ये
1: कहें तो
0: मेरा
1: यही
0: मानना।
1: गाना सुन लिया जाए और थोड़ा थिरक
0: बिल्कुल,
1: लिया जाए,
0: प्लीज
1: हमारे
0: प्लीज
1: श्रोता भी थिरक लेंगे।
0: प्लीज।
1: तो आइए सुनते हैं।

0: कई बार इसके चलते ये भी होता है, पूर्णिमा जी की शानदार आवाज और हिट गाने देने के बावजूद सिंगर्स को टाइपकास्ट कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कभी कि आपको टाइपकास्ट किया गया या?
1: बिल्कुल, इसीलिए मैंने वो बात आपसे कही थी ना कि मैंने शुरुआत अपनी जिंदगी की 5-6 साल की उम्र में ऐसे इमोशनल गाने मैं गाती थी कि डैडी भी रोते थे। इतने मतलब मैं गाने को समझ कर गाती
0: जी,
1: थी, ऐवे ही नहीं गाती थी। तो उस बच्चे को अगर आप आगे जाकर ऐसे ही गाने, ऑफ कोर्स मैं I'm very proud of all the songs that I sang, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ और भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता था, मुझे और अलग टाइप के गाने भी गवा सकते थे
0: जी,
1: और मैं उनको बखूबी निभाती, इसका मुझे पूरा यकीन है। पर ठीक है, इतना भी किसको मिलता है, और ये मैं दिल से कह रही हूँ,
0: जी, जी, जी,
1: इतना भी किसको मिलता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और इसी के चलते एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है कि एक 70 के दशक का चाइल्ड आर्टिस्ट का शानदार दौर और 90 के दशक का आपका चार्ट बस्टर दौर,
1: जी
0: कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं कि जहां हम ये क्षोभ करें या कहीं हम दुख करें कि मुझे वो गाना मिल जाता।
1: नहीं, मैंने ये दुख कभी किया भी नहीं मंदा के नहीं जी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और कुदरत जो करता है बहुत सोच। हम फिजिकल फॉर्म में हम माता पिता होते हुए जब अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं तो वो तो जगत पिता है, जगत माता है, वो तो क्या वो हमारे बारे में नहीं सोचेंगे?
0: बिल्कुल,
1: हमारा
0: बिल्कुल,
1: बुरा कभी नहीं सोचेंगे।
0: और उन्होंने सोचा भी,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तभी आज पूर्णिमा पूर्णिमा के नाम से जानी
1: बहुत
0: जाती है।
1: बहुत मुश्किल है मंदाकिनी जी, यहाँ सेकेंड इनिंग्स मिलना, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स अभी भी गा रही हूँ, यहाँ तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और आज ये सोशल मीडिया में मैं इतनी

0: मैं बिल्कुल ही एक्टिव नहीं हूं, मुझे होना भी नहीं, मुझे पसंद नहीं, फिर भी आप जैसे लोग इतनी इज्जत से बुला रहे हैं।
1: जी
0: जिस फिल्म का मैंने जिक्र अभी किया
1: जी,
0: मराठी फिल्म का कब्बशी, उसकी दो लाइन्स में महाराष्ट्र के मराठी ऑडियंस तुमच्यासाठी अगदी खास हे गाणं मी गाती आता, नवीन माझ्यात पिक्चर आहे कब्बशी, त्याच्यातलं दिसला बाई दिसला मला शोधून सापडला,
1: वा
0: कुठला देव बाई पावला जीवच कही वरला, उरात धड धड वाढले ठोका सरा चुकला छो मंतर।
1: क्या बात है, क्या बात।
0: तो ये गाना मंदाकिनी जी, उस डायरेक्टर वैभव का जब कॉल आया मैंने मना कर दिया। वो बोले उत्तम सिंह जी म्यूजिक देंगे, हमको वो ही फ्लेवर चाहिए, दिल तो पागल है। और बस मुझे यही था कि मैं जब फिल्म डायरेक्ट करूंगा आप ही से गवाऊंगा। पर मैंने कहा देखो भाई, अब मेरी उम्र 60 मैं क्रॉस कर चुकी हूँ, अभी सितंबर में मैं 67 पूरा करूंगी। अभी ये एक साल पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, तो मैंने कहा कि अब मैं उस सुर में नहीं गा सकती हूँ, मेरे सुर मैंने नीचे किए हैं, और उत्तम भैया से मैं इतनी बेबाकी से नहीं बोल सकती कि भैया आप मेरे सुर में कंपोज कीजिए, इतनी बदतमीजी मैं नहीं करूँगी। बात वहीं ख़त्म हुई। फिर एक हफ्ते वो फ़ोन करते रहा, मैंने मना किया। फिर कुछ 10-15 दिन के बाद फ़ोन बजा और उसने कहा आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं। तो उत्तम भैया आए लाइन पे, बोले बेटा बाजा मेरे पास है। वो मुझे हमेशा बेटा ही कहते, बेटू बाजा मैंने है, देखा मैं बजा बाजा मैं तुझे कॉम्पोजिशन सुना रहा हूँ, तू मुझे बोल तेरा सुर क्या है, अब हम उसी सुर में ट्रैक बनाएंगे, पर गाना तो तुझे ही है। सवाल ही नहीं कि हम किसी और से ये गाना गवाएंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये अहोभाग्य मैं कहूंगी। ये किसको मिलता है कि ये गाना आपका है, इसे और कोई टच नहीं करेगा। तो उन 100 गानों में वो एक गाना अगर मेरा है जिसे कोई छू नहीं सकता या नहीं छुएगा,
1: ये बड़ी बात है,
0: तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मंदाकिनी
1: जी।
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: वो सारे 100 गाने एक तरफ और ये मेरा एक गाना एक तरफ।
1: बिल्कुल सही कहा। तो एक मराठी गाना सुन ले, बताइए।
0: मेरे बचपन में जब सुषमा श्रेष्ठा के नाम से, उस वक्त के लोग जरूर याद रखते होंगे, श्रीनिवास खड़े जी हमारे दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर मराठी के, और शांता शेळके जी दिग्गज लिरिसिस्ट, उन्होंने लिरिक्स लिखे थे और खड़े साहब ने, तो मेरा बाल गीत सबसे पहला एल्बम HMV ने
1: जी,
0: उसका एक गाना, उसके कई रिमिक्सेस बने हैं, पर आज सबको बोलूं कि ओरिजिनल मेरा है
1: जी।
0: किल बिल पक्षी बोलती झुड़ झुड़ झुड़ झुड़ झरे वाहती, पानो पानी फूले बहरती, फूल पाखरे वर बिर बिरती, स्वप्न

0: बहुत सुंदर, क्या बात है। तो
1: तो
0: और
1: मराठी गाने, बस मराठी में तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ आई की वजह से, बहुत ज्यादा। लेकिन लैंग्वेजेस में कभी दिक्कत नहीं आई, ये ईमानदारी की बात है।
0: अब जब आ गए हैं हम अन्य भाषाओं के
1: जी
0: आपके गाए गीतों पर, तो पूर्णिमा जी आपने कई भाषाओं में गाने गाए, जैसे कि
1: जी
0: बंगाली,
1: जी
0: नेपाली,
1: जी
0: मराठी, भोजपुरी, असमिया, हरियाणवी और गढ़वाली भाषा में भी
1: जी
0: आपने
1: जी
0: गाया।
1: बिल्कुल।
0: इनमें किस भाषा के गीत ज्यादा आपके लिए चैलेंजिंग थे, और साथ ही अलग अलग भाषाओं के उच्चारण, यानी जो डिक्शन आप करते हैं, और इमोशन को एक गायक के रूप में ढालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि
1: मंदाकिनी जी, मैं फिर दोहराती हूँ कि जिसको कुदरत बनाना चाहता है वो उसे एक अलग ढांचे में ढालता है। मुझे लगता है मैं बचपन से एक अलग अलग ढांचे में ढल के आई हूँ। मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई किसी भी भाषा में गाने के लिए, कभी नहीं। मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में मैंने कितने जिंगल्स किए, और हिंदी में ऑफ कोर्स लिखती थी, और जो उनके इंटोनेशंस हैं लैंग्वेज के उन्हें मैं मार्क करती थी, पर एक दो टेक में ही ओके हो जाता था। मुझे कभी नहीं मुश्किल हुई, पता नहीं कैसे, क्या मैं नहीं, इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है,
0: जी, गॉड
1: पर
0: गिफ्ट।
1: ये गॉड गिफ्ट है। ये एक गॉड गिफ्ट मेरी आई को था, वो हर भाषा भाषा को ना एकदम से उसमें मोल्ड हो जाती थी। तो शायद ये आई से जैसे आवाज़ मिली वैसे ये भी गिफ्ट मिला होगा। मंदाकिनी जी सॉरी, लेकिन मुझे ना मेरा एक और गाना याद आ रहा है, जब
0: मराठी,
1: मैंने जब रिमिक्स की बात की ना,
0: हाँ,
1: नहीं हिंदी गाना, उस गाने का भी रिमिक्स बना और एक किसी ने गा

0: पर वो गाना एक्चुअली मेरा है, ये जेंजी क्राउड को
1: हाँ
0: पता पड़ना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: ऊंची है बिल्डिंग, टाड़ा टाड़ा टाड़ा टाड़ा, लिफ्ट तेरी बंद है, टाड़ा टाड़ा टाड़ा, कैसे मैं आऊं, टाड़ा रा रा रा रा रा रा रा रा रा, आ जा बैंड बाजा। तो ये ओरिजिनल तो मैंने गाया
1: जी
0: था
1: जी अनुमली के साथ
0: बिल्कुल जुड़वा फिल्म के लिए, है ना,
1: जी
0: पर वो रीमिक्स से मुझे याद आया।

0: पूर्णिमा बनने के बाद आपने बहुत सारे संगीतकारों के साथ काम किया,
1: जी
0: तो पुराने संगीतकारों के साथ काम करना और फिर से नए संगीतकारों के साथ काम करना, इनमें क्या अंतर महसूस किया?
1: मैंने जैसे मदन मोहन जी से के साथ या नौशाद साहब के साथ, दादू पंचम दा के साथ, वसंत देसाई जी, सबके साथ काम किया। जैसे वो सिखाते थे, जिस तरह से वो समझाते थे, वैसे ही आनंद मिलिंद ने समझाया, वैसे ही अनु मलिक ने समझाया, वैसे ही राजेश रोशन जी ने समझाया, जतिन ललित, उनका एक बहुत बेहतरीन गाना गाया था, दिल में है तू धड़कन में तू हो मैं जानू आई लव यू, वो ही सब। देखिए क्या होता है, हाँ फर्क सिर्फ माहौल में हुआ, माहौल एज इन रिकॉर्डिंग करने का तरीका। उस वक्त ये था कि भाई लाइव म्यूजिशियंस हैं,
0: अब और सिंगल ट्रैक रिकॉर्डिंग होती थी पहले,
1: बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता था मंदाकिनी जी, फर्क ज्यादा मुझे अब महसूस हो रहा है, यानी 90s के बाद का जो दौर आया, और मुझे, मैंने जब एनालाइज किया तो मुझे लगता है उसका एक ही कारण हो सकता है, हम भी जब तक गाते थे, भले हम ट्रैक्स पे गाते थे, लेकिन हम जितने हम सिंगर्स आए थे या जितने हम म्यूजिक डायरेक्टर्स हमारे आए, उनकी सबकी जो एक उनका जो एक बैकग्राउंड था बहुत सॉलिड था, नींव उनकी हम सबकी बहुत सॉलिड थी,
0: बेसिक्स बहुत,
1: हम सब म्यूजिकल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते थे, करते हैं, है ना। अब के बच्चे, बुरा लगता है उनके लिए, सच में बुरा लगता है, एक गाना 10-10 बच्चों से गवाते हैं, उन बच्चों को, बेचारों को मालूम ही नहीं कि ये गाना मेरा रहेगा भी कि नहीं, है ना। अब आप बोलो कि क्या रे तुम, अरे कैसे मना करेंगे, हर कोई चाहेगा ना कि भाई चांस मिल रहा है, कैसे ना बोलूं। अब पहले ये होता था, स्पेशली जब 70s और 80s तक भी एक हद तक हम रिकॉर्ड करते थे मंदाकिनी जी, तो आप सोचिए कि पूरी रिकॉर्डिंग रूम में कम से कम 70-80 लोग म्यूजिशियंस, फिर सिंगर्स कैबिन में या तो मैं अकेली सोलो सिंगर कोई भी या हम दो, है ना, तो कम से कम आप सोचिए कि, और फिर अंदर कॉन्सोल्स में लोग बैठे, तो एक कम से कम, नहीं नहीं तो 80-90 लोगों की पॉजिटिविटी

0: मिट्टी उस गाने के साथ जुड़ी है,
1: माहौल वैसे ही होता था, वो
0: क्यों?
1: गर्माहट।
0: क्यों? क्योंकि अगर एक ने गलती की तो फिर शुरुआत से गाना शुरू करना
1: किया
0: पड़ेगा।
1: जाएगा।
0: तो सब लोग इतने चौकन्ने होकर काम करते थे कि हमसे कोई गलती
1: ना
0: हो
1: जाए,
0: कोई गलती नहीं होनी चाहिए। वो चौकन्नापन, वो पॉजिटिविटी, कि एक गाने में सोचिए ना सबकी पॉजिटिविटी कि दिस इज इट, ये टेको के होना चाहिए। तो वो पॉजिटिविटी जो हम देते थे ना, उसकी सिर्फ कमी मैं आज महसूस करती हूँ।
1: आज जो तकनीकी बदलाव आ गए हैं गानों की धुन पर,
0: जबकि बच्चे बहुत मेहनत से काम करते हैं, मैं बहुत सराहना करती हूँ उनकी, जो लिमिटेड उनको, इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जिस माहौल या दौर में वो काम कर रहे हैं वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल है।
1: जी,
0: अगर वो बोलेंगे भी कि नहीं हमको गाना फिर से करना है, तो भी उनको ऐसे देखते हैं लोग, मुझे मालूम है कि ये क्या बोल रहे हैं, पंचिंग का जमाना है, क्या पूरा गाना गाने पे
1: तुला हुआ है,
0: तुला हुआ है। अरे यार वो वर्ड पंच कर दो, छोड़ो ना यार, कहाँ अभी, मैंने देखा है।
1: मतलब संगीत की ये हालत अगर हो जाएगी तो एक नया सिंगर
0: तो वो
1: क्या गाएगा,
0: पॉजिटिविटी आएगी
1: वो
0: कहाँ से,
1: सीखेगा कहाँ
0: है
1: से
0: ना?
1: आगे के लिए।
0: टुकड़ों में थोड़ी ना पॉजिटिविटी, सकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो टुकड़ों में थोड़ी ना बटी
1: जी जी
0: जाएगी,
1: जी
0: है ना।
1: जी
0: मुझे कमी सिर्फ ना मेहनत में कमी है, ना उनकी नीयत, शायद हो सकता है नीयत में, ईमानदारी में थोड़ा सा ऊंच नीच हो, वो भी मैं बोलूंगी बिकॉज ऑफ द सिचुएशन टुडे, आज का जो माहौल, जिस माहौल में ये बच्चे काम कर रहे हैं,
1: रातों रात स्टार बन
0: इतना
1: जाना।
0: कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है,
1: जी जी
0: क्या
1: जी
0: करेंगे वो।
1: जी जी
0: तो हमने सराहना करनी चाहिए
1: हाँ।
0: बच्चों की, जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और हो सके तो उनको अच्छी सीख दो भाई
1: जी, ताकि आगे चलकर एक
0: उनको,
1: उनका भी
0: हाँ
1: करियर जो बनता
0: हर
1: है।
0: बार उनका उस्ताद बनने की कोशिश मत करो ना, ये बात गलत है। हमें अच्छा लगता था उनकी उम्र में जब हम थे, हम वो जो हमारा वक्त था, हमें नहीं अच्छा लगता था कोई उस्ताद बनने की कोशिश अगर, लेकिन हमारा तरीका अलग था उसको जताने का, इनका तरीका अलग है, क्योंकि आज वक्त बदल गया है। तो बदलते वक्त के साथ जो बदले अपने आप को, वो एक्सेप्ट करके बदले, मुझे लगता समझदारी उसी में है,
1: जी,
0: है
1: एक
0: ना?
1: गाना सुन लिया जाए,
0: कौन सा बताइए,
1: आप बताइए, आपकी पसंद चल रही है, हमें तो आपके सभी गाने पसंद हैं।
0: अखियाँ तो मिला ले राजा, आए हैं दिन बहार के, अखियाँ तो चुरा न राजा, जाए न दिन ये प्यार के, मिसलो वलो व तेरी आंखों का जादू, मिसलो वलो व तेरी। उसने जैसे उसको ब्लेंड किया ना, मेरी आवाज में इतना मुझे दर्द हो रहा है आज की पत्ती आ रही है मेरी आवाज में, मतलब थोड़ी थोड़ी फट रही, मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगी इसके लिए,
1: नहीं नहीं बिल्कुल
0: पर आज का ये मौका मैं
1: नहीं,
0: गंवाना नहीं चाह
1: और
0: रही।
1: हम भी मौका नहीं गंवाना चाहते, तभी तो आपकी पसंद का ये गीत हम सुनते हैं।

0: ये जाए।
1: तो पूर्णिमा जी, आज तो हम आपकी बातों का और आपके गानों का रसा स्वादन कर रहे हैं और हमारे श्रोता भी। अब बस हम ये जानना चाहते हैं चलते चलाते कि आज भी क्या आप फिल्मों में गा रही हैं, एक्टिव हैं और लाइव स्टेज शोज तो आप कर ही रही हैं, तो आगे आने वाले आपके नए प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं?
2: फिलहाल तो वैसे कोई खास नहीं है। ये जो मैंने अभी जिक्र किया जिसका मराठी फिल्म का, उसमें मैंने अभी गाया। और स्टेज शोज तो बहुत करती हूँ, बहुत। और अगर मैं बहुत ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे स्टेज शोज करने में ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। इसका मेरे पास कोई आप पूछेंगे तो कोई आंसर नहीं
1: जी।
2: पर मुझे लगता है वो मेरे ऑडियंस के साथ वन टू वन होना और मैं परफॉर्म करती हूँ स्टेज पे तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है।
1: वहां पे कौन सी फरमाइश आती है सबसे पहले, क्या सुनना चाहते हैं उस वक्त?
2: शाम है धुआं धुआं, कम से कम चार बार गाना पड़ता है।
1: बिल्कुल, युवा दर्शक होते होंगे और वो भी इस गाने को सुनना
2: बिल्कुल
1: पसंद
2: बिल्कुल। और तू मेरा हीरो नंबर पर शाम है धुआं धुआं ज्यादा और तेरा मुझसे है पहले का। बस खास तो कुछ नहीं कर रही हूँ, गा रही हूँ बस,
1: यही खास
2: स्टेज
1: है।
2: पे यही खास है मेरे लिए, तो यही खास है
1: जी।
2: इसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, है ना। और ना जब कोई पूछता है कि आप अभी भी गाती हैं, ये सवाल मुझसे करते हैं लोग।
1: अच्छा।
2: उनसे मैं कहना चाहूंगी कि ये हम लोग जो है ना, हम लोग शापित गंधर्व हैं, है ना। हम इसे ऊपर से लेकर आए हैं, तो ये कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं कि भाई 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे रगों में खून कम और संगीत के सुर ज्यादा है, बहते
1: जी,
2: हैं
1: जी।
2: तो ये हमसे उसी वक्त शायद ये सुर अलग होंगे जब चिता की आग जलेगी।
1: जी,
2: तो ये सवाल प्लीज मत पूछा कीजिए किसी भी कलाकार से।
1: पूर्णिमा जी, एक गीत और सुन लेते हैं आपकी पसंद
2: प्लीज। चने के खेत में।
1: अरे

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पूर्णिमा जी, और मैं तो कहूंगी सुषमा श्रेष्ठा जी भी,
1: और अभी पूर्णिमा श्रेष्ठ जी,
0: आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत आभार।
1: तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बॉम्बे टॉकीज इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। शाम के 5 बजने को है। अब से कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं हॉकी में भारत और मलेशिया के बीच फाइनल मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 3-1 की बढ़त बना ली है। पदक तालिका में भारत 20 स्वर्ण 26 रजत और 37 कांस्य सहित 83 पदकों के साथ 5वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शानदार प्रदर्शन के लिए पदक विजेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच

0: उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। गृहमंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस ले आई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आर्थिक मजबूती को सामाजिक मजबूती से अलग करके नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में समावेशिता ही मजबूती की बुनियाद है। श्री राधाकृष्णन आज नई दिल्ली में 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन का विषय था बदलते दौर में मजबूती। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर विस्फोट में 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य निर्धारित गतिविधियों पर रोक है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 37वें ओवर में 5 विकेट पर 225 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा ने 92 और ऋतुराज गायकवाड़ ने 57 रन बनाए। श्रृंखला में भारत ने 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोताओ लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। यसर देसाई जीत गांगुली का गाया ये गीत हम सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म है परमाणु, द स्टोरी ऑफ पोखरण।

श्रोताओं, जीत गांगुली के संगीत में ये गीत था। गीतकार थे रश्मि विराग, गायक थे यसर देसाई और जीत गांगुली। अगले गीत की ओर रुख कर रहे हैं। ये है मनमर्जियां फिल्म से गीत। एमी विर्क और शाहिद मालिया की आवाजें हैं, तर्ज अमित त्रिवेदी की, शैली के बोल।

आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओ, अब बारी आर्को के गाए इस गीत की। गीतकार संगीतकार भी हैं आर्को। फिल्म का नाम बरेली की बर्फी।

अय्यारे फिल्म से सुनिधि चौहान का गाया गीत आप सुन रहे थे। आप सुन रहे थे फिल्म संकेत। और अब श्रोताओं प्रस्तुत है स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं लम्हे प्रोग्राम। मैं हूं आपका आरजे चेतन। बचपन और टीनेज उम्र का वो पड़ाव होता है जहां बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। इस दौरान बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत तेजी से बदलते हैं। इनमें से कुछ बदलाव प्राकृतिक रूप से हर किसी के साथ होते हैं, वही कुछ ऐसे भी बदलाव होते हैं जो आसपास के माहौल, वातावरण आदि की वजह से बच्चों में नजर आने लगते हैं। आज के दौर में कम उम्र के बच्चे में भी स्कूल,

पढ़ाई और बिगड़ते माहौल की वजह से स्ट्रेस देखा जाता है। आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों में भी आसपास के माहौल, परिवार की उदासीनता, लड़ाई झगड़े और हिंसा के चलते मानसिक रोग नजर आने लगे हैं। ये बेहद चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चों को हंसी खुशी के माहौल में रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए, उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को

रहते हुए खेलना कूदना और नया कुछ सीखना रहना चाहिए। उस उम्र में बच्चे मानसिक समस्याओं के ग्रस्त हो जाते हैं। अगर सही समय पर इन समस्याओं को देखा समझा और उनका इलाज नहीं किया गया तो ये बच्चे उम्र भर के लिए इस समस्या से ग्रस्त रहते हैं और इसका समाधान न मिल पाने के चलते अन्य असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। चलिए आपको बच्चे में पनप रही मानसिक समस्याओं के बारे में और डिटेल में बता दें इस लम्हे प्रोग्राम में चेतन के साथ। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों कई हैं। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि भारत में 5 करोड़ से अधिक बच्चे मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह नंबर नियमित रूप से बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़े कदम नहीं उठाए गए। बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। दरअसल अडल्ट से जो मानसिक समस्याएं देखी जाती है वो बचपन से ही चली आ रही किसी न किसी मानसिक समस्या का बड़ा हुआ रूप कहा जा सकता है। बच्चों और टीनेजर्स को प्रभावित करने वाले कारक उनका परिवार, परिवार में माता पिता के आपसी संबंध, उनके दोस्त, दोस्तों द्वारा उन पर किसी बात के लिए नियमित रूप से प्रेशर डालना, पढ़ाई लिखाई में सफल होने का प्रेशर। कुछ बच्चे अन्य बच्चों की तुलना में मानसिक रूप से अधिक परेशान और अकेला महसूस करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है कि वो खुद को किसी न किसी तरह से अन्य लोगों से अलग महसूस करते हैं या महसूस करवाए जाते हैं। अन्य लोगों की तुलना में बच्चे खुद को अलग अक्सर तब महसूस करते हैं जब वह समाज के बनाए स्ट्रिक्ट रूल्स के अनुसार खुद को नहीं पाते। इसमें उनकी सेक्सुअलिटी, क्लास, जाति के आधार पर भेदभाव, परिवार में हिंसा, किसी बड़े का सपोर्ट न होना और हर वक्त बड़ों द्वारा प्रेशर थोपा जाना बड़े कारक साबित हुए हैं। वैसे तो हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है और वो दुनिया में अभी तक जानी और समझी गई किसी भी मानसिक समस्या से जूझ रहा हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी बच्चों में गांव के बच्चों की तुलना में मानसिक रोगों की समस्या अधिक देखी गई है। बच्चों में आमतौर पर यह मानसिक समस्याएं देखी जाती है। बहुत से मामलों में ये देखा गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स लड़कियों में लड़कों के तुलना में अधिक पाए जाते हैं। ऐसा बॉडी इमेज इश्यू की वजह से भी होता है जहां लड़कियों पर कम उम्र से ही एक खास तरह का दिखने पर प्रेशर होता है। ईटिंग डिसऑर्डर कई तरह के होते हैं। टीनेज से ही बच्चे में बहुत अधिक खाना या खाना बिल्कुल छोड़ देने की कंडीशन देखी जाती है। बहुत से बच्चों में युवावस्था से पहले यानी टीनेज से ही पर्सनैलिटी से जुड़े कुछ लक्षण नजर आने लगते हैं। उनका बहुत अधिक गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करना, खींच जाना, मारपीट आदि करना पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ही लक्षण कहे जाते हैं। ये बेहद कॉमन मानसिक समस्या है जहां कम उम्र से ही स्ट्रेस के चलते बच्चों का मूड और व्यवहार बदल जाता है। कभी वो बहुत उदास हो सकते हैं तो कभी वो बहुत हाइपर एक्साइटेड नजर आते हैं। डिप्रेशन, उदासी, नाराजगी और बाइपोलर डिसऑर्डर मूड डिसऑर्डर है जो बच्चों में बेहद आम तौर पर देखे जाते हैं। बहुत से बच्चों को सोशल एंग्जाइटी होती है तो वही बहुत को तरह तरह के डर घेरने लगते हैं। टीनेज में अभी ये डर बहुत खुलकर सामने आया है लेकिन पढ़ाई, करियर या किसी खास मामले में ये डर खुलकर बच्चों को अपनी चपेट में ले लेता है। एडिक्शन या नशा भी एक मानसिक समस्या है जिसके चलते एक बच्चा कम उम्र में ही शराब, सिगरेट या ड्रग का आदी हो जाता है। इस उम्र में उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से विकसित नहीं होती है और यही वजह है कि अल्कोहल और ड्रग उन्हें पूरी तरह से अपने बस में कर लेता है। फ्रेंड्स, ये जानना और समझना बेहद जरूरी है, कहीं आपका बच्चा किसी मानसिक समस्या से जूझ तो नहीं रहा है? ये पता लगाना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों के लक्षणों और हरकतों पर नजर रखें तो आप समझ सकते हैं कि आपका बच्चा किसी मुश्किल में है और उसे मदद की जरूरत है। ये लक्षण समझ में आने पर आप अपने बच्चों को किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास ले जा सकते हैं जहां टॉक थेरेपी या किसी अन्य प्रकार के मेंटल हेल्थ थेरेपी से बच्चों को अपनी समस्या से निजात मिल सकती है। चलिए आपको बताते हैं आपको अपने बच्चों के किन लक्षणों पर नजर रखनी है। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण नजर आ रहे हैं तो आपको तुरंत किसी एक्सपर्ट से संपर्क करना चाहिए, जैसे बहुत अधिक थकान, बहुत अधिक सोना या बिल्कुल न सोना,
भूख न लगना।

0: हर वक्त निराश महसूस करना, एकाग्रता की कमी, दिल की भावना बढ़ने लगना, सुसाइडल महसूस करना, उदास, खाली या घबराहट महसूस करना। बचाव और इलाज यह है दोस्तों कि बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में उनका परिवार बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका बच्चा किसी वजह से मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रहा है तो उसकी सही इलाज करवाई जाना बेहद ज़रूरी है। टीनेज वैसे ही अपने आप में एक बेहद मुश्किल दौर होता है, ऊपर से मानसिक समस्याएं इसे और भी चैलेंज बना सकती है। इसीलिए परिवार को अपने बच्चे के प्रति बहुत उदार होना चाहिए और उसे खूब प्यार देना चाहिए। जब बच्चा महसूस करता है कि परिवार से प्यार अपनापन मिल रहा है तो उसे अपनी समस्याओं का सामना करने की हिम्मत मिलती है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई के प्रेशर के तले दबता जा रहा है और इसकी वजह से लगातार घबराहट, डर और निराशा महसूस कर रहा है तो उस पर बेवजह टॉप करने का दबाव न डालें। हर बच्चे की क्षमताओं और काबिलियत अलग अलग होती है। दोस्तों, आपके परिवार के सदस्य, आपके बच्चे या कोई आपका जान पहचान का व्यक्ति इस मेंटल डिसऑर्डर के झपेट में आए तो समस्या को समझकर उसकी मुश्किल आसान करने में मदद कर सकते हैं। अपने बच्चों को खूब लाड़ प्यार दें और उसे ये यकीन दिलाए कि वह जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाएगा। उस पर किसी भी तरह का अनरियलिस्टिक प्रेशर न डाले। नियमित रूप से उसे बात करते रहे ताकि अगर उसके मन में कोई भी उलझन हो तो वो खुलकर आपको बता सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके काम आएगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल स्टोरीज के लिए सुनते रहिए लम्हे विद चेतन। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक चेतन को इजाजत दीजिए, नमस्कार। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.
1: अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एक्टर, राइटर और डायरेक्टर शाहबाज सिंह बाजवा। शाहबाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
4: जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
3: शुरुआत हम आपके बचपन से करते हैं, तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आपका जो बचपन है वो कहाँ बीता, पढ़ाई कहाँ पे हुई?
4: जी, मेरा जन्म बटाला शहर, जो गुरदासपुर के पास में ही है, वहाँ हुआ। और जो मेरा गाँव है वो है हयात नगर, जो की 6-7 किलोमीटर दूर है गुरदासपुर सिटी से। मेरा बचपन सारा गुरदासपुर में गाँव में ही बीता और जो मैं पढ़ने जाया करता था वो एक शहर के स्कूल में, क्योंकि जैसे हर एक पेरेंट की इच्छा होती है कि उसने बच्चे को थोड़ी बढ़िया एजुकेशन दो, तो उन्होंने मेरे को शहर वाले स्कूल में डाला पढ़ने के लिए। पर जो मेरी नॉर्मल जिंदगी थी वो गांव में बीती।
3: जी, तो कोई ऐसी याद गांव की आपकी जो भुलाए ना भूलती हो?
4: बहुत सारी यादें हैं, मोस्टली जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी। और क्या होता है ना कि गर्मियों में दोपहर के वक्त सब लोग गांव में तो सोते ही हैं, मोस्टली आपको गलियों में कोई ही दिखेगा
3: जी।
4: तो उस वक्त मुझे बहुत मजा आता था कि पूरा गांव ऐसे बिल्कुल सुनसान और ऐसे लगता था कि मैं राजा हूँ इस गाँव का। तो मैं और मेरे कुछ एक दोस्त, हम ऐसे जो गाँव का सरकारी स्कूल है या खेत है तो वहां चले जाया करते और बहुत ही एकांत, बहुत ही जिसको अंग्रेजी का शब्द है सॉलिट्यूड महसूस करते। और फिर ऐसे क्योंकि छोटे थे, बच्चे थे और काफी क्या बोलते हैं खुराफाती आइडियाज आते थे।
3: पढ़ाई कहां तक की आपने?
4: पढ़ाई मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूं मैं। उसके बाद मैं पुणे चला गया एक साल की, उसको बोलते हैं ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग। अगर आपने मर्चेंट नेवी एज अ इंजीनियर ज्वाइन करना हो तो आपको वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करना पड़ता है
3: जी।
4: तो वो मैंने किया पुणे मरीन एकेडमी से और फिर मैं चला गया समुद्री जहाज पे सेल करने के लिए। मैं एक ऑयल टैंकर पे था 2 साल के लिए, मतलब 6-6 महीने

0: कि तीन कॉन्ट्रैक्ट, तीन शिप।
1: तो लगातार समंदर में कितनी देर तक रहे आप?
0: लगातार मेरा सबसे जो लंबा स्ट्रेच रहा है वो है 7 महीने 5 दिन।
1: जी,
0: जब मैं 7 महीने और 5 दिन के लिए मैंने जमीन को नहीं छुआ, क्योंकि जो जहाज होता है वो मेटेलिक होता है, उसके आसपास आप समंदर है, पैसिफिक, अटलांटिक। और सबसे लंबा मेरा 7 महीने और 5 दिन साउथ अफ्रीका से, नाइजीरिया से तेल उठाकर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे पारादीप पोर्ट इंडिया। और क्योंकि जहाज मेरा बहुत बड़ा था, इसको बोलते हैं VLCC, वेरी लार्ज क्रूड करियर, तो वो आप सोचिए कि 330 मीटर लंबा जहाज था। तो जैसे 100 मीटर का एक रेस ट्रैक होता है, तो 330 मीटर लंबा जहाज, तो वो एक पूरा गांव ही होता है जो समंदर में तैर रहा है। तो वो ऐसे जमीन के पास तो आता ही नहीं था, उसको दूर ही समंदर में खड़ा कर देते थे। वहीं छोटी छोटी बोट्स आती थी, ऑयल लेके चली जाती थी, हमें जमीन देखने का मौका ही नहीं मिलता था।
1: तो क्योंकि आप 7 महीने और 5 दिन आप लगातार समंदर में रहे, तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा?
0: जी, बहुत अमेजिंग, बहुत रोचक, बहुत एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है, वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। जिस जहाज पे मैं था वहाँ पे बहुत मल्टी कल्चरल, बहुत विभिन्न देशों के लोग थे, फिलीपींस के थे, यूरोप के कुछ लोग थे। हर बंदा अपने अपने तरीके से सोचता है, उसका खाने पीने का तरीका अलग है, उसके गाने सुनने का तरीका अलग है, जिस देश से वो आया है वैसी उसकी कल्चरल, वैसी उसकी हैबिट्स हैं। तो मुझे तो बड़ा मजा आता था वहाँ पे उनके साथ, अलग अलग लोगों के साथ अडेप्ट करने में, क्योंकि मैं शुरू से बहुत अडेप्टिव नेचर का था, तो मैं तो बहुत इंजॉय किया। और वहाँ पे जैसे मैं एज इंजीनियर था, तो इंजीनियर्स की जो लाइफ बहुत टफ होती है, बिकॉज इंजन रूम का जो नॉर्मल तापमान है वो 50 डिग्री होता है, क्योंकि इतना बड़ा इंजन है, जितनी आपकी ये बिल्डिंग है उतना बड़ा एक उसका पिस्टन है, तो इतनी हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे काम करना बहुत चैलेंजिंग है, वेरी टफ, पर वो अच्छा लगता है जब आप काम करके आते हो और शाम को अच्छा डिनर खाते हो और फिर अच्छी नींद आती है आपको। ऐसे हमारे रोजमर्रा की जिंदगियों में ऐसे कुछ ड्रामास होते हैं, उससे दूर हो आप, एक सॉलिट्यूड है, समंदर है, आप अपनी किताबें पढ़ो अपने फ्री टाइम पे।
1: शाहबाज जी, आपने बीटेक की और उसके बाद मर्चेंट नेवी में चले गए, तो मर्चेंट नेवी में जाने का आइडिया जो है वो कहां से आया?
0: आइडिया ऐसे एडवेंचर एक्टिविटीज का शौक तो बचपन से ही था, और ऐसे दुनिया घूमने का शौक भी था, कि दुनिया घूमने का शौक मतलब कि ऐसे अलग अलग कल्चर्स को एक्सप्लोर कर लिया जाए, लोगों से मिल लिया जाए, क्योंकि जब मैं विभिन्न लोगों से मिलता हूँ तो इतनी कहानियां होती हैं उन लोगों के पास, और जो कहानियां हैं वो मुझे शुरू से बहुत अट्रैक्ट करती रही हैं। मैं खुद बहुत कहानियां सुनाता था, जैसे किसी और ने कोई कहानी सुनाई तो उसको अपनी कहानी बना के बता देता था, तो फिर मुझे था कि मैं कितने लोगों को मिलूंगा। वो एक बीज था शुरू से ही दिमाग में, और मुझे जब पता चला कि ऐसे मर्चेंट नेवी में ऐसे तुम्हें पैसे मिलते हैं घूमने के, तुम दुनिया दुनिया घूमते हो, भाई इससे बेहतर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो जैसे वो एडवेंचरस और जो भी ट्रैवल का, और एक और भी था कि जैसे सोसाइटी से थोड़ा दूर रहना है, वो मुझे लगता है कि सब बच्चों में जब हम बड़े होते हैं तो एक रिबेल किस्म का, एक बगावत तो हर बच्चे में होती है, दूर रहना सोसाइटी अगेंस्ट, कि जो भी तुम चीजें देख रहे हो कि यार ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, लेकिन तुम बच्चे हो, तुम्हें वो अपनी जो एनर्जी है वो चैनलाइज करनी नहीं आती है कई बार, तो तुम फिर ऐसी उटपटांग। तो फिर मुझे लगा कि यार ये फौज सही है, ये अपना एक अलग रहती है, और ऐसे एक देश प्रेम वाली बात भी है ना, कि देश के लिए कुर्बान होना भी बढ़िया फीलिंग लगती थी। और ऐसी ऐसी जगहों पे ये इनके पास एक्सेस है जहां पे जो सिविलियन लोग तो जा ही नहीं सकते, कि तुम कारगिल में जा सकते हो, तुम लेह लद्दाख में पोस्टेड हो, तो ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती थी मुझे। और लेकिन मैं फौज में किसी वजह से नहीं जा पाया, वो जो उनकी SSB इंटरव्यू थी वो नहीं क्रैक कर पाया, तो थोड़ा मैं डिसअपॉइंट भी हुआ। तो उसके बाद लेकिन मुझे लगा कि अच्छा ये नहीं तो ये अच्छा लग रहा है,
1: इसमें मर्चेंट नेवी,
0: मर्चेंट नेवी
1: जी,
0: तो ये करता हूँ मैं, इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, तो इसमें चला जाता हूँ और दुनिया घूमूंगा, इसमें भी यूनिफॉर्म है, पैसा भी अच्छा है, ये भी डिसिप्लिन है, इस वजह से मर्चेंट नेवी में चला गया।
1: जी, क्योंकि आप एक्टर भी हैं, तो एक्टिंग की तरफ जो आपका रुझान है, क्या शुरू से ही आप एक्टर बनना चाहते थे, एक्टिंग की तरफ जाना चाहते थे?
0: शुरू से तो मैं बिल्कुल एक्टर नहीं बनना चाहता था, बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था। जैसे स्कूल में, क्योंकि जब 8वीं 9वीं में थे तो मेरी हाइट थोड़ी छोटी थी, तो बाकी बच्चे बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो फिर थोड़े बच्चे जो स्कूलों में आपको अक्सर जो बड़े हो जाते हैं वो थोड़े बुली किस्म के इंसान भी होते हैं, आपको तंग करते हैं ना
1: जी।
0: तो लेकिन मैं गाँव का था, और मेरा जैसे मैं बड़ा हाजिर जवाबी, और मेरे को बहुत जोक्स क्रैक करना और ऐसे ऑब्जर्वेशन कमेंट करना, ये मेरे को बड़ा, ये जो एक माझे रीजन का एक अपना ह्यूमर है ना, वो मेरे में था नेचुरली। जब थोड़े बड़े हुए तो ऐसे जब थोड़ा थोड़ा लड़कियों की तरफ था ना, तो उन्होंने हमको बुलाना कि आओ भाई हमारे डेस्क पे आके हमें हंसाओ, तो फिर हम, मैं और मेरा दोस्त जाते ऐसे उनको जोक्स सुनाते। तो ये सिलसिला तो मुझे लगता है काफी देर से ही था, लेकिन वो मुझे जब तक पता चला वो थोड़ा टाइम लग गया उस तक पहुंचते पहुंचते कि ये चीज भी की जा सकती है
1: जी।
0: क्योंकि जैसे भारतीय जिंदगी में, या जिस सोसाइटी में, जिस मिडिल क्लास में मैं पैदा हुआ हूं, उसमें मोस्टली तुम्हें एक बॉक्स से आउट सोचने के लिए बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही एफर्ट लग जाता है।
1: कॉलेज में आपने परफॉर्म किया यूथ फेस्टिवल?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे मेरे को कोई थिएटर का कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को बस इतना क्या, अच्छा कुछ तो मैं कर ही लूंगा। जैसे मैं जो भी हमारे जो कॉमेडियंस थे उनके जो सटायरिकल एपिसोड्स थे उनको कॉपी कर लेता था इनिशियली, तो ऐसे परफॉर्म कर देते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो ये था, हर टाइम था। उसके अलावा जो इनफॉर्मल परफॉर्मेंसेज होती हैं वो बहुत ज्यादा थी, जैसे हॉस्टल में 10 बंदों का जमावड़ा लग गया है और मैं एक कहानी सुना रहा हूँ ऐसे किसी इमेजिनरी कैरेक्टर की, या मेरे किसी दोस्त की इन अ स्टोरी कि यार मैंने इसको देखा, ये सुबह उठा हुआ था, मैं वॉशरूम गया तो ये गिरा पड़ा था
1: जी।
0: गिरा पता क्यों पड़ा था? कि

0: लास्ट दिन इसने जिम में जाके बहुत सारी एक्सरसाइज करी और मैंने इसको देखा ये रेंग रेंग कर अपने कमरे तक पहुंचा है। अब इसमें 20% रियलिटी है, 80% मैंने इमेजिनेशन कर दी। सो ऐसी चीजें मैं बहुत करता था।
1: तो आपको कोई एक लाइन बताता था तो आप उसकी स्टोरी डेवलप कर देते थे?
0: जी, उसको जैसे राई का पहाड़ बना देता था।
1: राई का पहाड़ बनाना आपने सीख लिया?
0: जी।
1: शाहबाज जी, आप मर्चेंट नेवी में थे, आपने जिस तरह से बताया कि आप 7 महीने 5 दिन आप लगातार समंदर में रहे और आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए, तो मर्चेंट नेवी से फिर एक्टिंग की तरफ ये जो सफर है आपका किस तरह से शुरू हुआ?
0: मेरे को बहुत जल्द पता लग गया था मर्चेंट नेवी में कि मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिसमें मेरा मिलना जुलना, बातचीत, लोग हो मेरे आसपास। वहां पे लोग तो थे लेकिन मेरा ज्यादा काम, मेरा ज्यादा जो वक्त था वो मशीन्स के साथ बीतता था, तो उससे मेरे में थोड़ी उदासी आने शुरू हो गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये जगह भी मेरे लिए नहीं है। तो इवेंचुअली फिर मैं उस पॉइंट पे, मेरे को पता चल गया जब आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हो कि यार तुम्हारा मन कहाँ है, तो फिर मेरे को फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आई विल क्विट, मैं ये छोड़ूंगा और मैं वापस अपने पंजाब या चंडीगढ़ जाऊंगा। और देन मैं, तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे थिएटर की और एक्टिंग की सिखलाई मिलती है। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, जो भी इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो वो मेरा फर्स्ट एंट्री थी इस आर्ट एक्टिंग की लाइफ में, सिनेमा फिल्म मेकिंग की लाइफ में। तो वहाँ पे 2 साल का मास्टर्स इन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से मैंने पढ़ाई की, जिससे मेरा कॉन्टैक्ट बना थिएटर से। और मुझे तब पता चला कि एक्टिंग की भी पढ़ाई होती है, इतनी सारी मेथड्स हैं एक्टिंग के। तो वो मेरा जो सबसे पहला कॉन्टैक्ट वहाँ हुआ। इवेंचुअली मुझे फिल्म मेकिंग करनी थी क्योंकि मुझे फिल्म मेकिंग ज़्यादा अट्रैक्ट करता था। कुछ ऐसी फिल्में मैंने देखी मुझे जो मेरी ज़िंदगी पे, जिसने इतना असर डाला। और मैं हैरान हो गया कि जब तुम फिल्म देखते हो और तुम्हारी ज़िंदगी पे इतना असर डाल सकती है, तुम्हारा सोचना बदल सकती है। तो मैं बहुत फैसिनेट हो गया इस मीडियम से और मुझे लगा कि फिल्म जो है वो ऐसा एक मीडियम है जिससे मैं बहुत सारे लोगों से बात कर सकता हूँ। तो इस तरह मेरा सफर शुरू हुआ।
1: जी, प्रेरित किसने किया? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिल्मों ने आपको प्रेरित किया, कौन सा ऐसा खास एक मकाम रहा, कौन सा एक ऐसा पड़ाव रहा जहां पे आप फिल्मों से अट्रैक्ट हुए और आपने फिल्म मेकिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया?
0: जी, सो ऐसी एक फिल्म मैंने देखी जब मैं 12वीं कक्षा में था। तब तक मुझे दूर दूर तक कोई फिल्मों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो एक फिल्म मैंने ऐसी देखी, मुझे अभी भी वो रात याद है। मैंने जैसे जब सब घर वाले सो जाते थे तब मैं फिल्में देखता था अपने कंप्यूटर पे अपने कमरे में। तो ऐसी एक फिल्म मुझे मिली, का नाम था, वो अंग्रेजी फिल्म है, इनटू द वाइल्ड। जब वो फिल्म शुरू हुई और जब वो फिल्म खत्म हुई, और अभी ये बात शायद आपको बड़ी छोटी लगेगी कि फिल्म के बाद बंदा ऐसे कैसे चेंज हो सकता है इतना, लेकिन ये मेरी लाइफ की तो रियलिटी है। वो फिल्म जब खत्म हुई तो मैं एक अलग व्यक्ति, या मेरे में जो भी वो भाव पैदा हुए उस फिल्म को देख के, वो देवर अमेजिंग। तो वो फर्स्ट टाइम जो मेरा इस आर्ट फॉर्म के साथ जो इंटरेक्शन था वो उस फिल्म से था। तो उस फिल्म से मुझे ये महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज है, ये बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट, ये तुम्हें चेंज कर सकती है। तो वो एक पहला जो मुझे ऐसा किसी ने जैसे झिझोड़ दिया, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा था। फिर जो फिल्म मेकर्स आपको इंस्पायर करते हैं वो तो बहुत ही हैं, जो एक्टर्स हैं जैसे इरफान, अगर मैं इंडिया की बात करूं, इरफान, नसीर, अभी नसीर साहब के साथ तो मुझे काम करने का मौका मिला, 1 महीना उनके साथ था मैं। फिर अगर मोस्टली मुझे इन्फ्लुएंस किया वेस्टर्न सिनेमा में, यूरोपियन सिनेमा ने। इंडियन फिल्में मैंने बहुत कम देखी हैं, अभी मैं देख भी रहा हूँ सत्यजीत रे, श्याम बेनेगल, लेकिन जो 90s में सिनेमा बनाया ये मैंने बहुत कम देखा है। और ज़्यादा मेरे को इंस्पायर वेस्टर्न सिनेमा से हुआ मैं, जो ये स्टैनली क्यूब्रिक, अभी जो नए फिल्म मेकर हैं पॉल थॉमस एंडरसन, नोलन, ऐसे लोगों को।
1: तो ये जो आपका एक्टिंग का सफर है वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन सी फिल्म की आपने?
0: सो जो मेरा सबसे पहला जो फिल्म का जो डेब्यू जिसको बोलते हैं वो हुआ एक पंजाबी चैनल है, उसकी एक टेलीफिल्म जिसको बोल सकते हैं, उसका नाम था जी जनाब। तो उसमें वो एक पुलिस सटायरिकल कॉमेडी फिल्म थी और उसमें मेरे को पहला एक ऐसे कैरेक्टर अंबर सिंह, जो मैं ऐसे ईमानदार पुलिस वाले का किरदार मैंने निभाया था, तो वो मेरी पहली टेलीफिल्म थी जो टीवी पे आई और उससे मेरा सफर शुरू हुआ। जो कि बाद में वो इतना चला टीवी पे कि उन्होंने उसको बाद में 52 एपिसोड का एक सीरीज बना दिया। फिर उसमें मैं राइटर भी था और उसमें मैं डायरेक्टर भी था, और एक्टर तो था ही, जो अंबर सिंह का कैरेक्टर वो अभी भी चैनल पे चलता है। वो
1: फीचर फिल्में भी की आपने?
0: जी, फीचर फिल्म ऐसे पंजाबी फिल्में कुछ, जैसे जो कमर्शियल हैं गांधी 3, ऐसी फिल्में पंजाबी। अभी एक और फिल्म है अमरिंदर गिल के जो प्रोडक्शन हाउस के साथ, वो भी आएगी। उसके अलावा एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया है गुरविंदर सिंह के साथ, जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं, अन्ने कोड़े ददान, चौथी कूट, जो उनकी कैंस फिल्म फेस्टिवल में, जो बहुत बड़ा एक फेस्टिवल है फ्रांस में, वहाँ प्रीमियर हुई। उन्होंने अभी एक फिल्म बनाई है रहमत, जो कि अजीत कौर एक राइटर है, काफी प्रोलिफिक राइटर है पंजाब की, उनकी कहानियों के आधारित। तो वो उसमें मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर था। वो एक फीचर फिल्म है जिसमें नसीरुद्दीन शाह, मीता वशिष्ठ, जसवंत जफर जैसे जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनके साथ काम करने का मौका मिला मुझे।
1: शाहबाज जी, आपसे बातचीत हम यूं ही जारी रखेंगे, यहाँ पर आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: एक लगान फिल्म का गाना मुझे बेहद पसंद है, वो है राधा कैसे ना जले।
1: जी, आइए सुनते हैं लगान फिल्म का।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस सफर में हमारे हम सफर हैं एक्टर, राइटर और डायरेक्टर शाहबाज सिंह बाजवा। शाहबाज जी, आपके एक्टिंग सफर की हम लोग बात कर रहे थे, तो आप बता रहे थे कि किस तरह से आपका ये एक्टिंग का सफर जो शुरू हुआ, तो एक्टिंग से डायरेक्शन की तरफ किस तरह से आप गए?
1: सो जब मैं एक्टिंग कर रहा था तो मुझे बहुत डिपेंडेंट होना पड़ रहा था जो कहानी कह रहा है, क्योंकि सब ये मानते ही हैं कि जो फिल्म है वो डायरेक्टर्स मीडियम है, एक्टर तो उस पर एक जैसे प्रॉप होता है ना, ऑब्जेक्ट की तरह ही है वो। एक्टर तो वहाँ उस तरह से उस चीज को निभा रहा है जो डायरेक्टर ने सोचा या जो राइटर ने लिखा वो उसको निभा रहा है। तो मुझे लगा कि मेरे पास कुछ और है कहने को, और सिर्फ अभिनय बीइंग एन एक्टर वो कम पड़ जाएगा। तो जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि मैं जैसे बात का बतंगड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना, तो वो तो था ही, राइटिंग कैपेबिलिटीज थोड़ी थोड़ी या इमेजिनेटिव कैपेबिलिटी थी, तो मुझे लगा कि ये लिमिटेड है। तो मुझे नहीं, मुझे डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि मुझे कैरेक्टर ऑब्जर्व करना और उनकी कहानियां लिखना, तो मेरे को वही तो बोलना है मुझे। तो जो भी एक्टर की क्वालिटीज है वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऐसे रीजन से हूँ, माझा रीजन गुरदासपुर, जो जिसमें बहुत ही परफॉर्मेटिव किस्म के लोग होते हैं, जो उनकी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत ड्रामा है, वो नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे बात करेंगे जैसे पता नहीं क्या कोई है ना, उनका अलग एक लहजा है बात करने का, रहे हैं फिर की हो गया वो बैठा ही हैं मैं चाह गर्म, हर चीज में इतना ड्रामा भर के। तो वो एक नेचुरल टेंडेंसी तो थी, लेकिन जो डायरेक्शन का क्राफ्ट है वो मैंने लर्न किया ओवर द टाइम, लोगों को असिस्ट किया, गुरप्रीत चाल जिन्होंने वो जी जनाब लिखी है उनको असिस्ट किया मेरे फॉर्मेटिव ईयर्स में, गुरविंदर सिंह को असिस्ट किया, फिर अभी एक शशांक वालिया करके फिल्म मेकर है यहाँ पे, उनकी अभी एक नई फिल्म जो की फिल्म फेस्टिवल में जल्दी आएगी अनेरे दे पंछी, उनके साथ। तो वो जो क्राफ्ट है वो धीरे धीरे डेवलप किया। सो बेसिकली मुझे अपना वर्ल्ड बना के उसमें कहानियां कहनी थी, सो मुझे लगा कि डायरेक्शन करनी पड़ेगी।
0: डायरेक्शन की शुरुआत कहां से हुई आपकी, कौन सी फिल्म से या किसी सीरीज से?
1: सो सबसे पहले वही जो जैसे मैंने बताया कि जी जनाब में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तो वहां पे मैं लिख भी रहा था, तो वहां पे मैंने थोड़ा सीखा टेक्निकली चीजें, लेकिन जो मैंने अपना थॉट जो सबसे पहले बनाया वो एक मेरा अपना चैनल है यूनाइटेड पंजाब, तो उसमें एक मैंने स्केच बनाया, तो वो स्केच कॉमेडी एक 10-12 मिनट का फर्स्ट मैंने लिखा, उसको डायरेक्ट किया, तो वो एक ऐसे पंजाब के यूथ के बारे में था, उसको सटायरिकल था थोड़ा, तो वो मेरे फर्स्ट डायरेक्टोरियल डेब्यू था। उसके बाद तो फिर मैंने एक सीरीज बनाई यूट्यूब के लिए 5 एपिसोड की, वो भी मैंने खुद लिखी और डायरेक्ट की। अभी मैं एक फिक्शन सीरीज लिख रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि मेरी फीचर फिल्म मैं बना लूँ, जो अभी मैं लिख रहा हूँ।
0: तो क्योंकि आपने बताया कि आप 70s 80s की फिल्में

0: देख रहे हैं आजकल, और खास तौर पर आर्ट फिल्में जो आप देख रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है वो आजकल, क्योंकि शॉर्ट फिल्में भी बन रही हैं
1: जी,
0: तो मेन स्ट्रीम सिनेमा से ये जो शॉर्ट फिल्म वाला या आर्ट फिल्म सिनेमा है वो किस तरह से डिफरेंट है, और आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में एक एक्टर के लिए या डायरेक्टर के लिए या राइटर के लिए इन दोनों में से कौन सा प्रभावशाली रहता है?
1: जी, बहुत बढ़िया सवाल। पहले तो मैं जो ये कमर्शियल सिनेमा, जिसको यहाँ कमर्शियल या मेन स्ट्रीम सिनेमा जिसको बोलते हैं हम, और आर्ट सिनेमा, मुझे ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, मैं जब फिल्म को देखता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ उस फिल्म में, और जो एक्सपीरियंस है वो मैटर करता है। अगर मैं बात करूँ जिस सिनेमा की मैं बात कर रहा था, अगर मैं श्याम बेनेगल की कुछ फिल्मों की बात करूँ, या किसी वेस्टर्न फिल्म मेकर या पॉल थॉमस या नोलन, जो भी, अगर आप ये फिल्म देखते हो आपको कुछ एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत मजा आ जाता है। अगर आप बहुत इमोशनल हो गए तो वो भी एक मजा है, आपको कुछ रेवोल्यूशन हो गया फिल्म देख के कि यार ये सोसाइटी में बड़ा गलत हो रहा है, यार ये तो नहीं होना चाहिए, आपको फिल्म देख के वो एक्सपीरियंस हो गया।
0: बिल्कुल, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आपके बिल्कुल दिल को छू जाती हैं, ऐसे लगता है कि हम वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं।
1: तो बिल्कुल, तो अब आप उसको क्या बोलोगे, आप उसको आर्ट फिल्म बोलोगे या उसको कमर्शियल फिल्म बोलोगे?
0: जी,
1: तो मेरे लिए तो फिल्म है, बढ़िया फिल्म होनी चाहिए। तो मैं तो फिल्मों को ऐसे देता हूँ, अच्छी फिल्म या बुरी फिल्म।
0: जी, तो जो आने वाले दिन हैं, आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, किस तरह की फिल्में या सीरियल या सीरीज आप लोगों तक लेके आने वाले हैं?
1: जी, मेरा जो एक बड़ा पसंदीदा जॉनरा जिसको बोल देते हैं, या जो मेरा राइटिंग का स्टाइल जो बन रहा है बनते बनते, अभी ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत बड़ा राइटर बन गया हूँ, अभी प्रोसेस में हूँ, मैजिक रियलिज्म एक जॉनरा है, कैटेगरी है, जिसमें हम बहुत रोजमर्रा की एक जिंदगी की कहानियां होती हैं, बहुत रियलिस्टिक कहानियां होती हैं, बहुत एक घर की या किसी गांव की, लेकिन उसमें एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लाइफ में एक कुछ जादू छिपा होता है। तो मेरा जो रुझान है ऐसी कहानियों में है, और मेरी अक्सर कहानियों में जंगल, बच्चे ये आ ही जाते हैं, क्योंकि जब जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें दुनिया में, क्योंकि इतनी हमें चीज़ें पता चल जाती हैं, तो फिर एक क्यूरियोसिटी कम हो जाती है लाइफ में, और हम जो एक बचपन में जैसे कुछ भी बहुत जादू ही लगता है कई बार, और मुझे खुद ही याद है कि हम बचपन में जैसे जब मैं 6वीं 7वीं था, हम बहुत बहुत समय ऐसे खेतों में बिताते थे, अकेले पड़े हुए हैं, गोलका नहीं खाते वो लून लगा के वो, तब हम ऐसे लेटे लेटे कोई ऐसे देखते थे, कोई ऐसे बड़ा जादुई सा कुछ हो जाता था कई बार, ऐसे कुछ क्रिएचर देख लेते थे जिसको बहुत जादुई लगता था वो, तो वो चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो अभी मैं एक कहानी लिख रहा हूँ जिसका नाम है कक्कड़तुम्मा।
0: कक्कड़तुम्मा,
1: हाँ, तो ये बड़ा अब्जर्ड शब्द है,
0: बिल्कुल
1: इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये साउंड है।
0: Okay.
1: जैसे कहीं हम बोल नहीं देते, ओए तेरा मुंह के मेदा हो रही चब चबेड़ा जा, हम ऐसे पंजाबी में कई बार बोल देते हैं ना, कैसी बात कर रहा है ये, है ना, छबड़ छबी। तो ऐसा एक शब्द है जो, वो ऐसे एक बच्चे की कहानी है जो ऐसे बचपन में वो ऐसे मेले पे जाता है, तो जब वो मेले से वापस आता है तो एक लड़के को साथ में ले आता है, और वो साथ में आके घर पे जैसे वो जो सत होती है वहां पे बोल देता है कि ये मेरा सगा भाई है, मिल गया मुझे, तो उसका बाप डांटता है कैसी बातें कर रहा है तू, तो वो उस टॉपिक पे वो मसला छिड़ जाता है पूरे गांव में कि ये कहां से आ गया बच्चा। तो ऐसी कहानी है जिसमें काफी मैजिकल और बचपन और ये सारी चीजें हैं।
0: जी, तो आजकल क्योंकि OTT का जमाना है
1: जी,
0: तो आप क्या समझते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म जो है
1: जी,
0: वो किस तरह से जो दर्शक हैं उनको एंटरटेन कर रहा है या किस तरह का प्रभाव उन पर छोड़ रहा है?
1: जी बिल्कुल, OTT प्लेटफॉर्म आने से, मतलब मैं इसको बिल्कुल एक ब्लेसिंग ही मानूंगा, क्योंकि अभी पहले से लिमिटेड था थिएटर्स तक, अभी OTT है तो प्लेटफॉर्म ज्यादा है तो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, पर जब ऐसी कुछ पावर हमें मिलती है तो उसके साथ जो उसकी बुराइयां भी आती हैं कुछ, तो अभी बुराइयां भी हैं, अच्छाइयां भी हैं। तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सारा भांत भांत का फिल्में, भांत भांत की चीजें बन पा रही हैं, अब जो एक सीरीज होती है, सीरीज फॉर्मेट है जो, जिसमें 10 एपिसोड की आप सीरीज देखते हो, तो वो भी OTT की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, क्योंकि थिएटर में सीरीज देखना तो बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क है। तो एक तो ऐसी चीजें कि अलग वेरिड कंटेंट आ रहा है आपके पास, ये डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, लेकिन ऑफ कोर्स मतलब थिएटर का रिप्लेसमेंट नहीं है OTT। जब आप सिनेमा में जाते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है, वो आप ये नहीं बोल सकते कि OTT में देख लेंगे, वो एक अलग एक्सपीरियंस है। लेकिन और जो अभी जैसे ये जो बड़े अदारे हैं, जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी पर्टिकुलर फॉर्मेट इन्होंने बना लिया है, एक लिमिटेड स्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है अपनी सीरीज, अपनी फिल्मों का, तो अभी ऐसा मुझे लगने लग गया कि सब फिल्में जब सब सीरीज अभी बन रही हैं वो सिमिलर एक ही तरह की ही दिखती हैं, वो उसमें डिस्टिंक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हालांकि सिनेमा की अपनी खूबी ये है कि जो हर बंदे का एक विजन है और डिफरेंट चीज़ें बना पाते हो तुम, क्योंकि आपका विजन है। तो अभी मेरे को वो लग रहा है कि वो जैसे ना कॉर्पोरेटाइज हो गया वो, कि अच्छा अभी क्राइम चल रहा है तो क्राइम ही बनाओ, अभी कुछ वल्गैरिटी चल रही है तो वल्गैरिटी बना दो, तो वो एक दिक्कत जरूर है उसमें, अदरवाइज इट्स अ ब्लेसिंग आल्सो।
0: आपने वल्गैरिटी की बात की, तो OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी आपको सीरीज ऐसी देखने को मिलती हैं जो आप परिवार के साथ बैठकर नहीं देख पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे जो लोग इस तरह की जो सीरीज बना रहे हैं,
1: जी,
0: समाज के लिए ये किस तरह की चुनौती है?
1: बिल्कुल चुनौती है, क्योंकि ये तो हमें मानना पड़ेगा कि जैसे एक तो हम ये मानते हैं कि जो आर्ट है, जो कला है, वो एक एज अ शीशा काम करती है सोसाइटी के लिए। तो जो वो कहानियां वो ऐसा तो नहीं है कि वो सोसाइटी से बाहर है, पर जो एक फिल्म मेकर होता है ना, किस तरह से वो कहानी देख रहा है, तो उसकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे बात कर देते हैं उसमें कि नहीं मैं तो वही बनाऊंगा जो मेरा मन है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते आप। ऑफकोर्स आप बनाओगे, लेकिन वो जो आपकी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस नजर से आप देख रहे हो। क्रिमिनल थ्रिलर्स आते हैं ना, उसमें वल्गैरिटी भी होती है। अगर हम बात करें कि कोई ऐसा सीन है जिसमें कुछ रेप की बात है या जो कुछ किसी मोलेस्टेशन की बात है, तो जो वो बंदा उसको देख रहा है वो किस नजरिए से देख रहा है? क्या उसका नजरिया वॉयरिस्टिक है उसको देखने का? क्या वो उस कहानी में बताते हुए सनसनी पैदा कर रहा है ताकि वो कहानी ज्यादा चल जाए? अगर तो वो किसी रेप में या किसी मर्डर में या किसी ऐसी चीज में सनसनी पैदा करके उसको ज्यादा चलाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेरे हिसाब से, इन माय पर्सनल ओपिनियन, वो बहुत गलत बात है। आप तो और जो विक्टिम है उसकी विक्टिमाइजेशन पे खेल रहे हो, तो ये तो बिल्कुल इमोरल बात है।
0: बिल्कुल,
1: तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए, और यही फिल्म मेकिंग क्राफ्ट है।
0: बिल्कुल, देखिए फिल्में बहुत प्रभाव छोड़ती हैं समाज के ऊपर, और जो एक फिल्म मेकर की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज के लिए अच्छा कंटेंट बनाए ताकि समाज उससे कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए। खाली अगर हम लोग पैसा कमाने की तरफ दौड़ेंगे तो समाज के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, और एक आदर्श समाज हम लोग शायद वो बना नहीं पाएंगे कभी।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आप किस तरह से चूज करते हैं जो कंटेंट है ताकि समाज के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़े?
1: एक तो डिस्टिंक्शन पक्का है कि जब कोई भी चीज जो मैं डायरेक्ट करूंगा या जो मैं लिखूंगा, जो मेरे विजन से होगी, जो मेरे नाम से जानी जाएगी, वो जो बेसिकली जब मैं डायरेक्शन करूंगा, तो वो जो मेरे फिलोसफिकल बिलीव्स हैं या जो भी मेरे मॉरल्स हैं, उससे बाहर नहीं होगा कभी भी। क्योंकि अगर वो उससे बाहर हो गया तो फिर तो मेरी स्पाइन ही टूट गई, मेरी कमर ही टूट गई, फिर तो मेरी वॉइस ही खत्म हो गई ना, जो मैं कहना चाह रहा हूं।
0: जी,
1: तो फिर तो मैं काहे का फिल्म मेकर, काहे का कहानीकार।
0: बिल्कुल सही कहा आपने शाहबाज जी। यहां पर हम आपकी पसंद का एक और गीत आपको और सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो इस बार कौन सा गीत सुनवाएं?
1: एक अमित त्रिवेदी का गाना है, लुटेरा फिल्म का, मुझे छोड़ दो मेरे हाल पे,
2: जिंदा हूं यार काफी है।

गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं एक्टर, राइटर और डायरेक्टर शाहबाज सिंह बाजवा। शाहबाज जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो चलते चलते आप

0: हमारे सुनने वालों को, खास तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है जो आप ही की तरह एक्टर, राइटर और डायरेक्टर बनना चाहती है, क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको, क्या संदेश देना चाहेंगे उनको?
1: मुझे लगता है कि मैं फिल्म मेकिंग की अगर बात कर रहा हूँ, अगर फिल्म या स्टोरी टेलिंग की अगर बात करूँ, तो जो मैं जिस चीज़ के पीछे हूँ या जिसको परस्यू कर रहा हूँ, जिस तरह के क्राफ्ट को, वो ये है कि अच्छा और बुरा तो कुछ भी हो सकता है, वो तो जो ऑडियंस है वो ही डिसाइड करेगी। लेकिन जो एक फिल्म मेकर है उसकी एक ही परस्यूट ये होनी चाहिए कि जो भी हम फिल्म बना रहे हैं, जो भी हम कहानी लिख रहे हैं, वो एक तो फ्रेश होनी चाहिए, वो आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, वो आपकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, रादर देन कि किसी फिल्म की तरह वो फिल्म दिख रही है। क्योंकि मोस्टली जब हम नए नए या जब हम फिल्म मेकिंग में आते हैं, जब नए नए हम इस वर्ल्ड में आते हैं, तो हम किसी फिल्म से इंस्पायर हो जाते हैं बहुत, और फिर हम बोलते हैं कि अच्छा मैं ऐसी एक और फिल्म बनाता हूं। तो वो आपकी वॉइस नहीं है, वो तो उस फिल्म मेकर की वॉइस थी। आप उससे प्रभावित जरूर होइए, आप उसकी टेक्निकलिटीज जरूर सीखिए कि उसने ऐसा आइडिया लिया और इसको ऐसे उसने रिप्रेजेंट किया, लेकिन बेसिकली जो आपकी फिल्म है वो तो आपकी वॉइस से ही आएगी। और आपकी वॉइस कैसी बनेगी, जब आपके जो रेफरेंसेज हैं वो रोजमर्रा की रियल जो एक्सपीरियंसेस हैं वहां से आ रहे हैं, जो आपके आसपास जो कैरेक्टर्स हैं, जो आपके आसपास सोसाइटी है, आप उसको समझ पा रहे हो। और मैं इसीलिए मैं बोलता हूँ जो फिल्म मेकर है वो तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, उसको सोसाइटी की समझ, उसको क्लास की समझ, उसको जो भी दुनिया की, हमारी इंडियन सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी समझ, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की समझ, अगर इतनी समझ उसको होगी तभी वो एक जैसे फिल्म में एक दुनिया होती है उसको उसका निर्माण कर पाएगा। सो प्राइमरली हमें वही परस्यूट करना चाहिए जो एक फ्रेश है। जो मेरा पैमाना होता है किसी भी फिल्म को जज करने का, जो सबसे पहला वो यही होता है कि ये जो मैंने फिल्म देखी और ये फ्रेश थी क्या, इसमें जो मैंने विजुअल देखा वो फ्रेश था, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो मेरा पर्सनल पैमाना होता है। तो अगर हम इस चीज को अचीव करेंगे तो डेफिनेटली जो हम कहना चाहते हैं उसके करीब पहुंच पाएंगे।
0: जी शाहबाज जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए।
0: दोस्तों आज सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे एक्टर, राइटर और डायरेक्टर शाहबाज सिंह बाजवा। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी अरुण बावा ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं अश्विनी कुमार। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है। ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। शाम दे 6 वजन वाले ने हुन तो कुछ ही पलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी विच समाचार ही लेकर आंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता और लॉस एंजल्स ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने तक के प्रयास शामिल हैं। श्री शाह आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन को संबोधित

0: कर रहे थे। गृह मंत्री ने आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी।
1: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृह मंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। सभी को सुरक्षित तट पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेंगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूरोप से डीजल की आपूर्ति बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि ईरान विवाद समाप्त होने के बाद पेट्रोलियम की कीमतें कम हो जाएंगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और यातायात के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नई दिल्ली में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लागू है। एक सार्वजनिक सूचना में नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त ने कहा कि अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और अन्य गतिविधियों पर रोक है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों और गुजरात तथा मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून के धीमे पड़ने से हालात अनुकूल होने की उम्मीद है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 49वें ओवर में 7 विकेट पर 316 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ FM 107.2 MHz ਤੇ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान। दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो।
2: श्रोतियों होने गैर फिल्मी गीत असी थानू सुनवा रहे कैलाश खेर दी आवाज़ च। संगीतकार ने कैलाश, परवेश ते नरेश।

0: ਸਰੋਤਿਓ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੈਰ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਾਦੇਸ਼ਿਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा के मंत्रियों और भाजपा विधायकों की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात जारी। श्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे किए। हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक की शुरूआत की। कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से मात दी। श्री मोदी ने अपना खिताब बरकरार रखने के लिए टीम को बधाई दी और एशियाई खेलों में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक और दीपक पुनिया ने कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने मंत्रियों और 48 भाजपा विधायकों के साथ नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। इससे पहले मंत्रियों और भाजपा विधायकों ने नई दिल्ली में हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष कृष्ण लाल मीणा ने बताया,
2: देखिए इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने हमें गुफ्तगू करने के लिए और बुलाने का काम किया, जिस पर चाय पर चर्चा होगी और देश प्रदेश में हम लोग किस प्रकार से और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ये मार्गदर्शन हमें प्रधानमंत्री जी से मिलेगा। अन्य विषयों पर भी चर्चाएं हो सकती है क्योंकि लगभग 2 घंटे के आसपास की मीटिंग रहेगी, तो उसमें बहुत से विशेष चर्चाएं रहेंगी।
1: मिली जानकारी के अनुसार बैठक में राज्य सरकार और संगठन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात आज 12 वर्ष पूरे कर रहा है। मन की बात कार्यक्रम का पहला प्रसारण 2014 में आज

के दिन विजयदशमी के अवसर पर हुआ था। हाल ही में मन की बात का 138वां एपिसोड प्रसारित किया गया। पिछले 12 वर्षों में मन की बात ने देश भर में हो रहे सकारात्मक बदलावों को सामने लाने और नागरिकों को भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने का एक अनूठा मंच प्रदान किया है। हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक की शुरुआत की है। यह 3 महीने का राज्यव्यापी उद्यमिता कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य हरियाणा के सभी 23 जिलों में उद्यमी प्रतिभाओं को खोजना, उन्हें निखारना और आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया। यह कार्यक्रम व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के जनसेवा कार्यकाल को समर्पित है। विचार से निवेशक तक की एकीकृत यात्रा के रूप में तैयार किए गए इस कार्यक्रम के तहत एक राज्यव्यापी पाइपलाइन बनाई जाएगी, जो होनहार विचारों को खोजेगी, उद्यमिता कौशल विकसित करेगी और स्टार्टअप्स व इच्छुक उद्यमियों को मार्गदर्शकों, निवेशकों, राज्य सरकार की सहायता और स्टार्टअप हरियाणा के व्यापक इकोसिस्टम से जोड़ेगी। कुरुक्षेत्र में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि सरकार ने इस सड़क के निर्माण के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित सड़क विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 से पुराने बस अड्डे तक बनाई जाएगी। यह सड़क रेलवे के मार्ग अधिकार में प्रस्तावित है तथा इसके निर्माण के लिए रेलवे से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र और अन्य वैधानिक मंजूरियां लेना अनिवार्य होगा। श्री गंगवा ने बताया कि 7 मीटर चौड़ी इस सड़क के निर्माण पर करीब 5,75,00,000 रुपए की लागत आएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से मात देकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 211 रन बनाए। 212 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान 20 ओवर में केवल 196 रन ही बना सका। इससे पहले बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों में 61 रन बनाए, जबकि तिलक वर्मा ने 22 गेंदों में 51 रन बनाए। शिवम दुबे ने 14 गेंदों में 27 रन बनाकर भारत को 200 रन के पार पहुंचाया। पाकिस्तान के लिए हसन नवाज ने 96 रन बनाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आप यूं ही शेरों की तरह दहाड़ते रहें और अपने शानदार खेल से विपक्षियों को पस्त करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अपना खिताब बरकरार रखने पर पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर श्री मोदी ने कहा कि यह वास्तव में देश के लिए एक खुशी का अवसर है। उन्होंने टीम के सदस्यों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिला व्यक्तिगत गोल्फ में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने पर प्रणवी शरत उरस को भी बधाई दी। उन्होंने कामना की कि यह जीत अधिक से अधिक युवा भारतीयों को इस खेल की ओर आकर्षित करे और उन्हें शीर्ष पर के लिए प्रेरित करें। श्री मोदी ने एशियाई खेलों में रिकर्व व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनने पर कुमकुम अनिल मोहद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि निर्णायक शूट ऑफ में उनका संयम विशेष रूप से सराहनीय था। एशियाई खेलों में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने आज पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया। उन्होंने एक कड़े मुकाबले में उत्तरी कोरिया के विश्व चैंपियन चोंग सोंग हान को 11-7 से हराया। 23 साल के भारतीय पहलवान ने शानदार रणनीति दिखाते हुए मुश्किल प्रतिद्वंदी हान को मात दी। वहीं दीपक पुनिया ने आज दोपहर नागोवा में पुरुषों के 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में मंगोलिया के गनखुयाग गनबातार को हराकर कांस्य पदक जीता। सुजीत कलकल और अमन के स्वर्ण पदक के बाद फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत का यह 3रा पदक है। इन शानदार प्रदर्शनों के साथ भारत पदक सूची में 5वें स्थान पर है। देश के कुल पदकों की संख्या बढ़कर 83 हो गई है, जिसमें 20 स्वर्ण, 26 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर दीपक पुनिया को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपक पुनिया की मेहनत, जुझारूपन और शानदार प्रदर्शन ने देश भर में हरियाणा की खेल प्रतिभा की पहचान को और मजबूत किया है।
एशियाई खेलों में कुरुक्षेत्र के शाहबाद

0: भारत की बेटी नवनीत कौर और साक्षी राणा ने 44 साल बाद भारतीय महिला हॉकी टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवनीत कौर ने प्रतियोगिता में खेले गए सभी मैच में कुल 10 गोल दागकर अपनी प्रतिभा का दम दिखाया। नवनीत कौर ने कहा कि फाइनल मैच में सभी खिलाड़ियों ने अपना 100% दिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने आज सेवा ज्योति कलश यात्रा के करनाल के गांव चौरा पहुंचने पर ग्रामीणों के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सेवा ज्योति कलश यात्रा के माध्यम से प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन तथा 25 वर्षों के जनसेवा कार्यकाल से भी लोगों को अवगत कराया जा रहा है। सेवा संकल्प अभियान के तहत आज पलवल खंड में जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग द्वारा वीर गाथा अभियान एवं सैनिक सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के कल्याण व्यवस्थापक इंद्रजीत ने बताया कि इन कार्यक्रमों के दौरान देश की रक्षा में अपना योगदान देने वाले वीर सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों की गौरव गाथाओं को याद किया गया।
1: आज सेवा संकल्प के कार्यक्रम के तहत सैनिक सम्मान व वीर गाथा का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें वीर नारियों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया है और भूतपूर्व सैनिकों को भी सम्मान दिया गया है। इससे समाज को यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो वीर सैनिक हैं, जो शहीद सैनिक हैं, उनको कभी भुलाया ना जाए, उनको समय समय पर सम्मान दिया जाए और युवा फौज की नौकरी के लिए उत्साहित हों।
0: हरियाणा पुलिस की विशेष कार्यबल एसटीएफ ने 5 लाख रुपए के इनामी अति वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुख्ता जानकारी मिलने पर हिसार एसटीएफ की टीम ने आरोपी को हिसार में राजगढ़ रोड पर बाईपास फ्लाईओवर के पास से काबू किया। आरोपी पंजाब के अबोहर में एक शोरूम मालिक की हत्या के मामले में वांछित था और पंजाब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। पुलिस ने उसके पास से 32 के अवैध पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा के मंत्रियों और भाजपा विधायकों की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात जारी। श्री मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात ने आज 12 वर्ष पूरे किए। हरियाणा सरकार ने स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक की शुरुआत की। कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक के समानांतर नई सड़क के निर्माण को मंजूरी मिली। एशियाई खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम ने T20 के फाइनल में पाकिस्तान को 19 रनों से मात दी। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

નમસ્કાર, એ આકાશવાણીએ હું તુસી સરબજીત કૌર તો પ્રાદેશિક ખબરાં સુણો પહેલાં ઇસ બુલેટિન દીયાં ખાસ ખબરાં। केंद्र सरकार वालों आउंदी हाड़ी रुत 2026-27 दौरान पंजाब के किसानों नूं वड्डी राहत दिंदिया कणक के प्रमाणित बीजा से सबसिडी देने लई 50 करोड़ रुपए की तजवीज मंजूर। पंजाब के सरकारी नशा छुड़ाओ ते मुड़ वसेवा केंद्रा विच जल्द ही HIV हैपेटाइटस बी ते हैपेटाइटस सी की जांच लई ट्रिपल एस स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने आज तरन तारण दाणा मंडी का दौरा करके झोने के खरीद प्रबंधा का जायजा लिया। सूबे विच दिव्यांग व्यक्तियों नूं हुण तक करीब 255 करोड़ रुपए की माली सहायता जारी की जा चुकी है। एशियाई खेडा विच भारत ने शानदार कारगुजारी दिखांदियां मर्दा के हॉकी ते क्रिकेट मुकाबलों विच सोने के तमगे जीते ने। हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आउंदी हाड़ी रुत 2026-27 दौरान पंजाब के किसानों नूं वड्डी राहत दिंदिया कणक के प्रमाणित बीजा ते सबसिडी देने लई 50 करोड़ रुपए की तजवीज नूं मंजूरी दित्ती है। यह जानकारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब के सूबा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों ने सांझी की थी। उन्हां दस्सिया कि केंद्रीय खेतीबाड़ी ते किसान भलाई मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हां नूं विशेष पत्र भेज के इस फैसले दी।

रुकावट नहीं बननी चाहिए थी। कैबिनेट मंत्री ने दस्सिया कि स्कीम तहत इस वेले 2,84,000 के करीब लाभपात्रियों नू नियमित तौर ते माली सहायता मुहैया कराई जा रही है, जिस नाल उन्हां नू आपनिया रोजाना दियां लोड़ां पूरियां करन अते सम्मान नाल जीवन बतीत करन विच सहायता मिल रही है। पंजाब सरकार वालों श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब नूं समर्पित शुरू की गई राज पदरी जागरूकता मुहिम तहत प्रचार वैन बीते दिन ही जिला श्री मुकतसर साहब के तरखाण वाला, कुराई वाला अते करनी वाला विखे पुजी। इस मौके इन्हां पिंडां विच वड्डी गिणती विच पिंड वासियां ने उत्साह नाल शमूलियत की थी। एशियाई खेडां विच हॉकी विच भारत ने मलेशिया नूं 5-1 नाल हरा के सोने दा तमगा हासिल कीता है ते 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक लई सिद्धा क्वालीफाई भी कर लिया है। मर्दां दे क्रिकेट विच भी भारत ने 2020 फाइनल विच रवायती विरोधी पाकिस्तान नूं हरा के सोने दा तमगा हासिल कीता। भारतीय पहलवान अमन सरावत ने फाइनल विच मर्दां दे 57 किलोग्राम मुकाबले विच सोने दा तमगा जित्तिया है। प्रणवी ओट्स गोल्फ विच एशियाई खेडां दा सोने दा तमगा जित्तण वाली पहली भारतीय औरत बन गई है। इन्हां प्रभावशाली कारगुजारियां नाल भारत तमगा सूची विच चौथे स्थान ते पहुंच गया है। देश दे तमगियां दी गिणती 85 हो गई है, जिस विच 21 सोने दे, 27 चांदी दे अते 37 कांसी दे तमगे शामिल ने। आखिर च खास खबरां। केंद्र सरकार वालों आउंदी हाड़ी रूं 2026-27 दौरान पंजाब दे किसानां नूं वड्डी राहत दिंदिआं कणक दे प्रमाणित बीजां ते सबसिडी देण लई 50 करोड़ रुपए की तजवीज़ मंजूर। पंजाब विच सरकारी नशा छुड़ाओ ते मुड़ वसेबा केंद्रां विच जल्द ही HIV हैपेटाइटिस बी ते हैपेटाइटिस सी की जांच लई SSS स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। पंजाब कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक ने अज तरन तारण दाणा मंडी का दौरा करके झोने के खरीद प्रबंधा का जायजा लिया। एशियाई खेडां विच भारत ने शानदार कारगुजारी दिखाउंदिआं मर्दां दे हॉकी ते क्रिकेट मुकाबलियां विच सोने दे तमगे जित्ते। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन रात 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: हुन पेश ने पंजाबी गीत। पंजाबी गीतां दे प्रोग्राम विच तुहाडा स्वागत है श्रोतियो। ए है पहली पेशकश गायक कलाकार ने ब्लिट्स ते जग्गी डी।
4: हाँ जी।

श्रोते एक होर डुएट गीत प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं बोल हैप्पी राय कोटी दे जे के दा संगीत आवाजा ने गीपी गरेवाल ते सुदेश कुमारी दियां।

0: FM 106.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं।
2: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: श्रोते, विशेष जयमाला प्रोग्राम लिए बस थोड़ा जहा इंतजार करो। प्रोग्राम से विविध भारती मुंबई तो रिले करांगे।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देव दर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक्स, कोन्स और हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी देव दर्शन धूप अगरबत्ती कॉर्न व हवन सामग्री।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

आशा है आप इसे पसंद भी करेंगे। पहले मैं आपको अपने गांव की शहर कराऊं। त्रिपुरा के पास एक छोटा सा टाउन है कुमिल्ला, यही मेरा जन्म हुआ और हरे भरे लहलाते खेतों के आंचल में मेरा बचपन बीता। जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था, एक बहुत ही बूढ़ा किसान जिसका नाम था दुखाई खंदकार एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, ये गीत भी मेरे साथ जवान होता गया और मेरे अंदर संगीत सीखने की अभिलाषा जगती गई। ये लोकगीत था लेकिन भावना से भरपूर। इस गीत ने मुझे गाना गाने और संगीत सीखने का शौक दिलाया और मैं सात स्वरों के इस महासागर में कूद पड़ा। दोस्तों, आज मुझे आप लोगों से बातें करने का मौका मिला है तो मैं आपको सबसे पहले खुद वो गीत सुनाता हूँ जिसे मैंने बचपन में बूढ़े किसान से सुना और फिर संगीत सीखने की अभिलाषा जागी।

0: ये है विविध भारती। फौजी साथियों की सेवा में आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जाने माने संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन ने।
1: फौजी भाइयों नमस्कार। रोज आप अपनी पसंद के गीत सुनते हैं, आज हम आपको अपनी पसंद के गीत सुनाएं।

0: संगीला।
1: इस गीत को गाता और संगीत सीखता मैं बालक से युवक हुआ, कलकत्ता पहुंचा और संगीतकार के रूप में काम करने लगा। उन्हीं दिनों उस्ताद फैयाज खान साहब से मुलाकात हुई। उनकी एक रचना मुझे बेहद पसंद आई और मैंने शाहिद लतीफ़ की फिल्म बुज़दिल में पेश किया। लेकिन केवल उनकी रचना का अंग है और शुरू के बोल यानी झन झन झन पायल बाजे रामा, बस इसके बाद के सारे बोल शैलेंद्र जी ने लिखे। फयाज खान साहब की इस चीज़ को फिल्म में यूज़ करने से पहले मैंने उनसे परमिशन ले ली थी। अंतरे के बोल में कीर्तन का स्टाइल है लेकिन बाकी सारा अंग खान साहब का ही है। लीजिए आज मेरी ओर से ये गीत सुनिए।

अब मैं आपको अपने साथी अपने दोस्त नौशाद साहब की संगीत रचना सुनवा रहा हूँ। फिल्म है कोहिनूर। इस गीत को मैं जब भी सुनता हूँ मुझे लगता है नौशाद साहब ने ये कंपोजिशन बड़े प्यार से और बड़ा मज़ा लेकर तैयार की है। किसी राग को मुश्किल बनाकर पेश करना आसान है, मगर किसी मुश्किल राग को आसान बनाना बड़ा मुश्किल काम है, और नौशाद साहब ने इस गाने में यही कमाल किया है। राग का रूप ज़रा सा भी नहीं बदला और रचना इतनी आसान तैयार हुई कि हर एक को पसंद आई। लीजिए, प्रस्तुत है।

कि मैं अपनी पसंद की सारी चीजें आपको सुनवा सकूं। आइए अब मैं आपकी भेंट कल्याण जी आनंद जी से करवाता हूं। जैसा इन दोनों का नाम है वैसा ही काम है। अपनी कंपोजिशन से संगीत का कल्याण करते हैं और सुनने वालों को आनंद पहुंचाते हैं। ये दोनों साथी बड़े हंसमुख हैं, सीधे हैं, बड़ी मेहनत से काम करते हैं और घमंड यानी प्राउड इनमें बिल्कुल नहीं है। मुझे कल्याण जी आनंद जी की एक रचना बहुत पसंद है। इन लोगों ने पुराने रंग को नए ढंग से बड़ी कामयाबी से पेश किया है। आप भी सुनिए।

फौजी भाइयों, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। ऐसी चीजें कम है जिसे सारे लोग पसंद करें। गानों का भी यही हिसाब है। हम लोग कंपोजिंग करते हैं, किसी को कोई धुन पसंद आती है तो किसी को नहीं। लेकिन शंकर जयकिशन का जवाब नहीं, ऐसी कंपोजिंग करते हैं जो सबके मन को मोह लेती है, जैसे मेरा जूता है जापानी। ये गीत हमारे देश में तो पसंद ही किया गया। मैंने रूस में भी इस गाने को ग्रामोफोन की दुकान पर, होटलों में और घरों में बाजते हुए सुना। इस गाने में शैलेंद्र जी ने भी अपनी कविता की चरम सीमा दिखाई है। सीधे साधे बोलों पर इतना सुंदर गीत लिखना केवल शैलेंद्र जी का ही काम है।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
1: सुबह जलाओ शाम जलाओ
2: देव दर्शन धूप।
3: एड्स एचआईवी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
4: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
3: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
4: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
3: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

अलग अलग सिचुएशन पर गीत कंपोज करना आसान है, मगर फिल्म के थीम सॉन्ग को कंपोज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि थीम सॉन्ग फिल्म के साथ साथ अलग अलग सिचुएशन पर चला करता है और फिल्म की कहानी तथा थीम दोनों से ही संबंधित रहता है। इस तरह का एक गीत मदन मोहन ने बड़ी कामयाबी से तैयार किया। फिल्म है मेरा साया, गीत के बोल है मेरा साया साथ होगा, और ये गीत साये की तरह सारी फिल्म में चलता रहता है। कहानी पल भर को भी अपने थीम से अलग नहीं हो पाती। जितनी मेहनत और समझदारी से मदन मोहन ने इसे कंपोज किया, उसी तरह राजा मेहदी अली खान ने इसे लिखा भी है। ये गीत थीम सॉन्ग की हैसियत से एक कामयाब और यादगार गीत है।

बल पड़ता है बस वही उनके गले की सुंदरता है और यही बात किसी दूसरी आवाज में नहीं, तो फिर क्यों ना इनसे एक गजल भी सुन ली जाए। लीजिए बेगम अख्तार से गजल सुनिए, गजल की खास स्टाइल में।

0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं विशेष जयमाला कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना, समझदार वीरे ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: रचनाओं में इसे बहुत प्यार करता हूँ और शायद आप लोगों ने भी मेरी तरह ही इसे प्यार किया।

अब इस युग के महान कलाकार उस्ताद बड़े गुलाम अली खां को भी सुनिए। इनकी गाई हुई जो ठुमरी मैं आपको सुनवा रहा हूँ सदा बहार है। इस ठुमरी में खां साहब ने पंजाब और पूर्व के अंग को मिलाकर गाया है और बड़े कंट्रोल से गाया है कि पंजाब का अंग जरूरत से ज्यादा नहीं आया। बड़े गुलाम अली खां साहब की ये ठुमरी हमेशा याद की जाएगी।

फौजी भाइयों, लोक गीत और शास्त्रीय संगीत के मिले जुले गीत आपने सुने। संगीत के इसी संगम में मैं आज तक डूबा हुआ हूँ। शास्त्रीय संगीत में मेरे उस्ताद है उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तथा लोक संगीत मैंने अपने गांव में तथा भारत के और इलाकों में जा जा कर सीखा। शायद आप ये सवाल करें कि सबसे ज्यादा किसे प्रेम करता हूँ।

तो दोस्तों मैं सबसे ज्यादा मट्टी को प्यार करता हूँ। संगीत मेरा शौक है। आइए अब फिर अपने बिछड़े हुए गांव को लौट चले, जहाँ वो बूढ़ा किसान अभी तक आवाज दे रहा।

0: मंगलों में मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में।
1: फौजी साथी सुन रहे थे जाने माने संगीतकार और गायक सचिन देव बर्मन द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम। ये रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई विविध भारती के संग्रहालय से।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी में इन दिनों हम आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियां। आइए आज सुनते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का पहला भाग, वाचन स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का।

मैं विदेश लौटकर छोटा नागपुर के एक चंद्रवंशीय राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। उन्हीं दिनों मेरी देशव्यापी कीर्ति की पटल पर अचानक एक छोटी सी कहानी खिल उठी। उन दिनों गगन टेसू की आभा से विभोर था। शाल वृक्ष की टहनियों पर मंजरियां झूल रही थीं। मधुमक्खियों के समूह मंडराते फिर रहे थे। व्यापारी लोगों का लाख संग्रह का समय आ गया था। बेर और शहतूत के पत्तों से रेशम के कीड़े इकट्ठे किए जा रहे थे। संथाल जाति महुए बीनती हुई फिर रही थी। नूपुर की झनकार के समान गूंजती हुई नदी वहीं पर बही जा रही थी। मैंने स्नेह से उस नदी का नाम रखा था तनिका। अपनी झोली में रंग बिरंगे पत्थरों को भरे मैं कोठी को लौट रहा था, ये सोचकर कि अपने विज्ञान शाला में इनकी परीक्षा करूंगा। निर्जन वन में अकेले आदमी का समय काटना कठिन सा हो जाता है, अतः मैंने संध्या के बाद का समय प्रयोग के लिए नियत कर लिया है। डायनोमा द्वारा बिजली की रोशनी कर बैठ जाता हूँ। नाना प्रकार के रासायनिक द्रव्य, माइक्रोस्कोप और तराजू लेकर इसी प्रकार बैठे बैठे कभी कभी आधी रात हो जाती है। मुझे आज विशेष खोज के बाद मैग्नीज के चिन्हों का आभास मिला था, इसलिए मेरी वापसी आज विशेष उत्साह के साथ हो रही थी। उस वातावरण में कौवे कांव कांव करते हुए सिर पर से अपने अपने नेड़ों की ओर बढ़े जा रहे थे। इसी समय मेरे सामने आकर एक बाधा खड़ी हो गई। उस निर्जन पथ के एक टीले पर पांच शाल वृक्षों का एक समूह जैसा खड़ा था। उसके झुटपुट में बैठे हुए व्यक्ति को केवल एक ही ओर संधि से देखा जा सकता था। उस समय मेघों के अंतराल से एक आश्चर्यमयी दीप्ति फूट कर निकल रही थी। उस छायामय वातावरण के

भीतर गगन की लालिमा मानो किसी दिवंगना के खुले आंचल से गिरने वाले स्वर्ग की तरह चितरा रही थी। उसी विशेष ज्योति के पथ पर वो कोमलांगी बैठी थी। उस पेड़ के तने से टिककर दोनों पैरों की छाती के समीप समेटे वो मन लगाकर कुछ लिखे जा रही थी। मैं वृक्ष की आड़ में खड़ा खड़ा केवल उसकी ओर ताकता भर रहा। हृदय के आगारों में एक अनोखी छवि अंकित होने लगी। अपनी विशद जानकारी के पथ पर मेरा हृदय कितने ही चक्कर काटकर प्रवेश द्वार तक आ पहुंचा था, किंतु मैं सदैव ही उससे खिसक जाता था। लेकिन आज ऐसा जान पड़ा मानो जीवन के किसी चरम संघर्ष में आ गया हूं। ये कैसे हो गया उसका मुझे पता ही नहीं। मैं तो सदैव से अपने को पर्वत की तरह नीरस समझता आया था। अनायास ही भीतर से एक झरना फूट पड़ा। उस बाला को भी मेरे खड़े होने का कुछ आभास सा हो गया। उसने लिखना बंद कर दिया किंतु उठ न सकी। मैंने सोचा कि कहूं क्षमा कीजिए, किंतु कैसी क्षमा? मैंने ऐसा कौन सा दंडनीय कार्य किया था? यही सोचता हुआ मैं अपनी कोठी की ओर बढ़ा चला आ रहा था, तभी मेरी दृष्टि नीचे पड़े दो टुकड़ों में फाड़े हुए किसी पत्र के लिफाफे पर जा पड़ी। मैंने उठाकर देखा, नाम भवतोष मजूमदार, आईसीएस, मुकाम छपरा, हाथ की लिखावट लड़कियों जैसी, टिकट लगा हुआ है लेकिन उस पर डाकखाने की मुहर नहीं। मेरी अक्ल ने झट समझ लिया कि फटे पत्र के लिफाफे पर किसी दुखांत नाटक का क्षत चिन्ह विद्यमान है, और मैंने उस लिफाफे के रहस्य को जानने का भी संकल्प कर लिया। जियोलॉजी के अध्ययन अभ्यास के साथ भीतर ही भीतर इस रहस्योद्घाटन का काम भी चल रहा था। जिस समय मैं रेडियम का कण पाने की आशा लेकर अनुसंधान में डूबा हुआ था, उस समय मैंने कुसुमित शाल वृक्षों की छाया और प्रकाश के बंधन में कंचन को देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि इससे पूर्व भी बंगाली बाला को निहारा था, किंतु इस स्वतंत्र और एकांत वातावरण में देखने का अवसर कभी नहीं मिला। यहाँ उसकी सलोनी देह की कोमलता के साथ वन के फूल ने अपनी भाषा का स्वर मिला दिया। विदेशी कोमलांगियों के दर्शन तो बहुत किए थे, संभवतः वे भली भी लगी थीं, किंतु बंगाली बाला को पहली बार ही इस प्रकार से देखा कि उसकी समग्रता को उपलब्ध किया जा सके। उसे देखकर ये प्रतीत नहीं होता कि उसका संबंध किताबों से छूटा या नहीं। बहुत दिन पहले बाल्यावस्था में किन्हीं बसु महाशय का जो गीत मैंने सुना था और जिसे सुनकर भी भुला दिया था, न जाने क्यों ऐसा जान पड़ा कि उस राग की सहज संगीनी में इसी बंगाली लड़की के रूप की जो भूमिका व्यंजित है, वो आज मेरी आंखों के समक्ष साकार हो उठी है। जियोलॉजी शास्त्र में पढ़ा था कि पृथ्वी के नीचे छुपी हुई आग्नेय सामग्री सहसा तेज भूकंप से आंदोलिता अवस्था में ऊपर आ जाती है। आज अपने ही निम्न स्तर के अंधकार में छुपी हुई उसी तपी भली सामग्री को सहसा ऊपर के प्रकाश में देखा। कठोर विज्ञानी नवीन माधव के अंतस्थल में इस प्रकार आंदोलिता अवस्था की मैंने कभी आशा नहीं की थी। सुनो कहानी, आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन। पता लग गया कि प्रतिदिन तीसरे प्रहर जब इसी मार्ग से काम से लौटा करता तो वो मुझे विशेष दृष्टि से देखा करती, पर उसकी दृष्टि में क्या है ये अब तक मैं समझ नहीं सका था। कभी कभी मार्ग चलता हुआ पीछे की ओर मुड़कर देख लेता तो ऐसा लगता कंचन मेरे ओझल होने की मार्ग की ओर देख रही है। मुझे मुड़ता देख वो अपनी दृष्टि घुमाकर उन कागजों की ओर कर लेती जिन पर बैठी वो लिखा करती थी। मेरे विज्ञानी मन को ऐसा लगा कि वो किसी को पाने के लिए इतना कठोर व्रत कर रही है। भवतोष विलायत से लौटकर छपरे में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त हो गया है।
विलायत जाने से पूर्व इन

दोनों में यही समय रहते गंभीर प्रणय हो गया था, परंतु अब पद की नियुक्ति के बाद कोई विशेष विप्लव घट चुका है। असल बात क्या है इसकी तो जानकारी करने से ही पता लगेगा। मेरे लिए जानकारी करना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि मेरे सहपाठी बंकिम बाबू पटना विश्वविद्यालय में काम करते थे। उनको पत्र लिखकर डाल दिया, बिहार की सिविल सर्विस में कोई भवतोष महाशय हैं, मेरे किसी मित्र ने अपनी लड़की के लिए इन्हें पसंद किया है, इस कार्य में मेरा सहयोग चाहते हैं। रास्ता पथरीला तो नहीं, इसका पूरा पता लगाकर मुझे लिखो तो मैं आभारी रहूंगा। उन महाशय का विवाह के लिए क्या मत है ये भी आप लिखें। पत्र का उत्तर मिला, रास्ता पथरीले से भी अधिक बढ़कर है, उसकी राय के विषय में सुनो। जब मैं कॉलेज में डॉक्टर अनिल कुमार का छात्र था, जितने साधारण उनका पांडित्य था उतना ही सरल उनका हृदय। उनकी नातिन को देखो तो पता लगेगा कि सरस्वती देवी ने उनकी साधना से संतुष्ट होकर उनके बुद्धि लोक को ही प्रकाशित नहीं किया, बल्कि वो रूप सुधा को लेकर उनकी गोदी में भी आ गई हैं। तुम्हारा शैतान भवतोष उनके इसी स्वर्ग लोक में न जाने कहां से आन पड़ा। उसकी बुद्धि प्रखर थी और वाक्पटुता में वो निपुण। पहले धोखा खाया डॉक्टर साहब ने और बाद में उनकी नातिन ने। विवाह संबंध निश्चित हो चुका था, प्रतीक्षा थी भवतोष के विलायत से लौटने की। वहां का सारा खर्च डॉक्टर साहब ने दिया था। सिविल सर्विस की परीक्षा पास करके जब वो भारत आया और यहाँ के किसी उच्च पदाधिकारी की कन्या से विवाह कर लिया, उसके इन कुकृत्य और लज्जा से क्षुब्ध होकर डॉक्टर साहब नौकरी को तिलांजलि देकर अपनी नातिन के साथ कहाँ चले गए इसका कुछ पता नहीं। पत्र को पढ़कर कंचन की परिस्थिति का पूर्ण आभास हुआ, तभी दृढ़ संकल्प किया कि उसको लज्जा और अवसाद से मुक्त करूंगा। दिवाकर अस्ताचल की ओर जा रहे थे, संध्या अपना आवरण फैला रही थी। ये समय कंचन का घर लौटने का हो गया था। तभी कोई गंवार उसके हाथ से लिखे हुए पृष्ठ छीनकर भाग खड़ा हुआ। मैंने उसका पीछा किया और उन पृष्ठों को पाने में सफल भी हो गया। मैंने वे सब कंचन को लौटा दिए। अपनी संपत्ति को वापस आया देख कंचन ने स्निग्ध दृष्टि से देखते हुए कहा, सौभाग्य से आप। मैंने कहा, भाग चले थे कि वो आया, इसका आशय स्पष्ट है? मैं समझी नहीं। यही कि उसकी सहायता से आपके साथ ही पहली बात हो गई। इससे पूर्व तो वही सोचता रहता था कि कैसे और क्या बोलूं, किंतु वो तो एक, क्या एक डाकू? नहीं नहीं, वो डाकू नहीं, वो मेरा ही सिपाही था। कंचन अपने गहरे रंग की साड़ी का छोर पकड़ अपने मुंह पर रख खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसी के रुकते ही उसने कहा, काश काश ये सच होता, काश ये सच होता तो बड़ा मजा आ जाता। जिसके यहाँ डाका पड़ा उसको उद्धार करने वाले के लिए क्या होगा भला? उसे घर ले जाकर चाय पिला देती और इस नकली उद्धारकर्ता का क्या होगा? हाँ उसने जो चाहा था मिल गया। क्या मिल गया? परिचय की पहली बात और क्या, बस यही। हाँ मैं चाहता हूँ। क्या चाहते हैं आप? बोलिए, बातों का क्रम अब समाप्त न हो जाए। समाप्त कैसे होगा? अच्छा, यदि आप होती तो पहली बात आप क्या कहती बताइए। मैं तो केवल यही पूछती कि सड़कों पर से पत्थर चुनने में लड़कपन नहीं लगा आपको? फिर आपने पूछा क्यों नहीं? डर लगता था। डर मुझसे? हाँ, दादू से सुना था कि आप बड़े विद्वान हैं। उन्होंने विलायत से छपा हुआ आपका लेख पढ़ा था और उन्होंने उसे समझने का प्रयत्न किया, पर मैं नहीं समझ सकी थी। तभी किसी की आवाज सुनाई दी, दीदी कहाँ हो तुम? अरे अंधेरा हो गया है।

0: कल समय अच्छा नहीं है दीदी। डॉक्टर साहब के उपस्थित होते ही मैंने उनके चरणों की धूल लेकर प्रणाम किया। वे तनिक सहम गए, परिचय दिया, मेरा नाम नवीन माधव सेन गुप्त है। सुनो कहानी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी कंचन का पहला भाग, वाचन स्वर था ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले शनिवार को सुनो कहानी के अंतर्गत।
1: सुनो कहानी।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राहत फतेह अली खां और सुजैन डिमेलो की आवाज से। फिल्म का नाम है वीर, बोल गुलजार के संगीत साजिद वाजिद का।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
3: तो मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार, तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
2: 6 अक्टूबर

0: सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए श्रेया घोषाल, मीनल जैन और अन्वेषा को। संगीत ए आर रहमान का, बोल इरशाद कामिल के। फिल्म का नाम रांझणा।

0: जापान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो हैं

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कृष्णा का संगीत बद्ध किया और राजशेखर कलिका तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत, आवाज शफाकत अमानत अली की।

और ये है चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश दीपाली साठे की आवाज में। फिल्म का नाम है हमारी अधूरी कहानी। वो लिखे रश्मि विराग ने, संगीत तैयार किया है जीत गांगुली ने।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहोद और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज 5वें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने जीएसटी, दिवालियापन संहिता और 4 श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: रियल जीडीपी ग्रू 7.8% इन क्वार्टर 1 ऑफ FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा।
1: इन क्वार्टर 1 ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स आर एट मल्टी डिकेडनल लो।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में लगभग 61% का विस्तार हुआ है और 2014 से परिचालन में आने वाले हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। उन्होंने ये भी बताया कि पीएम मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक बिना गारंटी वाले ऋण स्वीकृत किए गए हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौ पालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एफएसएल के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर

0: दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने 11 जिलों के करीब 35,000 गोपालकों के इस सम्मेलन में गोशालाओं के लिए 101 करोड़ रुपए दिए। श्री शाह ने उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले डेयरी प्लांट का वर्चुअली भूमि पूजन भी किया। श्री शाह ने कहा कि भोपाल में 12 करोड़ की लागत से केंद्रीय प्रयोगशाला बनाई गई है और शिवपुरी में मिनी डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसमें गोवंश और भैंस की नस्ल सुधार का काम होगा। गोपालक सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री ने भेल दशहरा मैदान में ही नए आपराधिक कानूनों पर मध्य प्रदेश पुलिस की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून अपनी सरकार और प्रशासन को बचाने के लिए थे, लेकिन अब नए कानून नागरिकों के सम्मान, संपत्ति और शरीर की रक्षा के लिए हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। देश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की इस उपलब्धि पर श्री अमित शाह ने कहा कि नवप्रीत सिंह नवाब विर्क की फर्जी पहचान से तुर्की की नागरिकता हासिल करके अफगानिस्तान से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता था। गृहमंत्री ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों के कुल 288 भगोड़ों को भारत वापस लाया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश के सत्यवेदु मंडल की श्री सिटी स्थित एक निजी औद्योगिक इकाई में आज बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की और आवश्यक उपाय करने तथा शोक संतप्त परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल श्रमिक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर सार्थक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की बेहतर सेवा करने और जन कल्याण के लिए और अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि इस सोच को नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा के रूप में किस तरह साकार किया गया है।
3: सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना भारत के नई दिल्ली स्थित केंद्रीय प्रशासनिक और नागरिक क्षेत्र को नए रूप में विकसित करने की एक वृहद परियोजना है। इसके प्रमुख घटकों में नया संसद भवन, कर्तव्य पथ और एकीकृत केंद्रीय सचिवालय शामिल हैं। इसका उद्देश्य अत्यधिक कार्यात्मक और उद्देश्यपूर्ण बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराकर प्रशासनिक दक्षता तथा कार्यकुशलता को और मजबूत करना है। केंद्र सरकार के सभी 51 मंत्रालयों को 10 एकीकृत केंद्रीय सचिवालय भवनों में एक साथ लाने से कर्मचारियों, दस्तावेजों और संसाधनों की आवाजाही सुगम होगी। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नए संसद भवन के निर्माण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत देश के विभिन्न राज्यों से सामग्री मंगाई गई थी। नए संसद भवन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह केवल एक भवन नहीं है बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है।
4: ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। ये नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श है।
3: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

0: कला के छात्र सुधांशु रघुवंशी ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि नए संसद भवन में देश की कला, संस्कृति और विविधता को दर्शाया गया है।
1: भारत की नई संसद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत उसने भारतीय संस्कृति को पुनः एकमेक करने का प्रयास किया है।
0: पर्यावरण संतुलन सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के केंद्र में है। इन परियोजनाओं के परिणाम स्वरूप हरित क्षेत्र में समग्र रूप से वृद्धि होगी। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। यूक्रेन ने रूस के साथ संभावित युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को अब तक मिले प्राप्त 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्री सिबिहा ने कहा कि यूक्रेन ऊर्जा अवसंरचना और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार यूक्रेन संघर्ष के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए बहुत अच्छे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में कुवैत के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले में 5 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दूतावास ने MT काजिमा 3 पर सवार 5 भारतीयों के बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों से समन्वय किया। दुबई के युवराज हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने आज भारतीय पायलट स्मिथ के साहस की सराहना की। अस्पताल में कैप्टन से मुलाकात के दौरान उन्होंने संभावित बड़े हादसे को टालने के लिए स्मिथ की प्रशंसा की। बुधवार को दुबई से तलवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की संभावना से इंकार किया है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने बाजार में ईंधन की उपलब्धता बढ़ाने का आश्वासन दिया है, इससे ऊर्जा की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। और अधिक जानकारी दे रहे हैं प्रशांत कुमार।
4: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। कुश्ती के 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में अमन सहरावत ने स्वर्ण और 97 किलोग्राम वर्ग में दीपक पूनिया ने कांस्य पदक जीता। अंतिम पंघाल ने महिला 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उधर गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जबकि टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। महिला रिकर्व तीरंदाजी में कुमकुम मोहोद ने स्वर्ण और नीरज चौहान ने पुरुष रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है।
2: कर्नाटक में सूखे की स्थिति का आकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय केंद्रीय दल आज बेंगलुरु पहुंचा। कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू के नेतृत्व में ये दल 6 अक्टूबर तक सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगा। मौसम विभाग ने कल केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरलम में कल तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब

0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, पिछले एक दशक में राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश और निरंतर सुधारों के माध्यम से भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का पूर्ण कार्यान्वयन भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में परिवर्तन लाएगा। आंध्र प्रदेश में श्री सिटी के एक निजी औद्योगिक इकाई में बॉयलर फटने से 4 श्रमिकों की मौत। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी और क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीते। पहलवान अमन सहरावत, तीरंदाज कुमकुम मोहन और गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने आज 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 21 स्वर्ण सहित 85 पदकों के साथ पदक तालिका में 4th स्थान पर। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।
2: प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर को फिल्म बदलते रिश्ते में सुना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था बोल अनजान के।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
3: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
2: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
2: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर,

दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

और ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अनामिका फिल्म से। आशा भोसले ने इस गीत को गाया है, लिखा है बजरंग सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया है आरटी बर्मन ने।

इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ, अब दीजिए इजाजत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।
1: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
0: दोस्तों नमस्ते, आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे मेरे यानी अमरकांत के साथ।

ज्योति प्रकाश दत्ता यानी जेपी दत्ता का जन्म 3 अक्टूबर 1949 को एक पंजाबी परिवार में हुआ। आपके पिता श्री ओपी दत्ता फिल्म निर्देशक और कहानीकार थे, यानी जेपी दत्ता को फिल्मी माहौल विरासत में मिला। तो ये तो शायद उनके बचपन में ही तय हो गया होगा कि उन्हें फिल्मों में ही अपना करियर बनाना है।

निर्माता निर्देशक जेपी दत्ता फिल्मी दुनिया और दर्शकों के बीच जाने जाते हैं युद्ध की पृष्ठभूमि पर फिल्म बनाने वाले के रूप में।

जेपी दत्ता को वॉर फिल्में बनाने में महारत हासिल है और इसीलिए उन्हें 1998 में नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम प्रेसिडेंट फिल्म बॉर्डर के लिए सम्मानित किया गया।

बॉर्डर फिल्म का ये गीत संदेश आते हैं, ये आज भी फौजी भाइयों के बीच ही नहीं, उनके परिवारजनों और तमाम देशवासियों के बीच ये गीत बहुत लोकप्रिय है। जेपी दत्ता द्वारा बनाई गई, निर्देशित की गई वॉर फिल्में हैं बॉर्डर, LOC और बॉर्डर 2। जेपी दत्ता ने बंटवारा, यतीम और गुलामी जैसी जो फिल्में बनाई वो भी लीक से हटकर फिल्में रही हैं। जेपी दत्ता द्वारा बनाई फिल्म रेफ्यूजी, इस फिल्म से अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपना करियर शुरू किया। रेफ्यूजी में सीमा विवाद को जेपी दत्ता ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी फिल्म रेफ्यूजी में पिरो दिया और दर्शकों के सामने एक अलग तरह की फिल्म के रूप में पेश किया।

0: फिल्म निर्माता और निर्देशक जेपी दत्ता पर केंद्रित रमेश गोखले द्वारा प्रस्तुत आज के इस कार्यक्रम में आलेख और स्वर अमरकांत का था। अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। बस थोड़ी ही देर में प्रस्तुत होगा छाया गीत, कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वजरदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: बीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: ये नूर अच्छा लगता है, तू बोलती है तो लफ्जों में बहारें जागती हैं। तेरे लहजे का ये मीठा दस्तूर अच्छा लगता है, हवा भी रुक के सुनती है तेरी आवाज की खुशबू। तेरी बातों का दिल पर ये फितूर अच्छा लगता है, तेरी आवाज जब छेड़े कोई भूली हुई गजल, हर एक नगमे में तेरा ये गुरूर अच्छा लगता है।

ख्याल से दिल में रोशनी बिखरती है, मेरी हर सांस में खुशबू तेरी ही महकती है। तेरी नजर जो कभी मेरी नजर से मिलती है, वक्त कुछ पल के लिए यूं ही ठहर सा जाता है। तेरे कदमों की आहट जब सुनाई देती है, दिल की धड़कन में कोई गीत बहने लगता है।

मुस्कुरा दे तो मौसम भी बदल जाते हैं, चांद भी रात में कुछ और खुशनुमा रहता है। तेरी बातों में जो ठहराव है वो क्या कहिए, दिल को हर हाल में संभाले रहता है। तेरे होने से मुकम्मल सी लगती है दुनिया, वरना इस दिल में कहां कोई तेरे अलावा रहता है। मैंने मांगा ही नहीं और कोई ख्वाब कभी, तेरा चेहरा ही मेरी चाहत का नजारा रहता है।

अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं छाया गीत। तेरी हंसी छूती है जब मेरे ख्यालों को, दिल मेरा फूल सा खिला रहता है। तेरी आवाज का असर कुछ ऐसा है मुझ पर, दूर रहकर भी तू करीब सा रहता है। तेरे खामोशी में भी सुनता हूँ तेरी बातें, तेरा एहसास मुझ में समाया रहता है। तेरे आने की खबर भर से महक उठती है शाम मेरी, जैसे मौसम कोई खुशगवार रहता है। तेरे होने से सुकून मिलता है इस दिल को, तेरा ख्याल हर लम्हा मुझे थामे रहता है।

आंखों का असर किस तरह बयान करूं। एक नजर थी मगर सदियों की तलाश ही मंजिल थी। तू मिला तो मुझे खुद से भी मोहब्बत होने लगी। तेरे आने से मेरे होने की मुझे वजह मिली। तेरे बिन भी तेरा एहसास मेरे साथ रहा।

तू जो चुपचाप मेरे सामने बैठा रहा, उस खामोशी में भी एक मीठी सी शरारत थी। अब ना मंजिल की तमन्ना, न सफर की फिक्र रही, तेरा हाथ साथ हो हर घड़ी, दिल को बस इतनी ही चाहत थी। न कोई वादा मांगा, न कोई कसम तुझसे, बस तेरे साथ की ख्वाहिश ही मेरी इबादत थी। अब जो तू साथ है तो और क्या मांगू मैं, मेरी हर धड़कन में बस तेरी ही मोहब्बत है।

0: तेरी नजर से जो गुजरा तो ख्वाब हो गया, ये दिल भी तेरे इश्क में बेहिसाब हो गया। तेरे कदमों की आहट ने छुआ जब दिल को, सूना सूना सा मेरा घर भी गुलाब हो गया। तेरी हंसी ने मेरी शाम को सवारा यूं, जैसे वीरान फलक पर कोई आफताब हो गया। मेरे ख्याल की बारिश जो बरसी रात भर, हर एक जख्म मेरे दिल का लाजवाब हो गया। तेरे साथ जो गुजरा वो पल ठहर सा गया, वक्त जैसे कोई खूबसूरत किताब हो गया।
1: कहां से लाई हो जान।

0: वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। पेश ने मुख प्रदेश खबरां। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रियों ते 48 भाजपा विधायकों समेत अज नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। कुरुक्षेत्र विच रेलवे एलीवेटेड ट्रैक दे समानांतर एक नवी सड़क बनाई जाएगी, सरकार तो मंजूरी मिल गई है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियाई खेडां दे फाइनल विच पाकिस्तान नूं हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरुष क्रिकेट टीम नूं अपना खिताब बरकरार रखण ते वधाई दित्ती। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने एशियाई खेडां विच 57 किलोग्राम वर्ग विच सोन तमगा ते दीपक पुनिया ने 97 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले विच कांसे दा तमगा जित्तिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहां पहलवानां नूं वधाई दित्ती। एशियाई खेडां विच देश वल्लों जीते तमगियां दी कुल गिनती 83 होई, जिन्हां विच 20 सोन, 26 चांदी ते 37 कांसे दे तमगे शामिल ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात ने अज 12 साल पूरे कीते। हरियाणा सरकार दे उद्योग ते वणज विभाग ने स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार तो विस्थार तक मुहिम शुरू कीती ते हरियाणा पुलिस दी विशेष टास्क फोर्स ने हिसार तो 5 लाख रुपए दे इनाम वाले एक मोस्ट वांटेड दोषी नूं गिरफ्तार कीता। एसन मुख प्रदेश खबरां।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: हुण पेश है प्रोग्राम सुरसांझ। सुरसांझ प्रोग्राम दे सारे श्रोतियां नूं साडा प्यार भरिया नमस्कार। प्रोग्राम दा आगाज करांगे ते सब तो पहला एक गीत तुहानूं सुनवावांगे, जयदेव कुमार दा संगीत, गुरदास मान दी आवाज़।

0: अपनी दोस्त आरती श्रीवास्तव को छाया गीत समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
1: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
0: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम सुरसांझ।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजकोषीय विवेक, अवसंरचना निवेश, बैंकिंग सुधार, बेहतर वितरण तंत्र और निरंतर सुधारों के संयोजन से पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक शक्ति और लचीलापन मजबूत हुआ है। नई दिल्ली में आज पांचवें कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने GST, दिवालियापन संहिता और चार श्रम संहिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय ढांचों को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले चार वर्षों में वैश्विक संकटों के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखा है।
1: Real GDP grew 7.8% in quarter one of FY.
2: वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 7.8% हो गया। वहीं अगस्त 2026 में खुदरा महंगाई दर 4.82% रही। पहली तिमाही में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% रहा। बैंकों का ग्रॉस NPA कई दशकों के निचले स्तर पर है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 766 अरब डॉलर है।
1: एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एट अबाउट 766 बिलियन यूएस डॉलर।
0: अवसंरचना विकास पर वित्त मंत्री ने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक निर्धारित किया गया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था दुनिया में सबसे आधुनिक हो जाएगी। श्री शाह ने आज भोपाल में राज्य स्तरीय गौपालक सम्मेलन में ये बात कही।
3: कानून पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बन जाए, और इसके अंदर विज्ञान को हमने डाला है, ऑनलाइन सुनवाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, FSL के प्रावधान और कई आधुनिक प्रकार के वैज्ञानिक संशोधनों को इसके साथ जोड़ा है। महिला सुरक्षा, गुमशुदा बच्चे, आतंकवाद, लिंचिंग, ये सारी चीजों से प्रोटेक्शन की व्यवस्था है।
0: श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के पूरी तरह लागू होने के बाद प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक मामलों का निपटारा 3 वर्ष के भीतर किया जा सकेगा। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए पशुपालन से जुड़ी व्यवस्था विकसित कर रही है। इसमें गोबर से बायोगैस और जैविक खाद बनाने से लेकर दुग्ध उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयास शामिल हैं। सरकार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले कुख्यात सरगना नवप्रीत सिंह को तुर्की से सफलतापूर्वक भारत वापस लाई है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि नवप्रीत सिंह को नशीले पदार्थों की तस्करी और अन्य अपराधों से जुड़े कई मामलों में जेल भेजा गया है। श्री शाह ने कहा कि 2019 से इस वर्ष अगस्त तक 36 देशों से कुल 288 भगौड़ों को भारत वापस लाया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में भारत रूस संबंधों पर परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डॉ. जयशंकर ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, संपर्क, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित भारत और रूस के बहुआयामी सहयोग के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने के लिए संवाद और कूटनीति के प्रति भारत के सक्रिय समर्थन का भी उल्लेख किया। अमेरिका ने 50 देशों के नागरिकों के लिए पर्यटक और कारोबारी वीजा पर $20,000 तक की जमानत राशि तय की है। इस व्यवस्था से भारत को छूट दी गई है, जबकि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल सहित दक्षिण एशिया के कई देश इसमें शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक हासिल किए। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को हराकर स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस जीत के साथ ही भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। पदक तालिका में भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 107.2 MHz